फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 29 सितंबर 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। 6 बजने को हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। आकाश

0: आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमरीका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसमें भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा बढ़ाने को भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई है। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक गतिविधि का विस्तार जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर पहले के 6.7% के अनुमान से बढ़कर 7.4% हो गई है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल 45 पदक प्रतियोगिता में जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन।
1: संसार के सभी धर्मों में निष्काम प्रेम की सराहना की गई है। यीशु ने कहा है, अन्यों से भी प्रेम करो, अर्थात उन्होंने भी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच के संबंध का आधार प्रेम ही निर्धारित किया है। प्रेम ही वह आधारशिला है जिस पर हम सभ्य और विकसित समाज की कल्पना कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति की वाग्धारा की दिशा निर्धारित करने वाला प्रमुख स्रोत मानव से मानव के स्नेह का भाव ही है। प्राचीन भारतीय मनुष्यों ने प्रेम के 8 स्तर माने हैं, प्रीति, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। लेकिन शर्त है कि प्रेम निष्काम और निस्वार्थ भाव से किया जाए। अगर कोई मनुष्य किसी से किसी स्वार्थ के वशीभूत हो प्रेम करने का ढोंग करता है तो वह पाप कर्म ही करता है। इसके अलावा प्रेम करने वाले मनुष्य में कई दूसरी अर्हताएं भी वांछित होती है, यथा उसे परम विवेकशील भी होना चाहिए। विवेकहीन प्रेम मोह में परिवर्तित हो जाता है। जो व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है उसके मन में देने का भाव नहीं आ सकता। वह तो अपने मोह में इतना अंधा हो जाता है कि फिर वह सिर्फ पाने की आकांक्षा करने लगता है, चाहे उसके लिए उसे किसी का अहित ही करना पड़े या दूसरे व्यक्तियों का दिल ही दुखाना पड़ जाए। मोह की ऐसी प्रबल धारा है आपकी भी रक्षा नहीं कर सकता। वह पाप होने पर पश्चाताप करता है। उसके मन में बार बार आता है कि वह बहुत बुरा हो गया है, अब ऐसा नहीं करेंगे, किंतु फिर भी वैसा ही करता है। इसी को मोह कहते हैं। इस मोह में पड़े हुए आदमी का अंतःकरण किसी दिन कराह उठता है। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण बहुधा आया करते हैं जब अपने पाप अपने को दिखने लगते हैं। ऐसा क्षण बहुत ही शुभ होता है। जीवन में जब मनुष्य को अपने पाप दिखते हैं तो वह घड़ी बड़ी शुभ घड़ी होती है, जब वह अपने बीते हुए जीवन में किए गए पापों पर पश्चाताप करके अपने आने वाले दिनों में उनसे दूर रहने का संकल्प करता है। पास के जीवों से, अपने समाज से और देश से प्रेम करने वाला व्यक्ति निश्चित ही एक दिन अपने सत्कर्मों के फलस्वरूप संपूर्ण मानव जाति के आदर का पात्र बनकर सामने आता है। उसका आचरण युगों तक हमारे सामने प्रेरणा स्रोत के रूप में याद किया जाता है। यीशु मसीह से लेकर मां टेरेसा तक सभी महान लोगों का जीवन प्रेम और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति ही रहा है। अमीर गरीब, बड़ा छोटा, राजा या रंग, बिना किसी भेदभाव के इन लोगों ने दूसरों को अपनी सेवाएं दी। अपना सारा जीवन उनके उत्थान और उत्कर्ष को समर्पित कर दिया। यही कारण है कि आज हमारा मस्तक उनके सामने झुका रहता है।
0: ये था आज का चिंतन। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 14.7 MHz पर।
2: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
0: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 14.7 MHz पर। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: देवकी पंडित के स्वर में ये भजन अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी रायगढ़ से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
3: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा, मुझे

0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
2: मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: देवकी पंडित के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही अब भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 14.7 MHz पर। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। वार्ता का विषय है दुधारू पशुओं में संतुलित आहार का महत्व।
1: किसान भाई मन राम राम, जय जुहार। संगवारी हो, खेती किसानी के संग मा पशुपालन लाभ के साधन हावे। ऐसने में संगी हो पशुपालन ले बेहतर लाभ प्राप्त करना आज के दरकार भी हावे। पशुपालन हमन मांस बर, गोरस बर और अन्य प्रकार से हमार जो लाभ रहे थे ओला लेके हमन करथन। लेकिन हमार छत्तीसगढ़ राज्य मा दुधारू पशु मन के पालन गोरस उत्पादन ला ध्यान में रख करके किए जाते। दुधारू पशु मन ला संतुलित पशु आहार देना अब्बड़ जरूरी होते। पशुपालन व्यवसाय मा आगु बढ़ना है तो पशु प्रबंधन, पशु के नस्ल के सुधार, ओकर स्वास्थ्य के देखभाल और संतुलित पशु आहार इला ध्यान में रखना जरूरी है। पशु मन के जीवन निर्वाह करे बर, उमन के शारीरिक वृद्धि बर, उत्पादन बर संतुलित आहार एकदम मायने रखते। संगी हो, संतुलित आहार अगर नहीं देथन तो पशु कमजोर हो जाते, ओकर गोरस उत्पादन के क्षमता जो घट जाते और समय में गाभिन भी नहीं हो पाए। संतुलित पशु आहार और चारा दाना इमन के सबों के सम्मिश्रण होना चाहिए। इमा आवश्यक जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन, ये तत्व मन के उपलब्धता होना जरूरी है। संतुलित पशु आहार अगर हम नहीं देते पशु ला तो हमारे जो बछड़ा है, बछिया है, गाय है, उमन सही उम्र में वयस्क नहीं हो या उमन के उत्पादन और वृद्धि विकास जो है संभव नहीं हो पाए। पशु और कमजोर हो जाते, घेरी घेरी रोग बीमारी ले वर जकड़े लागते, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होते। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमती हो ले पशु हर बीमार पड़ जाते। एकर बर संगी हो ध्यान रखना है हमला और वयस्क जो मादा होते जोन मन की संगी हो गाभिन होते गर्भ धारण करते ओमन में गर्भ धारण करे के समस्या हो जाते। यानी गर्भ धारण करे बर नहीं सक पाए काबर की उमन में पोषक तत्व की उपलब्धता नहीं रहे। विटामिन ए डी ई ये बहुत ही मायने रखते तो ईमन की कमी हो जाते और दुधारू पशु मन में गोरस ज्यादा देते हैं तो ओमन के जो है संगी हो कैल्शियम तत्व के निकासी हो जाते। तो ऐसने में हमला संतुलित आहार देना अब बड़ जरूरी है। विषय विशेषज्ञ मन के अनुसार से हमला संतुलित आहार खिलाना चाहिए। हरा चारा सूखा चारा के निश्चित अनुपात देना चाहिए। नेपियर घास है, बरसी में लूसर्न है, लोबिया है, मक्का है, ज्वार है, ऐसे कई प्रकार के घास आवे इला हमला संतुलित अनुपात में देना चाहिए। संग में अगर दुधारू पशु हावे, शुष्क पशु हावे जो न गोरस नहीं देते ओमन पर अलग अलग पोषण आहार देना चाहिए। विशेषज्ञ मन बताते हैं संगवारी हो गोरस देहे वाला जो भैंस आवे ओला 3 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम भार के अनुसार से देना चाहिए। सूखा भैंस आवे या गाभिन गाय हावे या दूध देहे वाला गाय हावे तो ओला 2.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम ओकर शरीर भार के हिसाब से देना रही थी। सूखा गाय हावे जूनर की गोरस नहीं दे थे तो ओला 2 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम भार के अनुसार से देना चाहिए। बछड़ा है, बछड़ी है तो ओला 1.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से देना चाहिए। जीवन निर्वाह पर संगवारी हो पशु मन ला संतुलित आहार देथन तो गाय ला 1 किलोग्राम प्रतिदिन और भैंस ला 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन के दरकार पड़ते। अगर बछड़ा बछड़ी हावे तो 0.5 किलोग्राम प्रतिदिन के दरकार पड़ते। अगर हमन देखा थन उत्पादन के दृष्टिकोण से, गोरस उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा थन तो अगर गाय है 2.5 लीटर गोरस दे थे तो 1 किलोग्राम देना चाहिए। भैंस अगर 2 लीटर गोरस दे थे तो 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। तो संगी हो ये सब ला हमला ध्यान में रखना चाहिए और जोन गाय हर 10 से 15 लीटर ले ऊपर गोरस देते ओला खनिज तत्व कैल्शियम के आपूर्ति भी करना अब बड़ जरूरी हावे। खनिज तत्व अपन क्षेत्र के हिसाब से सिफारिश रही थे कि आप मन कौन से खनिज तत्व ला खिला सका था या कैल्शियम ला पिला सका था सिफारिश रही थे। तो आप मन अपन के क्षेत्र के जो जानकार हमें विषय विशेषज्ञ हमें पशु चिकित्सक हमें ओमन से संपर्क करके पशु मल्ला संतुलित आहार देवा और ओमला हष्ट पुष्ट राख करके मजबूत राख करके ठीना राख करके गोरस उत्पादन ला बढ़ावा।
0: दुधारू पशुओं में संतुलित आहार का महत्व विषय पर अभी आप वार्ता सुन रहे थे। कार्यक्रम कृषि चर्चा अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.7 MHz पर। 6:35 हुए हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में पहले हमारे आज के प्रसारण के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिए। कार्यक्रम विवरण के ठीक बाद 6:40 पर रामचरितमानस गान भाग 149 का प्रसारण आप सुनेंगे। देशगान का समय 6:50 का। 7:05 पर आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा आप सुनते हैं 7:35 पर। 7:45 पर हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर। समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका कार्यक्रम मोर भुइयां आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा 8:30 पर। 9:00 से विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं आकाशवाणी रायपुर से 9:55 पर। 10:00 आकाशवाणी रायपुर से ही प्रायोजित कार्यक्रम उजाली की ओर की अगली कड़ी आप सुनेंगे। हमारे केंद्र से छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी हम आपको सुनवाएंगे 10:30 पर। 11:00 से शाम 5:00 तक विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होंगे। इस बीच 11:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा। शाम 5:00 हमारे केंद्र से प्रसारित होता है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। झलकी आप सुनेंगे शाम 5:10 पर। 5:30 पर युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी सुनते हैं। कार्यक्रम में आज की बात का विषय है युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के कारण और बचाव। चर्चा का विषय प्लास्टिक को कहें ना, कपड़े के थैले को कहें हाँ, और साथ ही आप सुनेंगे क्रम गैर फिल्मी गीत। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:20, शाम 7:15 और रात्रि 8:30 पर। शाम 7:00 आकाशवाणी रायपुर से ये विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे सेवा संकल्प अभियान। विषय होगा अटल इनोवेशन मिशन। किसान भाई अपना कार्यक्रम किसानवाणी सुनेंगे आकाशवाणी रायपुर से शाम 7:30 पर। रात्रि 8:00 हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत। 9:00 से 10:00 तक आप रहेंगे विविध भारती के साथ और रात्रि 10:00 डेली हाइलाइट्स कैप्सूल एशियन गेम्स 2026 आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होगा। विविध संगीत हम लेकर आएंगे 10:20 पर और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें। कार्यक्रमों की रूपरेखा अभी आप सुन रहे थे।
2: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
3: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
0: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी ये सूचना सुनिए। नवोदय विद्यालय में क्लास 9वीं और 11वीं LEST 2027 के लिए एप्लीकेशन जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट LEST 2027 के जरिए खाली सीटों को भरने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। कक्षा 9वीं और 11वीं में सेशन 2027-28 के लिए एडमिशन होगा। कैंडिडेट नीचे दिए गए लिंक पर जाकर फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। कक्षा 9वीं के लिए https://cbseitms.nic.in/2026/nvsix9 और कक्षा 11वीं के लिए https://cbseitms.nic.in/2026/nvsix11 ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 है। प्रॉस्पेक्ट्स रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उपलब्ध हैं। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी ये सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान भाग 149, स्वर जगजीत सिंह और कविता कृष्णमूर्ति का है। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

रानी कैकई ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, ये सुनकर अयोध्या के महलों में विषाद का वातावरण छा गया है। किंतु श्री राम प्रसन्न हैं, उनका चित उल्लसित है। सब भाइयों को छोड़कर पिता ने उनका ही राजतिलक करने का निश्चय किया था, इस कारण जो विषाद उनके मन में उत्पन्न हुआ था वो अब मिट गया है। वो प्रसन्न मन माता कौशल्या के भवन में पहुँचे। श्री राम ने हाथ जोड़कर माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने गले लगाकर उन पर वस्त्राभूषण न्योछावर किए। वो उस शुभ लग्न की प्रतीक्षा में हैं जब राम का राज तिलक होगा। किंतु पुत्र के मुंह से ये सुनकर कि पिता ने उन्हें वन का राज्य दिया है और वो वन यात्रा के लिए माता का मंगलमय आशीर्वाद लेने आए हैं, माता कौशल्या के हृदय में जैसे वाण चुभ गया, जिसकी चुभन से वो तड़प उठी। पुत्र के वचन अत्यंत कोमल और शीतल थे, किंतु उन्हें सुनकर वो वैसे ही सहम कर सूख गईं जैसे बरसात का पानी पड़ते ही जवासा सूख जाता है।

अभी जगजीत सिंह और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में रामचरित मानस गान भाग 149 का प्रसारण हो रहा था। अब आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक सतीश भाटिया। रामचरित मानस गान अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम देशगान। समूह स्वर में चंद्रसेन विराट का लिखा ये देशभक्ति गीत सुनिए।

0: यक्षवेद क्रीडा क्रिकेट कुराश मुष्टियुद्धम इत्यादिषु क्रीडासु भारतीय क्रीडकैः पदकानि प्राप्तानि। भारतेन पदक संख्यायां अष्टौ पदकानि अधिकानि योजितानि। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलं च उपांत्य चक्रे प्रविष्टम्। पुरुषाणां कुंतक्षेप स्पर्धायां भारतस्य द्वे पदके प्राप्ते। यशवीर सिंहेन रजत पदकं तथा रोहित यादवेन कांस्य पदकं अवाप्तम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्र हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को और मजबूत करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस बुधवार से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा होगी। इस यात्रा से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तु, कृषि कारोबार, खुदरा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख अमरीकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वे कारोबारियों, स्टार्टअप और नवोन्मेषी कंपनियों के साथ परिचर्चा में भी हिस्सा लेंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि UAE ने भारत में अब तक करीब 25 अरब डॉलर का निवेश किया है और जल्द ही 25 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश भी करने जा रहा है। हमारा दीर्घकालिक निवेश का लक्ष्य 100 अरब डॉलर है। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CV जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाली तोड़फोड़ गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये फैसला केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हुई बैठक में लिया गया। कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के 500 पेट्रोल पंप पर पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत, 21 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 14.7 MHz पर। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं गुलराज सिंह के गाए और संगीत बुद्धि की इस गीत से। साथ ही आवाज अदिति पॉल की है, मनोज यादव का लिखा गीत है और फिल्म का नाम है ककुड़ा।

श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं।

0: कार्यक्रम आपकी फरमाइश अनुरोध तरुणों की पसंद पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: रितेश जी राव का लिखा और गाया ये गीत अभी आपने सुना, अनिरुद्ध रविचंद्र के संगीत पर। आकाशवाणी रायगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती
2: सुरीली संदली।
7: संदेश से पहले हमने आपको दिल मद्रासी फिल्म का गीत सुनवाया था, लीजिए अब सुनिए आर्टिस्ट फिल्म का गीत, अनिर्बल रॉय के स्वर में निशांत सिंह का लिखा यह गीत है, सुरेश बॉबली का संगीत आप सुनेंगे इस गीत में।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए। आकाशवाणी

रायगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अब हम आपको सुनवाते हैं तड़प फिल्म का ये गीत, शिल्पा राव और दर्शन रावल, साथी आवाज चरण की और इरशाद कामिल का ये लिखा गीत है। प्रीतम का संगीत आप सुनेंगे इस गीत में।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंत में हमने आपको सुनवाया विशाल मिश्रा का संगीतबद्ध किया और गाया गीत हक फिल्म के लिए। इस गीत को लिखा था कौशल किशोर ने। अब कार्यक्रम चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। 7:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।
2: झरोखा

हमारे सूचना और मनोरंजन के कार्यक्रम झरोखा में आप सभी का स्वागत। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 29 सितंबर है, विश्व हृदय दिवस। दोस्तों हम कार, घर, मोबाइल, बैंक बैलेंस सबकी देखभाल करते हैं, लेकिन सबसे कीमती इंजन हमारा दिल अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। आज का संदेश बहुत साफ है दोस्तों, सक्रिय रहें, खुश रहें, अपने दिल की देखभाल करें। दिल सिर्फ एक मांसपेशी नहीं है, यह हमारे जीवन का केंद्र है। हर मिनट यह लगभग 70 से 80 बार धड़कता है और दिन भर में करीब 1 लाख खून पंप करता है। अगर यह थक जाए तो बाकी सब कुछ ठप पड़ जाता है। तो कैसे रखें इसे स्वस्थ? पहला मंत्र, सक्रिय रहें। दिन में कम से कम 30 मिनट तेज चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, घर का काम करना या कोई हल्का व्यायाम ज़रूर करें। बैठे बैठे काम करने वाले दोस्तों हर एक घंटे में 5 मिनट खड़े होकर घूमें। सक्रिय शरीर ही स्वस्थ दिल बनाता है। व्यायाम से दिल की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। दोस्तों दूसरा मंत्र है, खुश रहें। तनाव दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्सा, चिंता, नींद की कमी, ये सब दिल पर बोझ डालते हैं। रोज थोड़ी हंसी, परिवार के साथ समय, संगीत सुनना या सिर्फ गहरी सांस लेना, ये छोटी छोटी आदतें दिल को हल्का रखती हैं दोस्तों। खुश रहने का मतलब सिर्फ मुस्कुराना नहीं बल्कि मन को शांत रखना भी है। तीसरा मंत्र है, दिल की देखभाल करें। कम नमक, कम तेल, ज़्यादा हरी सब्जियां और फल खाएं, धूम्रपान और शराब से दूर रहें, नियमित रूप से ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं, अच्छी नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटे। याद रखिए, दिल की बीमारी अचानक नहीं आती, यह सालों की लापरवाही का नतीजा होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ज़्यादातर मामलों में इसे रोका जा सकता है। आज के दिन अपने परिवार के बुजुर्गों से पूछिए उनका ब्लड प्रेशर कितना है, क्या वे रोज थोड़ा चलते हैं, बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेजिए, खुद भी एक छोटी सी शुरुआत कीजिए आज से। दोस्तों दिल तो तभी खुश रहता है जब हम खुद खुश और सक्रिय रहते हैं। तो आइए वादा करें, आज से हम अपने दिल की सुनेंगे, सक्रिय रहेंगे, खुश रहेंगे और अपने दिल की देखभाल करेंगे। विश्व हृदय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। नमस्कार।

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
3: प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107 MHz पर। 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मादर। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं मानिक राम साहू और रोहिणी मरकाम।

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: मानिक राम साहू के गाए इस गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 107.7 MHz पर। 7:55 हुए हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में हमारे आज के प्रसारण के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिए। कार्यक्रम विवरण के ठीक बाद 8 बजे समाचारों का अनुप्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। समाचारों के बाद समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका कार्यक्रम मोर भुइयां आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा 8:30 पर। 9 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी रायपुर से 9:55 पर। 10 बजे आकाशवाणी रायपुर से ही प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर की अगली कड़ी प्रसारित की जाएगी और 10:30 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी। 11 बजे से शाम 5 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होंगे। इस बीच 11:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होगा। कार्यक्रमों की रूपरेखा अभी आप सुन रहे थे।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
2: नमस्कार। इस गीत की महत्व सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नोवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नोवेलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नोवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नोवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of स्वदेश पूजा। On 1876, वेस्ट बंगाल की हुगली जिला में गोपाल चंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था। और मैंने बोला कि 1871 में इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875
0: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107 MHz पर 8 बजने को है। अब आप समाचारों का अनुप्रसारण सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: मेज के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की। अमेरिका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को CBSE से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से भारतीय मूल की दो भाषाओं सहित तीन भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन वाली अपनी नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा था। ये विवाद CBSE के अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने के निर्णय से संबंधित है। इस रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और PUC प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्री हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
1: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर PUCC नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित करने कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण, सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नितिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटांड गांव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
4: पहले बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत ही अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुका है।
2: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गांव में ही रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
5: नाम है चुन्ना हल्दा। इस जंगल में हम लोग आम भी लगवाए हैं और केन भी है, फल उल दर है। उससे हम लोग गाँव वाला को भी यहाँ उस बेच उच करके हम लोग का सुविधा होगा।
2: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। झुमरी तिलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाता को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
7: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
8: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरलम, माही, कोंकण, गोवा और ओडिशा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है कि किशोरियों से गैंगरेप पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े 4 और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने यूपीआई भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एमडीआर पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है, ट्रैफिक चालान ना भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें। बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान अमर उजाला में है। हिंदुस्तान ने विश्व हृदय दिवस पर भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण दिया है। प्रदूषण दिल के मर्ज को जानलेवा बना रहा, हर साल 17 लाख लोगों की हार्ट अटैक से होती है मौत। लोकसत्ता ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है, सितंबर की बारिश ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, फिर भी 11.8% कम वर्षा। एशियाई खेलों में विथ्या रामराज के नए रिकॉर्ड को भी अखबारों ने सचित्र दिया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष सीबीएसई की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: Supreme Court asked Centre to consider exempting Class 6 students from CBSE's 3-language policy this year. Indian Navy to host second edition of Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. Delhi government prepares tougher action plan to control air pollution in the national capital during winter season. US waives tariff on specialty drugs imported from India and 19 other countries. And Indian men's cricket team advanced to the semi-finals at the Asian Games in Japan. The Supreme Court has directed the Centre and the Central Board of Secondary Education, CBSE, to consider extending to the current Class 6 students the exemption from the three-language framework that has been granted to students of Class 7. We have more from a correspondent.
1: A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justices Joymal Lebakchi and V. Mohana asked Solicitor General Tushar Mehta and Additional Solicitor General Aishwarya Bharti appearing for the Centre and the CBSE to grant the same relaxation granted to students of Classes 7, 8 and 9 to students of Class 6 this year. On September 17, the top court had asked the CBSE to consider implementing its policy mandating the study of three languages, including two native Indian languages for Class 6 students from the next academic session starting 2027. According to CBSE's statement, the current batches studying in classes 7, 8 and 9 would not be required to give board examination in third language when they progress to class 10. The Solicitor General has submitted that about 99% of schools have adopted the third language policy and have been provided the necessary facilities and only about 1.2% of the schools have not. During the hearing, the Centre however maintained that it was not inclined to exempt the current class 6 batch from the policy and said students should pursue the new language framework from the current academic year itself. Yashasvi Kirial for Akashvani News Delhi.
10: Indian Navy will host the second edition of the Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. The three-day conference will provide an avenue for senior naval leadership, including outstation operational and area commanders. It will undertake a comprehensive review of operational preparedness at the military strategic level and engage with senior government functionaries through an institutionalized mechanism. The conference will be pivotal in underscoring Indian Navy's contribution towards safeguarding India's maritime interests, including security of energy amidst the ongoing conflicts in West Asia. On the opening day of the conference, Defence Minister Rajnath Singh will share his vision and guidance on national maritime perspectives and expectations from Indian Navy. Delhi government has prepared a tougher action plan to control air pollution in the national capital during the winter season. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav chaired a high-level meeting with Delhi Chief Minister Rekha Gupta to review the air pollution mitigation action plan in the national capital. We have a report.
11: Under the action plan, no PUCC, no fuel will be implemented at all automatic number plate recognition enabled fuel stations through awareness and enforcement. There will be a complete ban on dust generating demolition activity and outdoor civil construction activity between the 1st of November and 31st of January. A public campaign will promote the Delhi Metro Sarthi app to strengthen last mile connectivity. The government will also focus on increasing plantations and greening identified brown areas. The winter protocol will include restrictions on polluting vehicles, higher parking charges, staggered office timings and work from home arrangements. The EV policy 2026 and Parivartan scheme will also be promoted through registration drives and Jan Bhagidari camps. During the meeting, the Union Environment Minister called for organizing Jan Bhagidari events at the 37 identified hotspots in Delhi by the 10th of next month. Delhi Chief Minister stressed the need to ensure that decisions taken and action points identified translate into effective implementation on the ground. With Nitika Gupta, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
10: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards the goal of a developed India by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in a special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the

0: वो तो बहुत कम सीमित साधन रही से हमन के जानत में रेडियो हमन सुनत रहन, ओकर से मनोरंजन करत रहन। और ओकर पहली और जाबो तो रामायण है, गम्मत है, ये सब ला देख देख के हमन बड़े हुए। ऐसने एक तो लोक नाट्य है रहस, जेला आज के पीढ़ी कहीं कहीं जाना थे, क्षेत्र विशेष में जाना थे, सब जगह नहीं जाना थे, लेकिन एक बहुत ही धार्मिक महत्व है, पौराणिक महत्व है। ये लोक नाट्य रहस्य के बारे में चर्चा करे खातिर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उग्रसेन कन्नौजे जी, और साथ में हैं जो कंस के भूमिका निभाते हैं श्री ताराचंद कौशिक जी। आप दोनों जन के स्वागत करथन आज के एक कार्यक्रम में। डॉक्टर उग्रसेन कन्नौजे जी, सबसे पहले तो हमारे श्रोता साथी मन बतावा ये लोक नाट्य रहस्य के बारे में कि ये का है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि रहस्य के विषय में आप जानकारी पूछे हो, तो ब्रजमंडल के जो रासलीला है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के, वो रासलीला के ही छत्तीसगढ़ी जो रूपांतरण है वो रहस्य कहलाते है। श्रीमद भागवत कथा के दसम स्कंध में पौराणिक कथा में ये वर्णित है, और वही रासलीला ला का है कि हमर पूर्वज मन आज से करीब 500 साल पहली ब्रजमंडल के धार्मिक यात्रा करीन और वहाँ के भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रासलीला ला देखीन और देखीन सुनीन समझीन, और वहाँ ले आए के बाद हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आकर के, चूंकि छत्तीसगढ़ के पुराना राजधानी है रतनपुर, तो सबले पहली रतनपुर में एकर जो है आयोजन करीच अपन भाषा में, अपन बोली, अपन शैली में, और कुछ जो है राधा विहार के, कुछ आपके सूरदास जी के भजन ललीन, चंद्र सखी के भजन लीन, मीराबाई के भजन ललीन, और वो भजन के माध्यम से और ये रासलीला का जो है छत्तीसगढ़ी में रहस्य के रूप में एकर आयोजन करीन।
0: और चूंकि आप रासलीला में कई तरह के जो भजन के बात आप करे हो, बातचीत करबो हमन
1: जी जी जी,
0: तो क्यों ना एक ठो भजन आपसे सुन लिया जाए।
1: तो का है रहस्य हमन जिसे शुरू करथन, तो सबले पहली गणेश जी के वंदना करथन, तो ओकर गणेश जी के एक आपका बानगी मैं सुनाता हूँ भजन के। विपति बिदारा न तुम हो गणेशा, विपति बिदारा न जी तुम हो गणेशा, विपति बिदारा न जी तुम हो गणेशा, सिर पर मुकुट सवन पर कुंडल भाल तिलक दृघ कुंचित केसा, भुजा चार उर माल विराजी, भुजा चार उर माल विराजी,

0: सुरेशा विपति विदारण जीतु महो गणेशा। ये प्रकार के हम गणेश जी के वंदना करके और रहस के शुरुआत ल करथन।
1: हाँ हाँ जी जी, रहस के आप मन शुरुआत करथा है ना, और एकर बार आप मन कई दिन पहले ले तैयारी करत हुई।
0: हाँ वो का है,
1: तो ये तैयारी कैसे कैसे आप मन कितना दिन पहले शुरू करता, कैसे तैयारी करता, एकर बारे में बतावा।
0: हाँ, वो का है कि जैसे रहस के जब कार्यक्रम करवाना रही थी तो एक महीना पहली ले लगे रिथन। अन्य गांव में जैसे आने गांव में रहस होना है तो वहाँ के सियान मन 8-10 जन मिल के नरियर लेके सुपारी लेके पान लेके और धोती वगैरह लेके हमार पास में आते,
1: न्योता
0: देहे बर आते। हाँ। और ओकर बाद वो न्योता देते, नरियर फोड़थन, लगिन धरथन, और ओकर बाद उन जा करके काहे थूक गड़ाते कि अही लंग जो उन्हें और रहस हमर हो ही। अच्छा बड़का मैदान ल देखते, जगल देखते, ताकि आम जन जो है लोगन बैठ सकें, बढ़िया देख सकें। और रात रात भर चलने वाला ये कार्यक्रम है, चूंकि चबूतरा बना थे, बीच में वैकुंठ बना थे, और छः छः माँ किनारे किनारे में तीर तीर में जो है देवता धामी जो है वो रखते हैं। बीच में का है राधा और कृष्ण के जो है मूर्ति हरे थे, और एक डहर ब्रह्मा जी के, एक किनारे में भगवान शंकर के, और एक किनारे में सुखदेव मुनि के, और एक राजा परीक्षित के, और द्वारी में जो है गरुड़ जी के और हनुमंत लाल जी महाराज के मूर्ति रखते। तो ऐसे जो है ओकर जो है शुरुआती दौर में, अब पुराना समय में का है पैरल लपेटें और लपेट के कमानी बनाए, बांस बल्ली ये करके अवे करे। अब चूंकि अब समय जैसे परिवर्तन हो चले जाते, तो आजकल टेंट से ही सब मंगा लेते और कपड़ा के ही सजावट करके और सजाए जाते और बनाए जाते। तो एक महीना ले सब ये लगे रिथन,
1: एक महीना से लगे रहता आप मन। हाँ, तब जाके
0: हाँ पूरा
1: ये रहस्य के आप मन शुरुआत
0: करते हैं ना। हाँ, हाँ।
1: अब जैसे काकर काकर मूर्ति रथी ये सब भी आप बता दिया है ना। अब इमें बात ये उठते कि आप मन ल शुरू करना है, कलाकार मन के जरूरत है। अब सिर्फ आप रहस्य नहीं दिखाना है, श्रोता मन के मनोरंजन भी करना है, है ना, ताकि रात भर जगाना भी है ना, नौ रात जगाना
0: है ना।
1: तो ओमन खातिर बीच बीच में मनोरंजन भी करना।
0: जी जी जी।
1: पात्र होते हैं
0: जी
1: आपके जो रहस्य में
0: जी,
1: वो कौन कौन होते हैं?
0: हाँ ओमा का है, देखो 9 दिन के रहस्य है, तो शुरू दिन के लीला मत का है भगवान कृष्ण के जन्म दिखाथन, देवकी वसुदेव के विवाह के लीला दिखाथन, और ओकर बाद जब भगवान कृष्ण के जन्म हो जाते तो भगवान शंकर जो उन्हें दर्शन करे खातिर भगवान कृष्ण के आते, तो वो जो उन्हें शंकर लीला जो उन्हें ओला दिखाथन, ओकर एक बानगी भजन जैसे है ना।
1: हाँ, सुना देवा।
0: देखो री इक बाला जोगी, देखो री इक बाला जोगी, द्वार

जोगी। तो ये शंकर लीला आओ, ओकर बाद भगवान कृष्ण के तहाँ बधावा के लीला, चंद प्रस्ताव के लीला, ऐसे अलग अलग अलग अलग लीला जो है रोज के। फिर ओकर बाद दूसरा दिन जिसे लीला करना है तो पूतना वध के लीला जो है। कंस का पता चलते कि अब 10 दिन हो गए जन्म लिए हैं और अभी तक के वो मरे नहीं है, तो कहा करते कि पूतना कब हेसते कि पूतना तय जाओ मार के बोला आओ, और वो तो बेचैन है ना कि मोरकाल जो है अवतार ले लिए है। तो कंस जो है ना वो पूतना कब हेसते, पूतना पठ

0: वायो राजा। तो ऐसे ही प्रकार से पूतना जाके फिर अपन ढले प्रयास करते, मारे के प्रयास करते, पर वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के लीला रोज के, फिर माखन चोरी लीला, ओकर बाद उखल बंधन के लीला, फिर नागनाथना वृंदावन गमन के लीला, गोवर्धन पूजा के लीला, ऐसे अलग अलग दिन, फिर अंतिम दिवस जो है महारास लीला जिला की थन, मतलब 8 दिन के लीला एक तरफ, तो आखिरी दिन सबके झलक दिखाते वो दिन महारास लीला। ये प्रकार से 9 दिन के कार्यक्रम जो है अलग अलग लीला चलत रही थे। और उमा का है कि अब जैसे बोर हो गया आदमी, बोर हुआ थे लीला देखत देखत देखत, थोड़ा तो एक रास्ता ला तोड़े खातिर बीच में थोड़ा जोकर के भी ये करथन, कंस दरबार के भी अपन ये बीच में महाराज कंस के जो है आगमन होते, तो महाराज कंस का बुला था, तो मा हाहा ही ये सब चलते
1: जी। कंस के आगमन के बात आप कर रहा था, और जब कृष्ण के जन्म हुई तो कंस तो वैसे ही बेचैन रही है
0: जी जी,
1: है ना, कि कैसे मतलब उकर हत्या किया जाए ऐसा टाइप के। तो हमारे साथ अभी ताराचंद कौशिक जी भी हैं यहाँ पे, और जो आपके लोक नाट्य रहस्य
0: जी जी
1: के जब ये लीला होते
0: हा।
1: तो आप कंस के भूमिका निभा था
2: जी,
1: आपके स्वागत कर रहे थे आज के कार्यक्रम में
2: जी, धन्यवाद।
1: आप ये बताओ कि कितना बरस से आप लोक नाट्य रहस्य में कंस के भूमिका निभावा था?
2: मैं 2010-11 में कंस के भूमिका ला शुरू करे हूँ, और लगातार अब 2026 चला थे तो माने 16-17 साल से लगभग मैं कंस के भूमिका ला अदा करता आता हूँ
1: जी। अभी भी आप लोग देखा, आप तो सिंपल ड्रेस में आए हैं
2: जी,
1: लेकिन आपके गेटअप फिर भी ऐसे लगा थे कि अगर आप लोग पूरा मेकअप के साथ तैयार किया जाए तो सही में एक अंश आप में कंस के अंश दिख सकते है ना। तो जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म होते है ना, मन में बहुत व्याकुलता रहते, अकुलाहट रहते, तो कैसे आप वाला व्यक्त करता सबके सामने, दर्शक मन के सामने, कि सही में कंस इतना व्याकुल है?
2: एमा का है, आकाशवाणी के माध्यम से कंस ला जानकारी हो जाते।
1: अच्छा।
2: कि तोर काल जो उन्हें वो जन्म ले चुके है, और जहाँ वो जन्म लिए के जानकारी होते, ओकर बाद ओकर तिल मिलाहट जो उन्हें वो चरम में पहुंच जाते कि भाई मोर काल जन्म ले चुके है, तो क्यों ना मैं पौधा ला बड़े होए के पहली अंकुरण अभी लिए है, अभी जन्म लिए है, माने कोई बीज अंकुरित होए है, तो अंकुरित होए है तो मारे में सहूलियत पड़ी, एकर सेती वो मारे के प्रयास कई असुर ला भेज भेज के करते,
1: लेकिन सफलता नहीं मिला,
2: सफलता नहीं मिल पाए।
1: अच्छा, तो अभी तो आप तो सामान्य गोड बात में आप बता दिया
2: जी,
1: अब आप लोग अगर एक्टिंग करके बता रहे हैं तो कैसे बताइए, कोई ऐसा आप लोग डायलॉग याद आत हो ही कंस के रूप में जब सबके सामने आप बोलता
2: जी,
1: तो कोई संवाद याद आत है आप?
2: हाँ हाँ, जरूर
1: सुनावा,
2: याद है।
1: सुनावा वही अंदाज में
2: है, धाक धरणित गगन तलक यह उदय अस्त मुझी में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र वैभव समस्त मुझी में है, अरे टुक त्योढ़ी मेरी चढ़ने से यह भुवन 14 डरते हैं, ग्रह काल कुबेर सुरेश वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। माने उकर एक सैरे अपन आप ला बहादुर ताकतवर और सर्वशक्तिमान दिखाए के एक प्रयास है की देवा
1: जी,
2: लेकिन
1: जी।
2: भाई सर्वशक्तिमान तो परम ब्रह्म है जौन अवतार ले चुके है
1: जी, जी, जी।
2: लेकिन अपन सेना ला अपन राज्य मा दबदबा बनाए खातिर ऐसे माने वो करते कि मोर से ज्यादा शक्तिशाली
1: कोनो नहीं है, लेकिन शक्तिशाली है,
2: है।
1: लेकिन जब आप कहीं भी अपन प्रयास में सफल नहीं होत रहा
2: जी,
1: तो मन में का भाव आत रही से?
2: अब वो तो ऐसे कि अंतिम तक के वह प्रयास करे है, गुरुजी मन बताइन कि पहली सबसे पहली वह पुतना ल भेजते, पुतना जब असफल हो जाते तो सकटा सुर है, कागा सुर है, बका सुर है, अघा सुर है, ऐसे नाना प्रकार के असुर मन ल भेज भेज के, और जब भगवान वृंदावन गमन कर लेते तो वहां फिर अलग असुर ल भेजते, काबर वो ये सोचते कि मैं ओकर घर में मारे बर भेजत रहे तो शायद ओकर घर में कोनो माया है का, या कोनो दैवी शक्ति के प्रभाव है का, जेकर से वो मोर असुर मन नहीं मार पाए। अब वह वृंदावन में जाके गाय चराए बर जाते, माने वन में अकेला रहा थे, तो वन में अकेला रहा थे तो वहाँ ओकर दैवी शक्ति जो उन्हें काम नहीं करी, ओला कोनो सहारा नहीं दी तो शायद मोर असुर मन मार सका थे। ऐसे विचार से वत्सासुर है आदि कई झन जो उन असुर है वो मन वन में भी भेज थे और असफल हो जाते,
1: असफल तो हो जाते
2: जी,
1: और आखिर में अपन प्राण ला भी गंवा देते।
2: हाँ, अपन प्राण ला भी गंवा देते, तब तक के वो ये सोचते काबर जौन दिन कृष्ण जौन है वो मथुरा में आ जाते, तो मथुरा में आए के बाद भी वह अपन जौन सैनिक है एक हाथी रही से ओकर पास कुबलिया पीड़ नाम के हाथी, जेकर ताकत है 10,000 हाथी के बराबर रही से, तो वो 10,000 हाथी के ताकत रखने वाले जौन कुबलिया पीड़ हाथी है ओला मदिरा पान करा के और मुख्य द्वार में बंधवा देते। ये सोच के कि जैसे ही कृष्ण बलराम अंदर घुसे के प्रयास कर ही तो ये मतवाला हाथी जौन है उन लसोण में पकड़ ले है और पकड़ के पृथ्वी में पटक के मार डाली, माने यह अंतिम प्रयास रहते। ओकर बाद जब कृष्ण जी जो उन्हें वो हाथी ल चीर डालते मार देते और दरबार में जब घुस जाते तो ओकर पास जौन अपन सैनिक रहते, आज के भाषा में बॉडी गार्ड कहे जा सका थे है ना, तो ऐसे जो चाड़ूर मुष्टिक सल तोसल ये मन ल फिर तैयार करके बोलते कि अरे सब तैयार रहना, जैसे ही वो आए तो चारों तरफ से घेर लेना और घेर के पकड़ कर उसको मार डालना। ऐसे प्रकार से माने कंस जो उन्हें वो अंतिम तक प्रयास करत रहते। जब वो कुबलिया पीड़ हाथी मरते ना तो वो समझ में आते कि ये मैं नहीं मार पाऊं, तो वही मेरे कहे है कि अरे जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया परिचय अपना देने के लिए कि उन्होंने ऐसी युक्ति है शायद इस रण के कारण ही उस रण में मेरी मुक्ति है, इसलिए यह उचित है हृदय करो बलवान युद्ध स्थल में दो मचा जा करके घमसान तेंगे फरसे तोमर मुगदर सर धनुहा भाला ले लो तुम अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित हो रण में बढ़ आगे खेलो तुम। ओकर बाद जो नौकर सैनिक रहते ओमन जब मर जाते ना तो कहते कि अरे मैं भी चलता हूं साथ साथ, धावा आंधी सा करना है विजयी होकर जीना है या समर भूमि पे मरना है। अब उसे तो ज्यादा एकर बारे में मैं जानो नहीं लेकिन जहां तक मोला जानकारी है कि भगवान कृष्ण के और कंस के युद्ध नहीं हुए है ऐसे माने मोर जानकारी है, लेकिन एला थोड़ा सा मनोरंजन के भाव से हमन युद्ध के भी दृश्य जो उन्हें देखा था।
1: कुल मिला के कुछ रहस्य के बारे में लोग जाने भी
2: जी,
1: मनोरंजन भी हो
2: जी हाँ।
1: दोनों पूरा प्रयास रहते
2: हैं हाँ, हाँ।
1: और आपसे हमन बातचीत करवो
2: जी।
1: अब डॉक्टर उग्रसेन तरफ आए थन
2: जी,
1: और आपसे जानना चाहत हन उग्रसेन जी कि ये जो लोक नाट्य रहस्य है
0: जी,
1: एक बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जाने कर खातिर आप मन प्रयास कर रहा था
0: जी,
1: और हमला भी साक्षात मौका भी मिली से
0: हाँ जी,
1: आप
0: जी।
1: मन के कार्यक्रम ला देखे,
0: देखे
1: के में लगते कि सही में समर्पण के बात होते
0: जी, जी।
1: जब तक आदमी समर्पित नहीं है
0: हाँ।
1: तब तक ये सामने वाला लगा था कि छोटा काम है, लेकिन छोटा हाँ। काम नहीं है
0: जी, जी।
1: में आपके साथ आपके परिवार भी आपके समाज भी जो नाता रिश्ता सब
0: हाँ, सब जुड़े
1: सब
0: हुए
1: जुड़े हुए हैं,
0: जुड़े हुए हैं,
1: तब जाके ये कार्यक्रम सफल हो
0: पाता है।
1: एकर पहली के कुछ इतिहास आप बतावा कि आपके परिवार के जुड़ाव
0: जी,
1: एकर संग कैसे हो पाए।
0: हाँ वो का है कि अब जैसे शुरू में बताए कि रतनपुर तो गढ़ है
1: हाँ।
0: तो वहाँ तो राधो गम्मत भी हो है, रहस्य हो है, और वो का है हमारे रिश्तेदारी भी है रानी गांव कलमीटार रतनपुर सब रिश्तेदार भी है, तो वहाँ दादाजी मन के आना जाना सब रही से, तो दादाजी वाला देखे के बाद जो उन्हें एकर आए के आ करके वहाँ से फिर मंचन चालू करीन धीरे धीरे धीरे धीरे एकर, तो दादाजी करें ओकर बाद फिर हमारे जो बड़े ददर है वह ओकर से सीखी, फिर मंझला पिताजी सीखीस ओकर बाद फिर बाबूजी सीखीस, तो ये प्रकार से धीरे धीरे धीरे धीरे करत करत, तो बाबूजी का है जब रहस्य में जाए तो मैं बहुत छोटे रहे, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ाते रहे, तब ले मोला वो रहस्य ले जाए और मैं ओकर संग चल दऊ नौ रात ओकर संग। अब वो समय गला भी बढ़िया पातर रहे एकदम आवाज है कोमल तो ओकर साथ में मैं गाँव
1: अभी भी मधुर आवाज
0: गाँव भी बाबूजी संग और ओकर साथ पूरा नौ रात तक के तो चलत चलत चलत चलत महू। अच्छा अभिनय पक्ष में भी मोला कभी नारद बना दे कभी सखा बना दे कभी गणेश जी बना दे कभी और कुछ बना दे कभी बैला भी बना दे ऐसे गाय बना दे बैला बना दे सब सखा मन चराए जाही ऐसे करके तो देखत देखत जो है बाबू जी के साथ में जा करके और ये सब लोग मैं सीखत गए और यही में फिर आगे चल के मोर गुरुदेव है डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी। तो जब मैं एमए करें एमए करे के बाद जब बताएं कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ सर जी इसे करके गुरुदेव करके तो काम करी हो जी के पूछिन तो मैं कहें आप ही बताओ सर जी ऐसे विषय कुछ। तो उन फिर सुझाव दिन कि आपके पिताजी रहस्य करते आपके दादा रहस्य करते आए हैं तो रहस्य में ही आप पीएचडी करो तो रहस्य करना भी चालू करें और रहस्य में ही मैं पीएचडी करें और 2000-2001 में और रहस्य में ही जो उन्हें इसी पूर्व भागलपुर बिहार से मोला डिलीट के भी मानद उपाधि 2014 में मिली। तो ये प्रकार से जो रहस्य जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होवत चले आ थे विसारत कम विरासत में ज्यादा मिले हैं मोला
1: तो, विरासत में मिली से और साथ साथ में आप डॉक्टर भी बन गए पीएचडी करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि है
0: जी जी।
1: और आपसे मैं ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप थोड़ी देर पहले बातचीत में बताया कि आप अलग अलग रूप में भी आत रहा
0: जी
1: जैसे कभी बताया कि बैल के रूप में और गणेश जी के रूप में और अलग अलग रूप में
0: जी जी।
1: तो एकर बारे में कैसे मन में आया कि नहीं अब मोला ये अभिनय करना है मोला ऐसा बनना है ऐसा सजना है।
0: हाँ तो का है ओमा के जो सीनियर है तो वह जिहा ले श्रृंगार करके सब निकलते हैं तो वह गाइडलाइन देवे कि अब एकर पारी होगी काबर गवैया गात है अब ओती बार गणेश वंदना चालू करीस है जिसे देवों के देव सुत गिरजा सु महादेव सादर सप्रेम मेवा को खाते हैं देखते नहीं कभी काला कलूठ रूप आप खुद बेढंगे गजमुख कहाते हैं विष्णु बिहारी जी को ढूंढते नहीं वन में।

0: है जहां बाबूजी, जहां अपन सवैया बोले तो हमें फट ले समझ जाओ कि अब गणेश जी ने निकलना है समर पकड़ करके, तो गणेश
1: जी
0: के और श्रृंगार करके और मैं जा करके मंच में और खड़े हो जाऊं। तो ये प्रकार से जैसे सूत्रात्मक वाक्य बोलीन यतिवर पंडित जी व्यास जी, तो समझ में कलाकार ला आ जाते कि अब अमुक ला निकलना है, एकर बाद एला निकलना है, एकर बाद ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है ना। तो ए टाइप से है ना कि कृष्ण तैयार बैठे है। अब वो बोला थे, नंद यशोदा तप कियो मोहे सो मन लाय, देखन चाहत बाल सुख रहो कछुक दिन जाय। तो वो समझ में आ जाते कि अब कृष्ण के बारी है, अब बोला मंच में प्रस्तुत होना है। ये टाइप से तो वो गणेश जी बनना, सरस्वती जी बनना, तो सूत्रात्मक वाक्य जो बोलते पंडित जी व्यास जी, तो ओकर से भी हमला पता चले लागते कि एक बाद ये कार्यक्रम होना है
1: तो
0: आगे।
1: मैं एक चीज पूछा था आपसे
0: जी
1: कि आपके जो शारीरिक संरचना है,
0: जी
1: अगर आप ला गणेश जी बनना है तब तो बहुत मेहनत करना पड़ा था
0: हाँ,
1: सोई।
0: वो मैं कलाकारी कर भाई, अब वो लंबोदर है, लंबा धन उधर पेट भारी होना है, तब का करियो, कुछ कपड़ा ला पेट में लपेट करके वो ऐसा ही बनाए ल पड़ा तरीके, शुरू ले तैयारी अपन कर लेते रहे
1: जी।
0: जी।
1: तो जैसा
0: हाँ
1: आपला मौका मिला रही से वो
0: हाँ
1: सब कलाकारी में आप निपुण हो गए
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: है
0: जी
1: ना। अभी जो चर्चा होते उसके हिसाब से आपके तीसरी पीढ़ी है
0: जी
1: कि आप येला अभी भी जिम्मेदारी के साथ आप
0: हाँ
1: निभा
0: बिल्कुल
1: था, है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: एकदम एकदम
1: तो आप अपन गांव में तो रहस्य
0: जी
1: के ये
0: हाँ करवे करथन
1: कर था
0: हाँ
1: आपमन,
0: हाँ
1: एकर अलावा आप मन ला और कहाँ कहाँ जाए के मौका मिली से। और जब आपके यहाँ तो चले का अच्छा माहौल है,
0: जी
1: लेकिन जब आप बाहर जाता
0: जी
1: तो वहां के लोग मन के कितना
0: जी
1: आशीर्वाद आप मतलब मिलता,
0: हाँ
1: कितना पसंद करता मन
0: हाँ
1: ला।
0: हाँ हाँ अब देखो का है, छत्तीसगढ़ में तो प्रायः लगभग जितका भी राजोत्सव महोत्सव वगैरह होते ओमा कार्यक्रम तो अपन करबे करथन, 1 घंटा मिलिस तो 1 घंटा जैसे समय निर्धारित हो, तो समय के हिसाब से हमन लीला ला प्रस्तुत करथन। लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर भी जैसे हम 2 अक्टूबर के सन 2014 में गए रहन भारत भवन भोपाल मध्य प्रदेश में, हमर मन के कार्यक्रम हो रही से, और वहाँ भी काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिली, काफ़ी अच्छा पसंद करी लोगन मन, बहुत भीड़ भीड़ रही से। ओकर अलावा चित्रकूट धाम गए रहन राष्ट्रीय रामायण मेला में, वहाँ भी प्रस्तुतिकरण रहस्य के हुई, और विश्व प्रसिद्ध मेला सोनपुर बिहार, तो वहाँ तो लाखों लोगन के भीड़, जहाँ भी देखो नज़र भर आदमी च आदमी, और पूरा इतना पसंद करें कि कहे नहीं जा सके, जितका कोई वो कम है। 3 रात के वहाँ हवन के कार्यक्रम हुई सोनपुर बिहार में, तो ये प्रकार से अमलनेर महाराष्ट्र में भी कार्यक्रम अपन गए, तुमसर महाराष्ट्र में भी कार्यक्रम में गए, अभी एक कार्यक्रम ऋषि कार्यक्रम सोमनाथ गुजरात के भी एक प्रोग्राम बनीस, तो वहाँ भी अपन गए। और ओकर अलावा अपन सन 2012 2013 14 में भी आकाशवाणी रायपुर से, बिलासपुर से, और रमन रेडियो है कोटा में, तो वहाँ भी अपन ये कार्यक्रम दिए ऐसे। और अच्छा बात ये एक ठियाऊ कि सन 2016 16 में भारत सरकार के नज़र पड़ीस और हमर रहस्य के फिल्म बनाईस, फिल्मांकन
1: वाह
0: करीस,
1: क्या बात है।
0: और 2019 में जो है वॉइस लोकेशन के ऊपर जो है हमन के फिल्म ला फिल्म फेयर अवार्ड दिस,
1: जी
0: नेशनल अवार्ड दिए रिसे। और अभी कुछ दिन पहली दूरदर्शन छत्तीसगढ़ भी जो है और हमार डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाइस, और टीवी मन में प्रसारण हो, लोगन मन दूर दूर से बधाई दिन, लद्दाख वगैरह से बधाई दिन, गुवाहाटी से बधाई दिन, हमार क्षेत्र के विधायक महोदय गुवाहाटी गए रही हैं, अब वो समाचार देखियो छत्तीसगढ़ के लगाइन, और छत्तीसगढ़ के समाचार लगाइन तो देखिन कि हमर रहस्य चलत रहे, तो वो 9 बजे रात के बधाई दिन कि मैं रहस्य तोर देखा था उग्रसेन, अच्छा लगा था बहुत अच्छा, घंटों से देखा था तय नहीं देखा था का ऐसे करके, तो अच्छा आनंद की अनुभूति हुई, बहुत अच्छा लगी, तो काफ़ी अच्छा लोगन मन पसंद करा थे। मैं चाहता हूँ कि ये जितका फैल सके, जितका विस्तार हो सके होए, तो ये प्रकार से जो है एक अच्छा ये मिलत जात है,
1: जी
0: और आओ मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के ऊपर आओ ध्यान।

0: है, काबर ये विलुप्ति के कगार में,
1: ये विलुप्ति के कगार में है और एला बचाए रखना है
0: जी,
1: और बचाए रखना है कर खातिर नई पीढ़ी ला भी सामने लाना
0: बिल्कुल,
1: है, नई पीढ़ी ला जोड़ना भी है
0: जी जी जी।
1: तो चूंकि आप अपन गांव में तो टीम तैयार कर रहे हैं
0: जी जी जी।
1: लेकिन और आपके अलावा भी का और ऐसा कुछ टीम तैयार हो थी कि ये जो लोक नाट्य रहस्य है एकर बारे में लोग जाने, नई पीढ़ी हर जाने और आए वाला समय में एला और विस्तार दे के प्रयास करे, तो आप मन के तरफ से
0: जी जी
1: कुछ प्रयास हो थे?
0: नहीं एम का है, देखो हमारे घर के लड़का मन तो जुड़े छे, हमारे घर के लड़का मन करत हैं, अब का है पुराना जुन्ना जुन्ना जैन कलाकार रही हैं तो कुछ मन स्वर्गवासी भी हो गए और कुछ मन एकर से नाता एकर सेती जोड़ डाल, पहली कार से एक भक्ति भाव रही से और अभी का है लोगन मन थोड़ा मनी माइंड हो गए हैं कि एम का मिली हमला का फायदा, देखते हैं कि एम का फायदा है, जब तक पैसा नहीं मिली तब तक ऐसे करके वो नवा लड़का मन ज्यादा जुड़े के प्रयास नहीं करे, भागे के प्रयास करते, फिर भी अपन जोड़ के रखे हन 22 जन के हमारे टीम है और लेकिन ये है कि एकर ऊपर का है कि यह नृत्य प्रधान आए और एमा जो नर्तक है तो एमा चलती अद्धा लावनी घुंघरू बांध के नाचना सहज काम, सहज बात नहीं,
1: नहीं है,
0: काफी अभ्यास प्रयास रियाज करेल पड़ते तो ओमा जल्दी लैकन मन तैयार नहीं हो पाए, ओकर लिए काफी बहुत काल की जाए सत्संगा ऐसे बानी हवाए, फिर भी अपन प्रयास करत हन कि यह जियत रहे और बढ़त रहे, आगे बढ़त रहे, विलुप्त तो मत हो जाए।
1: अब एक कार्यक्रम से विदल है के समय होते डॉक्टर उग्रसेन जी,
0: जी जी,
1: तो हमारे श्रोता साथी मल्ला आपके जो एक महत्वपूर्ण लोक नाट्य रहस्य है
0: जी,
1: ये विधा के बारे में कुछ कहना चाहा था?
0: मैं तो यही कही हूँ कि एकर से सब जुड़े प्रेम से रहे, इतका बढ़िया मनुष्य योनि में हम आए हन तो लोक नाट्य रहस्य अध्यात्म से भी परिपूर्ण है, भरपूर है, मनोरंजन से भी भरपूर है और हंसत गुठियावत बढ़िया जीवन जिंदगानी बढ़िया चले और वे मत जुड़े और आगे जो उन्हें एकर विकास है तीनों दिन बढ़त रहे, यही मैं सब कहना चाहिए हूँ
1: जी। हमारे साथ में श्री ताराचंद कौशिक जी हैं, कंस के भूमिका निभा था आप
2: जी,
1: है ना?
2: हाँ।
1: तो आज के समय में श्रोता साथी मतलब कुछ कहना चाहा था आप?
2: युवा पीढ़ी से मोर ही अपील है कि कला में आवे और कला में आ करके जौन भी कला के वो प्रदर्शन करना चाहते, मैं नहीं कहा था कि रामलीला में करे, लेकिन अपन कला के प्रदर्शन करे और कला हर आदमी के अंदर होते।
1: आप दोनों जन आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में आया और हमन लोक नाट्य रहस्य के बारे में चर्चा करें, का दशा है और आए वाला समय में का दिशा होना चाहिए एक बारे में विस्तार से चर्चा करें हमन, और श्रोता साथी मन बातचीत ला पसंद करी और आप मन के जो अपील है वाला भी स्वीकार करी, ऐसा उम्मीद करत हन। आप दोनों जन स्टूडियो में आए कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोता साथी हो, अभी हमन लोक नाट्य रहस्य के दशा और दिशा के बारे में चर्चा करत रहे और एक कार्यक्रम में हमारे साथ रही हैं डॉक्टर उग्रसेन कन्नौजे जी और श्री ताराचंद कौशिक जी। आज के कार्यक्रम ला बस यही समेटत हन। छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ये अंक ले मोला यह विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

0: छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां अभी आप सुन रहे थे। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थी महेंद्र साहू। ये आकाशवाणी रायपुर है।
1: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107 MHz पर। 9 बजने वाले हैं। अब आप विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
2: की सालगिरह का जश्न
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए मीत ब्रदर्स अरिजीत सिंह और साथियों की आवाजों में बागी फिल्म का गाना कुमार के हैं बोल और मीत ब्रदर्स की है तर्ज़।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज रिंगे
0: द्वार। मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: श्रोताओं, अभी संदेश से पहले आप सुन रहे थे फिर फिल्म का गाना। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए करण शेम्बी की आवाज में लुका छिपे फिल्म का गाना। निर्माण है गीतकार और संगीतकार हैं तनिष्क बागची और गोल्ड बॉय।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, अर्थात खाद्य की हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों फसलों की कटाई से लेकर भंडारण तक खाद्य पदार्थों की हानि होती है, साथ ही बड़ी मात्रा में तैयार किए गए भोजन की भी बर्बादी होती है, जबकि पूरे विश्व में करोड़ों लोगों को भूखे सोना पड़ता है। अतः ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम प्रत्येक स्तर पर खाद्य पदार्थ की बर्बादी को रोकें। इस वर्ष की थीम है ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं खूबसूरत फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

0: मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना,
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: एक विलक्षण गायक।
5: अरे ओरे हे।
4: संगीत के साधक।
5: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
4: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
5: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
4: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
6: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
4: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
7: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
4: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
8: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
4: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 से विविध भारती।
9: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाजों में ओ रोमियो फिल्म के गाने के साथ। गुलजार के हैं बोल और विशाल भारद्वाज की है तर्ज

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: ये 16 साल तंदान है तेरे ख्याल चंदान, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: दोस्तों, महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईडी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है, जिसका इल्ज़ाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। ये फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने। उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते।
2: हम भाई भाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए, रुपया।
1: दोस्तों, इसी रुपए की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
3: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो, अपने देश से निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी, मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया, लेकिन ऐसे कैसे बने हम,
4: बोल दो बापू,
3: बोल दे बेटा।

0: या
1: लड़की के कारण मी पागल झाला, प्रेम का फेंका हमने जो भाला, लड़की ने मेरा पॉकेट संभाला, रुपया पैसा लूट के मेरा उसने निकाला मेरा दिवाला। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है।

रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो मकान है, रुपया है तो दुकान है, और आखिर में अगर रुपया है तो दुनिया है। रुपये के ही नाम का जहूरा है, बाकी सब घास कूड़ा है।

ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार जो पैदा करता तुझे तो कभी ना कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। तो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

0: महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी और जिसके नायक होते थे महमूद।
1: वेलकम

ஏன் விடுதிரா?

0: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बा कमाल है।
1: वनकम जी।
2: ओ, पहुंच जाइए ना।
1: अयो, एक मिनट टाइम ना दे, ये खिड़की बंद करना।
2: क्या है?
1: खिड़की बंद करना जी।
2: क्यों?
1: ये वो बड़ा बड़ा आपको कॉल कर देखता ना।
2: देखने दो, सुनने दो, जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है।
1: आइयो आइयो, पहला बोलना ना ऐसा बात। डाय बोला तुम आना गाना गाना आना।
3: तुम नहीं गाना, तुम जाना हम गाना।
1: ये हम जाना तुम गाना, बाप का राज है या बोला, या हम तेरा गोला बनाना गोला, या ताली दे रहा गाना गाना।
4: चल चल
1: देवी, तुम बदाना बदाना।
0: दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे। फिल्म पड़ोसन का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था। संगीतकार थे इसके राहुल देवबर्मन। पहले ये गाना सुन लेते हैं, इसके बाद हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे।
5: यह कच्चा

0: एक पे कैसे रहते जब रिकॉर्डिंग में मौजूद हूँ मन्ना डे, किशोर कुमार और महमूद। तो भाई किस्सा ये है कि इस गाने की शक्ल ऐसी नहीं थी। पहले जो गीत लिखा गया था, जो संगीत रचना की गई थी, रिकॉर्डिंग के वक्त बदल दी गई थी। दरअसल उन दिनों रिकॉर्डिंग के दौरान सारे साजिंदे गायक मौजूद हुआ करते थे। महमूद साहब जो इस फिल्म के निर्माता थे और राहुल देव बर्मन साहब जो कि संगीतकार थे। महमूद साहब ने आर डी बर्मन को पूरी आज़ादी दे रखी थी। उस पर किशोर कुमार साहब गजब के फनकार, खुद गायक, गीतकार और संगीतकार, उन्हें भी खूब मजा आने लगा और गीत की शक्ल बदलते बदलते ऐसी हो गई। दोस्तों, संगीतकार राहुल देव बर्मन ने महमूद साहब के साथ फिल्म भूत बंगला में अभिनय भी किया है। जी हाँ, सुनते हैं इसी फिल्म का ये गाना, संगीत है राहुल देव बर्मन साहब का।
1: गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात। आओ ट्विट करें का फुटा मौसम,

0: की है यही, आओ ट्विस्ट करे काफ़ता मौसम, जिंदगी है यही।
1: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
2: हमारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सत्या है, देखो बिटिया।
1: सत्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो, तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
0: नहीं साहब, ने बड़े से बड़ी गाली दे ले पर हमको चोर मत कहो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब।

दोस्तों, हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम। महमूद साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

इंटरनेशनल फकीर आए हैं, दिनार नहीं तो डॉलर चलेगा, अरे कमीज नहीं तो कमीज।

0: विविध भारती के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, आकाशवाणी दिल्ली से। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 16.7 MHz पर। 9:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा।
1: अब प्रादेशिक समाचार होंगे, ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर दशहरा के तहत 23 अक्टूबर को होने वाले मुरिया दरबार में शामिल होंगी। प्रदेश में लगातार हुई बारिश से 500 से अधिक गांवों के करीब 22,000 लोग प्रभावित हुए हैं। आज भी बस्तर में इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका। और आयकर विभाग ने कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 21 नवम्बर कर दी है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजाति संस्कृति, लोक परंपराओं और गौरवशाली विरासत के प्रतीक बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल होंगी। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निमंत्रण पर 23 अक्टूबर को जगदलपुर में आयोजित होने वाले बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल होने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री का निमंत्रण पत्र केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, संस्कृति और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और बस्तर सांसद महेश कश्यप ने सौंपा। मुरिया दरबार बस्तर की सामाजिक और सामुदायिक परंपरा की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। इसमें पारंपरिक व्यवस्था से जुड़े सामाजिक प्रमुखों और स्थानीय समुदाय के बीच संवाद की परंपरा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया है कि प्रदेश में हाल में हुई लगातार बारिश से 571 गांवों के 22,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित परिवारों को 173 राहत शिविरों के माध्यम से राहत दी जा रही है और अब तक 16,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ से हुई क्षति का आकलन कर RBC 6.4 के तहत प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। श्री साय ने कल सुकमा और जगदलपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने राहत शिविरों में भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने घरेलू सामान के नुकसान से प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा भी की। ओडिशा के नबरंगपुर में इंद्रावती नदी के ऊपरी हिस्से में जल स्तर बढ़ने और जलाशयों से पानी छोड़े जाने के कारण जगदलपुर में नदी का जल स्तर बढ़ने की संभावना है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार इसका प्रभाव आज सुबह से जगदलपुर में देखने को मिल सकता है। यहां जल स्तर में 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की वृद्धि की संभावना है। बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा ने नदी तट के गांवों और बस्तियों के लोगों से सतर्क रहने तथा सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में जाने की अपील की है। आयकर विभाग ने कंपनियों के लिए आकलन वर्ष 2026-27 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी है। साथ ही कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी है। रायपुर में भारतीय उद्योग परिसंघ CIII के 2 दिवसीय MSME कॉन्क्लेव का उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव में 250 से अधिक उद्यमियों, नीति निर्माताओं और उद्योग प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस दौरान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वित्त पोषण, तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित औद्योगिक विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हो रही है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि MSME छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कॉन्क्लेव का दूसरा दिन आज व्यावहारिक क्षमता निर्माण पर केंद्रित रहेगा। छत्तीसगढ़ जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने कल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात कर अपनी मांगों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने चिकित्सकों के मानदेय, अनुबंध राशि, अनुबंधित सेवा अवधि और उच्च अध्ययन के लिए अनापत्ति पत्र की प्रक्रिया से जुड़े विषय रखे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर दशहरा के तहत 23 अक्टूबर को होने वाले मुरिया दरबार में शामिल होंगी। प्रदेश में लगातार हुई बारिश से 500 से अधिक गांवों के करीब 22,000 लोग प्रभावित हुए हैं। आज भी बस्तर में इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका और आयकर विभाग ने कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 21 नवम्बर कर दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी रायपुर है, 10 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उजाली की ओर। प्रायोजक हैं छत्तीसगढ़ संवाद।
3: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

भारत सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार मिलकर समय समय पर बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं का उद्देश्य यही होता है कि सरकार सीधे तौर पर पहुंचे जनता के द्वार और विकास की ये योजनाएं बन जाएं एक जन अभियान। ऐसी ही एक पहल इन दिनों सरकार ने की है जिसका नाम है सेवा संकल्प अभियान। सेवा का सीधा संदेश है हर जरूरतमंद तक बुनियादी सहूलियतों को पहुंचाना और सेवा का ही संकल्प लेकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक देशव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। सरकार की ये मंशा है कि देश के हर नागरिक को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए और सबको मिले सरकारी योजनाओं का पूरा पूरा लाभ। सन 2047 तक भारत को विकसित देश के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना को साकार करने के लिए विकास कार्यों को गति देने की आवश्यकता है। इसी भागीरथी प्रयास का नाम है सेवा संकल्प अभियान।

0: सेवा संकल्प अभियान शासकीय योजनाओं को गति देने के लिए पूरे एक महीने तक मनाया जाएगा। इस अभियान का मकसद है केंद्र और राज्य सरकारों के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाना। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा जाए। सरकार चाहती है कि हर एक नागरिक विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प में अपना भरपूर योगदान दें। इस अभियान के तहत 31 दिनों तक विभिन्न रचनात्मक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायपुर के जिलाधीश डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा,
1: देखिए सेवा संकल्प अभियान एक टारगेटेड कार्यक्रम है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच पूरे देश में सेवा कार्यों को ज्यादा से ज्यादा करने के साथ इसको करना है। 17 सितंबर को आशीर्वाद का दिया के माध्यम से सभी को एक संदेश देने की कोशिश थी कि जो लोग देश के लिए काम करते हैं पूरे देश का आशीर्वाद उनके साथ है, जो लोग देश की सेवा करते हैं उनका आशीर्वाद उनके साथ है। और मुझे खुशी है कि रायपुर ने इस मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 25 लाख दीयों के साथ पूरे रायपुर वो जगमग हुआ, उस आपने देखा है। और उसके साथ लगातार सेवा के काम शुरू हो गए हैं, उसमें स्कूलों में कंपटीशन और सारी चीजें चल रही हैं। और मुझे लगता है कि रायपुर में सेवा महाकुंभ का भी आयोजन हुआ था, जिसके माध्यम से हम लोगों को सही अर्थों में सेवा पहुंचाने में सफल रहे हैं। 2548 लोगों ने एक साथ एक जगह पर रक्तदान दिया है, 31 लोगों ने देहदान किया है, 1.5 टन से ज्यादा कपड़े एकत्रित हुए हैं, 2500 के आसपास किताबें एकत्र आई हैं, काफी मात्रा में स्टेशनरी आई है, खिलौने आए हैं। जो नीडी बच्चे हैं, जिन बस्तियों में लोगों की इसकी आवश्यकता है वहां उनको बांटा जाएगा। हॉस्पिटल्स में खून की उपलब्धता बढ़ाई गई है। इस प्रकार से सेवा के नए नए कामों से, स्वच्छता से सेवा के माध्यम से सेवा की गई है। शाम को हमारे यहाँ वीर गाथा सम्मान और सेवा गाथा की जो अनकही कहानियां हैं उनका भी सांस्कृतिक मंचन है। नुक्कड़ के माध्यम से जो सेवा के कार्य हैं वो नीचे तक पहुंचाए जा रहे हैं। वीर गाथा सम्मान में उन सभी लोगों का सम्मान का है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। आंगनबाड़ियों के माध्यम से, आंगनबाड़ियों में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारी मितानिन बहनें और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं हैं उनके सम्मान का, उनकी सेवा को सम्मान देने का कार्यक्रम है। इसी प्रकार से वृद्धों का सम्मान, दिव्यांगों का सम्मान, उनकी सेवा, ये सब पूरा एक महीने का कार्यक्रम है। वैसे तो हम लगातार सेवा सेतु के माध्यम से रायपुर जिले में लगभग 35,000 हितग्राहियों को उनकी जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। इस प्रकार से विभिन्न माध्यमों से आम व्यक्तियों को तक सेवाओं को पहुंचाने का एक केंद्रीकृत अभियान है सेवा से संकल्प का कार्यक्रम। हमारी 7 विधानसभाएं, हर विधानसभा स्तर पर एक कैंप हो रहा है जिसमें हम 5,000 से ज्यादा लोगों को हर कैंप में राहत पहुंचाएंगे। स्कूलों, आंगनबाड़ियों, हर जगह पर, जो चाहे गांव में हो जो चाहे शहर में हो, जो कार्यक्रम गांव में चल रहा है वही शहर में चल रहा है वही गांव में चल रहा है। हम अपने देश को विकसित कब बना सकते हैं? विकसित तभी बना सकते हैं जब हम नागरिकों को अच्छी सेवाएं दें और नागरिकों में देश के लिए, दूसरे लोगों के लिए सेवा का भाव पैदा करें। इस माध्यम से हम वो कर रहे हैं, लोकल फॉर वोकल के माध्यम से लोकल चीजों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास, सड़क सुरक्षा के कार्यक्रमों से सड़क सुरक्षा को करना, नशा मुक्त भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ना। इस प्रकार से 26 सेवाओं को ध्यान में रखकर ये पूरा सेवा सेतु संकल्प चल रहा है। और जब सेवाएं अच्छी होंगी, लोगों में जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से देश विकसित भारत की ओर बढ़ेगा। और मुझे तो उम्मीद है कि 2047 से पहले ही हम लोग उस विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करें।

सेवा संकल्प अभियान का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों से जन जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को जन जन तक पहुंचाना है। सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाना भी सरकार की मंशा है, ताकि विकसित भारत 2047 के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प को पूरा किया जा सके। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हर स्तर पर विकास कार्यों और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

स्वच्छता संकल्प अभियान के तहत विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नागरिकों को जोड़ा जा रहा है। पूरा शासकीय अमला सरकारी योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों और विकास परियोजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए कमर कस कर तैयार है। इस पूरे अभियान का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। विधानसभा, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर किए गए महत्वपूर्ण विकास कार्यों और लाभार्थियों का रिकॉर्ड तैयार करने के साथ साथ ही कार्यक्रम की निगरानी और समीक्षा भी की जाएगी।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।
1: छत्तीसगढ़ सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की जनसेवा के प्रति आभार व्यक्त करने और विकसित भारत 2047 के संकल्प को जन भागीदारी से विस्तार देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय का कहना है कि सेवा छत्तीसगढ़ की संस्कृति और संस्कारों का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने प्रत्येक प्रदेशवासी से अपील की है कि अपनी सहभागिता से इस अभियान को जनसेवा और जन

0: भागीदारी का उत्सव बनाएं।
1: मैं मिसेस सोनल राजेश शर्मा, छत्तीसगढ़ हेड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। मुझे अत्यंत गर्व व खुशी हो रही है कि सेवा संकल्प अभियान में हमारे छत्तीसगढ़ ने हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दो रिकॉर्ड कायम किए। एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, उस दिन लगभग हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 1 करोड़ दिए प्रज्वलित किए गए और उनका सर्टिफिकेट मैंने मरीन ड्राइव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को उनका सर्टिफिकेट सौंपा। दूसरा रिकॉर्ड था इंडोर स्टेडियम में, जिसमें केवल हमने महिलाओं को लिया था, केवल महिलाएं जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया, क्योंकि भ्रांतियां क्या है कि महिलाएं ब्लड डोनेशन नहीं कर सकती क्योंकि वो कमजोर हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यह मिथक भ्रांति तोड़ते हुए महिलाएं आगे आई और अपना ब्लड डोनेट की। तो जो महिलाएं जन्म दे सकती है वो एक जीवन भी बचा सकती है। मैंने देखा कि जब एक महिला अपना ब्लड डोनेट करती है तो वो किसी एक अपरिचित के जान बचाती है। तो यह वर्ल्ड रिकॉर्ड सवेरे 10 बजे से शाम को 6 बजे तक था और लगभग उसमें 3,500 महिलाओं ने ब्लड डोनेट किया और यह वर्क हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आधिकारिक रूप से सम्मिलित हुआ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को जो महिलाओं का ब्लड डोनेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड था उनका सर्टिफिकेट मैंने आधिकारिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान किया।

0: वास्तव में ये अभियान सेवा के भाव को जन जन तक पहुंचाने और समाज तथा राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को सहभागिता के साथ निभाने का अवसर है। सरकार की कल्याणकारी नीतियों के कारण लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। परिणाम स्वरूप पक्का आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। विकास की हर एक उपलब्धि के केंद्र में आम नागरिकों के पूरे होते सपने, उनका बढ़ता आत्मविश्वास और जीवन में आती खुशहाली है।
1: नमस्कार, मैं अर्पित तिवारी, मेरा युवा भारत, माय भारत, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार से छत्तीसगढ़ में राज्य निदेशक के पद से अभी कार्यरत हूँ। सेवा से संकल्प अभियान बहुत ही एक बढ़िया अभियान है, समाज तक पहुंचने का, लोगों तक पहुंचने का। इसमें पूरा जो है सभी विभाग इसमें लगे हुए हैं और उसी के अंतर्गत माय भारत भी इसमें लगे हुए हैं और हमारे सभी स्वयं सेवक भी इसमें अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी हाल ही में बहुत बड़ा एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित हुआ है, वहां पे हम माय भारत की टीम और पूरे वॉलेंटियर्स लगे हुए थे। साथ ही साथ जो स्वच्छता अभियान इसके अंतर्गत चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। हर जिले में हर विभाग के साथ मिलकर कार्य किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य जांच शिविर है, वृक्षारोपण

किए जा रहे हैं। देखिए युवा जो है सबसे बड़ा जो माध्यम है युवा का जोड़ने का वो माया भारत के से अलग अलग जो गतिविधियां हैं, जैसे अभी रक्तदान शिविर हमारा हुआ है उसमें युवा एज अ वॉलेंटियर भी काम किए हैं, एज अ ब्लड डोनर भी काम किए हैं। जब हम स्वच्छता अभियान भी रायपुर में मना रहे हैं तो वहां पे भी स्वयं सेवक अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वो स्वयं सेवक कॉलेज के भी हैं, वर्किंग बैकग्राउंड से भी हैं, स्कूल के भी हैं, जो 15 से 29 वर्षीय हैं। साथ ही साथ शिक्षक के रूप में भी जुड़ रहे हैं, जो बच्चों को और सिखा भी रहे हैं, साथ ही साथ एक स्वयं सेवक के रूप में भी भूमिका निभा रहे हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है विकसित भारत 2047, इसमें युवा की बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका है। इसमें युवा अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को जोड़ा जा रहा है। अभी जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, ये नेशनल यूथ फेस्टिवल है, इसका तीसरा संस्करण है इस बार, तो इसमें युवाओं को मंच दिया जा रहा है कि वो आके अपनी बात रखें, अपने आइडियाज दें और किस तरीके से नीति निर्माण में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित की जा सकती है, इस पे जोर दिया जा रहा है। साथ ही साथ अभी जो हमारा दूसरा मुख्य कार्यक्रम चल रहा है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, कि किस तरीके से 2047 में हम जो अपने भारत को विकसित बनाना चाहते हैं तो सिर्फ विकसित ही नहीं बनाना चाहते हैं, युवाओं को नशा मुक्त भी रखना चाहते हैं। तो इस तरीके की अलग अलग गतिविधियां चलती जा रही हैं, खेलो संवाद कार्यक्रम हो रहे हैं, क्षमता संवर्धन कार्यक्रम हो रहे हैं, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहे हैं। तो अलग अलग मंच पे, अलग अलग जगह पे कि किस तरीके से यूथ को कंस्ट्रक्टिवली इंगेज किया जा सके, यूथ लेड डेवलपमेंट पे बात की जा सके और यूथ लेड पॉलिसी मेकिंग पे उनकी भूमिका सुनिश्चित की जा सके, तो ये अलग अलग तर्ज पे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिये सेवा संकल्प कार्यक्रम में माया भारत के द्वारा सभी 33 जिलों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा जा रहा है। हम स्वयं सेवक सक्रिय है, वर्तमान में अभी हमारे यहाँ 16 ऑफिस हैं छत्तीसगढ़ में, नए जिलों में हमारे ऑफिस खुलने का प्रस्तावित है, तो जल्द ही वहाँ पे भी हमारे ऑफिस खुलेंगे और जो है और बेहतर तरीके से हमारे स्वयं सेवक समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका जरूर सुनिश्चित कर पाएंगे।

संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में कई आयोजन हो रहे हैं, जहां एक ओर बच्चों के लिए चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नुक्कड़ नाटकों के जरिए आम जन तक पहुंच रही है नमो सेवा गाथा। कहीं आंगन का उत्सव में पोषण और महिला बाल कल्याण पर जोर दिया जा रहा है, तो कहीं कहानी बदलाव की मुखरित हो रही है, यानी हर तरफ है जन भागीदारी से विकसित भारत के संकल्प की गूंज। छत्तीसगढ़ में आज सेवा संकल्प अभियान की बयार बह रही है। इसके माध्यम से शासन की योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के साथ साथ सेवा सहभागिता और संकल्प की भावना को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है।

है। इस एक माह तक चलने वाली विभिन्न गतिविधियों में बच्चे, महिलाएं, युवा, किसान, हितग्राही और आम नागरिक बन रहे हैं सहभागी। पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी सबको लेकर एक साथ रचनात्मक अभिव्यक्ति की अलख जगाता कदम दर कदम बढ़ रहा है उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रायोजक थी छत्तीसगढ़ संवाद। ये
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 14.7 MHz पर। 10:30 हुए हैं।
3: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
4: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो संकी, संचालन स्वतंत्र महंत का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रवि आनंद।

0: जय जोहार संगी हो, मैं हूँ आप मन के रेडियो संगी बंसी, और आप मन अपन मन पसंद गुरतुर गुरतुर गीत सुना था हमारे कार्यक्रम हेलो संगी में। तो भैया हो, ये कार्यक्रम में आप सब भोजन के बहुत बहुत स्वागत है, और चला करथन ये कार्यक्रम के श्री गणेश, आओ लेथन भैया मन के फोन। हेलो संगी।
1: हाँ संगीत और माया भरे राम राम।
0: राम राम जी, माया दुलार बनाए रखे आऊ आपके हमार हेलो संगी में आप मन फोन करा, एक बार आपके बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से बोला था?
1: मैं नवागढ़ नारायण प्रसाद वर्मा बोला था वहाँ संगी।
0: नवागढ़?
1: हाँ संगी।
0: वर्मा जी, आपके यहाँ अभी गांव में का बूता काम चला थे?
1: अरे भैया खेती किसानी काम तो चलते है भैया, और संग में अभी बढ़िया तिहार मनावा थन।
0: और का कहते हैं, साफ सफाई स्वच्छता ला विशेष ध्यान देना है वर्मा जी।
1: हाँ भैया, जैसे त्योहार बार मनाथन भैया, तो हमला जब ही अच्छा खुशी मिली, जब ही अच्छा हमारा त्योहार सफल रही,
0: बिल्कुल
1: जब
0: बिल्कुल
1: सफाई से त्योहार बार मनाबो भैया, है ना?
0: बिल्कुल। तो आज आपका सुनना चाहा था।
1: हाँ भैया, तो चल संगी देवता ला मनाबो, यही वाले गाना सुना दो भैया, गुरुवार अमर काम और दुखे पास देवार के स्वर में।
0: तो वर्मा जी चला सुना आपके पसंद के ये सुघर गीत।

0: हेलो संगी।
1: हेलो संगी, राम राम, जय जोहार भैया।
0: राम राम, जय जोहार जी। कहाँ से बोला था संगवारी?
1: मैं नाम है अटले माखन वर्मा, बोलो था संगवारी
0: माखन वर्मा,
1: जी।
0: नान घाट।
1: हाँ,
0: तो हेलो संगी, मैं वर्मा जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
0: आओ का है का, आपका सुनना चाहा था आज।
1: आज छत्तीसगढ़ी गीत सुनवा दूँ, कोई भी संगवारी शेख हुसैन के सुनवा दूँ, कोई भी गीत,
0: चलो
1: कोई
0: ठीक है,
1: गीत।
0: ठीक है ठीक है। वर्मा जी, आप फोन करो एक बार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो आपके पसंद के गीत।

भजिया खाले गुल गुल भजिया खाले गुल गुल भजिया खाले गोरी तय धनिया डोली मोर संग तय हरदा दरिया गाले मन के गोरी मोर संग तय हरदा दरिया गाले संग मा जाबे तरिया जाबे वो गुल गुल भजिया खाले गुल गुल भजिया खाले गोरी तय धनिया डोली मोर संग तय हरदा दरिया गाले मन के गोरी मोर संग तय हरदा दरिया गाले संग मा जाबे।

0: खाले गुल गुल भजिया खाले गुल गुल भजिया खाले गोरी तैं धनिया डोली मोर संग तैं हर दा दरिया गाले मन के गोरी मोर संग तैं हर दा दरिया गाले संग मा जाबे तरिया जाबे वो गुल गुल भजिया खाले गुल गुल भजिया खाले।
1: हेलो संगी।
2: हेलो संगी।
1: हाँ हेलो संगी, आप में ये कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। हमारा राम राम है। कहाँ से बोला था?
2: मैं गणेश धाम परसुली से मोतीन मानीपुर बोला था।
1: गणेश धाम परसुली।
2: हेलो
1: आओ, का बूता काम चलत है आपके गांव में? अच्छा तीजा को रमाने हैं तो बने तिहार बहार ला मनाए है इखानी। अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है। और लोग लेका मन काका करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं?
2: लोग लेका मन पढ़ते दो सो एक सौ ग्यारहवीं पढ़ते एक सौ नवी पढ़ते।
1: बहुत बढ़िया। तो ग्यारहवीं में का विषय लेके पढ़े थे?
2: कॉमर्स
1: ले है। बहुत अच्छा, चलो ठीक है। कॉमर्स के भी बहुत अच्छा स्कोप रहते, बैंक में भी रहते और प्लांट वगैरह में भी रहते, सब तरफ अच्छा स्कोप रहते। बढ़िया पढ़े वर कही है। और आपके गांव में कुछ स्वच्छता अभियान वगैरह चलते? आप मन स्व सहायता समूह वगैरह में जुड़े हैं आप?
2: नहीं जुड़े हैं लेकिन
1: अच्छा, माने विरासत में मिली कह।

0: तो बहुत अच्छा। तो आज आपका सुनना चाहा था।
1: गणेश भगवान के गणेश भगवान के इतना अच्छा सुना दू कोई भी कलर बात दे।
0: गणेश भगवान के, चलो ठीक है। तो हेलो संगी में फोन करा आप, ओकर बार आप ना बहुत बहुत धन्यवाद है। सुना आपके पसंद के गुरतुर गीत।

0: हेलो संगी।
1: हेलो संगी, राम राम।
0: राम राम, जय जोहार जी। आऊ का हाल चाल है? हेलो संगी, मैं आपके बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ ले बोला था?
1: धन्यवाद है, धन्यवाद भैया। सहसपुर से बोल रहा हूँ, चिंसी सहसपुर।
0: सहसपुर
1: जी जी
0: मोहित राम साहू बोला था का?
1: हाँ सर, हाँ सर। वो ही तो याद नहीं रहता, बोला मस्त गीत है ना, सुन सुन करते वाली देखी। भगवती साहू के सुना देता सर, भगवती साहू के।
0: भगवती साहू के
1: डारा टूट के पाना गिरे, देखो संगी भूया माले।
0: चला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके पसंद है ये गाना, ला आप सुना, फोन करो। कर बार आप ना, बहुत बहुत धन्यवाद है।

0: हेलो संगी।
1: हेलो, राम राम, जय जोहार।
0: राम राम, जय
1: क्या
0: जोहार। हेलो संगी, फोन इन कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी, कहाँ बोला,
1: धन्यवाद सर,
0: कहाँ से बोला था जी, क्या नाम है आपके?
1: धन्यवाद। वो नाम लिया सुरेंद्र सिंह भारद्वाज, सुरेंद्र
0: सुरेंद्र
1: सिंह भारद्वाज,
0: भारद्वाज, कहाँ से बोला था, गांव के नाम बता।
1: भारती नगर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोला था भैया,
0: भारती नगर,
1: भारती नगर बिलासपुर छत्तीसगढ़।
0: बहुत अच्छा। तो भारद्वाज जी, आपके गांव में अभी काका बूता काम चला थे?
1: गाँव में खेती बाड़ी चल रहा था सर, वैसे तो मैं तो रायगढ़ में सर्विस करता हूँ। मैंने
0: अच्छा, रायगढ़ में सर्विस करता।
1: हाँ हाँ भैया,
0: अच्छा, कौन भी डिपार्टमेंट है आप?
1: टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में। हाँ भैया, मैं सहायक ग्रेड वन हूँ।
0: अच्छा, तो अभी तो रायगढ़ ले बात करत हुई है फिर।
1: अभी रायगढ़ में बात कर रहा था सर, ऑफिस भी है। हाँ
0: अच्छा, ऑफिस में। हाँ,
1: हाँ भैया,
0: बहुत अच्छा है। तो ऑफिस में आओ, सब झनला सुना था कि नहीं आपके फरमाइशी गीतला?
1: ऑफिस का काम में बिजी रहते सर, कोई कोई सरपंच, बाकी मैं तो बिजी रहता हूँ, सुना तो रहता हूँ हर कार्यक्रम के लिए।
0: हाँ, तो बहुत अच्छा। ये मिनी स्टेडियम करा है वही हरे ना आपके
1: हाँ
0: नगर?
1: हाँ हाँ वही सही है। हाँ, मैं बाजू का सामने। हाँ
0: जी, नहीं देखे हम, जाना था। तो अच्छा बात है, आपको बढ़िया ऑफिस के काम के साथ
1: हाँ
0: में हमार लोक संगीत के आनंद ला भी ले था, तो बहुत अच्छा बात है। का है आज के आपके पसंद का है?
1: मुरली माँ कैसे जादूकारी जोड़ीदार,
0: एक आकर स्वर है,
1: कुलेश्वर ताम्रकार के स्वर।
0: कुलेश्वर ताम्रकार के, बहुत अच्छा पसंद है आपके। चला तो भारद्वाज जी, हेलो संगी, मैं आप फोन कर एक बार, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसने
1: धन्यवाद, आप मन भी लगिया।
0: माया दुलार बनाए रखिया। आओ,
1: हाँ भैया, हाँ
0: आप सुना आप मन
1: भैया,
0: के पसंद के ये गुरतुर गीत।

0: भैया हो कार्यक्रम हेलो संगीले अब विदा लेके बेरा हो गए है। ये कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहीस भूपत सिंह धुर्वे के, प्रस्तुति सहयोग रहीस हमर संगवारी रामविलास पटेल के, प्रस्तुतकर्ता रहिन रवि आनंद आउ आप मन के बीच में मैं संचालन करत रहे स्वतंत्र महंत।
1: छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी फोनिन कार्यक्रम हेलो संगी अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 107.7 MHz पर 11 बजने वाले हैं। अब आप विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
2: इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। कार्यक्रम की शुरुआत बेगम अख्तर की आवाज़ से, शायर हैं तस्कीन कुरैशी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह।

0: सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आंखों में तेरा ही चेहरा, ये एल्बम का नाम है। आवाज और गीत जय वालिया का, संगीत ललित का।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपकी आशा, इस एल्बम का गाना आशा भोसले की आवाज में, बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी।

0: Rang Tarang.
1: पिनाज मसानी की आवाज़ है, शायर है गालिब, संगीत मधुरानी का, एल्बम आपकी बज़्म में।

रंग तिरंग कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाजों में। कुणाल वर्मा का लिखा हुआ गाना, पायल देव का संगीत, एल्बम का नाम है दिल लौटा दो।

इस बीच ओडिशा के नबरंगपुर में इंद्रावती नदी के ऊपरी हिस्से में जल स्तर बढ़ने और बांध का गेट खोल दिए जाने के कारण जगदलपुर में इंद्रावती नदी का जल स्तर बढ़ गया है। आज सुबह इंद्रावती नदी का पानी खतरे के निशान से 9.5 फीट ऊपर बह रहा है। बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा ने नदी तट के गांवों और बस्तियों के लोगों से सतर्क रहने तथा सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में जाने की अपील की है। आयकर विभाग ने कंपनियों के लिए आकलन वर्ष 2026-27 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी है। साथ ही कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एशियन गेम्स 2026 की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला कबड्डी टीम की सदस्य और छत्तीसगढ़ की संजू देवी को 51 लाख रुपए की

प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। संजू देवी कोरबा जिले की रहने वाली हैं। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आशीष कुमार टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। श्री टिकरिहा वर्तमान में छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर दशहरा के तहत 23 अक्टूबर को होने वाले मुरिया दरबार में शामिल होंगी। प्रदेश में लगातार हुई बारिश से 500 से अधिक गांवों के करीब 22,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बस्तर में इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ा और आयकर विभाग ने कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। जापान में एशियाई खेलों में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने कुल 328 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चीन पहले और कुवैत तीसरे स्थान पर रहा। एशियाई खेलों में भारत कुल 47 पदकों के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ADGPI पर पोस्ट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा हालात पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सऊदी अरब भारत का भरोसेमंद और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, संस्कृति और पारस्परिक आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने दोहा में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2026 वार्षिक बैठक के दौरान सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान से मुलाकात की। श्री जदान ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और बेहतर निवेश माहौल के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाई दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत के सफल समापन का स्वागत भी किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पारादीप बंदरगाह दल के त्वरित संयुक्त बचाव के प्रयासों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत के बंदरगाह हर समय पूर्ण समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ओडिशा के पारादीप तट के पास जहाज लगभग 9000 मीट्रिक टन पाम ऑयल ले जा रहा था और उसमें 23 चालक दल के सदस्य सवार थे। रविवार सुबह मुख्य इंजन के फेल होने और गिट्टी टैंक में तेजी से पानी भरने के कारण जहाज एक तरफ झुक गया, जिसके बाद जहाज ने आपातकालीन संकट कॉल जारी की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय रोगों, उनकी रोकथाम और वैश्विक प्रभाव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 257 अंक गिरकर 72,514 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे दिल, हृदय, दिल शब्द के गाने। आज विश्व हृदय दिवस है तो दिल शब्द के गाने। 24 घंटे इस फिल्म का ये पहला गाना आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में, राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं, संगीत है बिपिन बाबुल का।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गाना अब आपको सुनवाते हैं। शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम आह।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आज विश्व हृदय दिवस पर दिल शब्द के गाने आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में आईना फिल्म का ये गाना, समीर के बोल, दिलीप सेन समीर सेन का संगीत।

शकील बदायूनी का लिखा और सी रामचंद्र का संगीत बद्ध किया। ये गाना महेंद्र कपूर की आवाज में, फिल्म का नाम जिंदगी और मौत।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं अमरदीप फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध किया सी रामचंद्र ने।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: यह है महेंद्र कपूर की आवाज, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, फिल्म आज की आवाज।

0: वाह प्रभात वाह, बहुत अच्छी
1: तालियां उनके लिए।
2: आकाश दीप फिल्म का गाना लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है चित्रगुप्त का।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: आंधी और तूफान इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, फारूक कैसर के बोल, संगीत है रॉबिन बनर्जी का।

0: कसर है
1: सर के इशारे दिल के सहारे मारो ना गुमान से
0: दिल लाया मैं बचा के पंजाब से कितना प्यार देखो मुझको जना।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब सुना जाए अलबेला फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और इसकी धुन बनाई सी रामचंद्र ने।

0: मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अब आपको सुनवाते हैं तलत महमूद की आवाज में आरजू फिल्म का ये गाना। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई अनिल बिस्वास ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस

0: स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आस का पंछी। इस फिल्म से सुबीर सेन की आवाज, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: छू लूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर पहुंचेगा।
1: इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूं मैं मंजू द्विवेदी। आज सबसे पहले आपको जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो पढ़ के सुना देते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने तो पढ़ ली है और पढ़ने के बाद उन्होंने बहुत सारी बातें लिख भेजी है। पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं। कहते हैं कि हंसने हंसाने से हमारी और हमारे दिल की सेहत अच्छी रहती है। हंसता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है। किसी को हंसाना ये बड़ा कठिन काम है, पर कुछ लोगों को इसमें महारत हासिल होती है। जी हाँ, कुछ लोगों को इसमें महारत हासिल होती है। जीवन में अगर हंसी का खजाना ना हो तो जीवन खाली डिब्बे की तरह होता है। जो दिल वाले होते हैं, हमारे चाहने वाले होते हैं, उनके लिए रुपया सबसे बड़ा नहीं होता, बल्कि उनके लिए तो किसी की सादगी, किसी का बांकपन दिल पर तीर चला देता है। कोई चतुर जब हंस की चाल चलता है तो भी माहौल ठहाकों वाला हो जाता है। कभी कुछ अटपटे और चटपटे शब्द जब घोड़ा गाड़ी या रिक्शा निराली पर लिखे हों तो भी हंसी आ जाती है ना। तो बताइए, किसने चुराई है आपकी निंदिया? ये है आज की इबारत या टेक्स्ट, जिसमें बहुत सारे शब्द छुपे हैं, जिसमें बहुत सारे गाने छुपे हैं। और विषय की अगर बात करें तो आज अभिनेता महमूद को हम याद कर रहे हैं। और आज विश्व हृदय दिवस भी है। हृदय यानी कि दिल, दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो हम सुन भी रहे हैं कि दिल ने धोखा दे दिया, या दिल हमारे वश में नहीं रहा, दिल पर काबू नहीं रहा, दिल ने अचानक ये कर दिया, वो कर दिया। तो बहुत सारी बातें हैं दिल को लेकर, हृदय को लेकर। तो अपने हृदय का, अपने दिल का ख्याल रखिए। और भी बहुत सारे सवाल हमारे होंगे आगे, लेकिन एक साथी की ये बात आपको पढ़ के सबसे पहले सुना देते हैं कि हंसना और हंसाना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये आत्मा का उल्लास है। बिना हंसी या मुस्कुराहट के जीवन को नीरस, रसहीन या मूर्छित कहा गया है। हंसी के बिना मानव पाषाण हृदय के स्वरूप हो जाता है, जिसमें संवेदनाओं और भावनाओं के अंकुर नहीं फूटते। जैसे वर्षों से कोई भूमि बंजर पड़ी हो, श्रृंगार रस में मुस्कान लिए हुए चेहरे की सुंदरता के लिए अनेकों उपमाएं हैं। कहीं पर खिलते हुए कमल या दामिनी से चपलता, कहीं चांद सा रोशन चेहरा जैसे शब्द गढ़े गए हैं। मुस्कान, हंसी आंतरिक सौंदर्य का बाह्य प्रकटीकरण है। दूसरों को हंसाना बहुत कठिन होता है, ये एक उत्कृष्ट कला और साधना है। जी हाँ, ये कला है जो बहुत कम लोगों में होती है। तो हो सके तो आप भी किसी के चेहरे पर हंसी लाइए, मुस्कराहट लाइए, किसी के हंसने की वजह बनिए, और फिर देखिए आपके चेहरे पर अपने आप हंसी या मुस्कुराहट आ जाएगी, और उससे आपके दिल की सेहत भी तो अच्छी रहेगी ना। चलिए गीत सुनते हैं। नीलकमल फिल्म का ये गाना सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे। मन्ना डे की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत।
1: खाली डब्बा, खाली बोतल,

एक साथी की बात है कि आज तो सुरीला सफर हम सब हंसते हंसाते तय करने वाले हैं। आज कॉमेडी किंग महमूद जी की याद का दिन है, उनको मेरा शत शत नमन। हंसना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितनी कि श्वास लेना। हंसने से तनाव दूर होता है, पॉजिटिविटी आती है और मानसिक शांति एवं ऊर्जा का संचार होता है। यदि हम किसी रोते हुए को हंसा देते हैं तो दिल को बेहद सुकून और खुशी मिलती है। हंसते गाते कट जाए ये दिन। और एक साथी लिख रहे हैं कि हास्य अभिनेता महमूद जितने बेहतरीन कॉमेडियन थे उतने ही गहरे भावुक अभिनेता थे। फिल्म कुंवारा बाप में एक दिव्यांग बच्चे के गरीब पिता के रूप में उनके मार्मिक अभिनय ने हर दर्शक की आंखें नम कर दी थी। महमूद सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक संपूर्ण कलाकार थे। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है तो दिल की और हंसने हंसाने की बात ही होनी चाहिए। कुछ दिनों पहले धर्म पत्नी पास बैठकर बोली कि सगाई के बाद और शादी के शुरू के दिनों में आप दिल से मेरी कितनी तारीफ करते थे। मैंने कहा कि वो तो अभी भी मैं करता हूँ। फिर धर्म पत्नी ने कहा कि पहले ज़्यादा तारीफ करते थे, तो मैंने कहा देखो जब हम नया मोबाइल लाते हैं शुरू करते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है। चलिए आज हंसने हंसाने की बातें भी हैं और दिल की सेहत की बातें भी है। तो आज हम आपसे विश्व हृदय दिवस पर ये पूछना चाहते हैं कि आजकल लोगों के हृदय की जो सेहत है वो गिरती चली जा रही है, तो आपको क्या कारण नजर आते हैं और किस तरह से हृदय की सेहत को हम पहले की तरह अब भी ठीक रख सकते हैं, इस बारे में अगर आपको कोई जानकारी है तो आप हमें बताइए। और चलिए अगला गाना आपको सुनवाते हैं, जौहर महमूद इन गोवा। इस फिल्म का ये गाना है, मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि मैं अपनी योग क्लास में रोज हास्यासन करवाती हूँ, पहले नकली हंसी लेकिन बाद में वो असली हंसी में परिवर्तित हो जाती है। दिल को दुरुस्त रखने वाले आसन भी हम लोग डेली करते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। और आज सुरीला सफ़र की प्रस्तुति जो है उसमें इस तरह के गीतों की इन्होंने बात की है। और लिखा है कि आज सुबह में 8 बजे जो उठा हूँ दिन के, तो उसके बाद में अब हंस सका हूँ, अच्छा लग रहा है। अध्यापक को भी वर्ग में थोड़ा बहुत बच्चों के साथ हास्य और विनोद करना चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि सच खाली में ही तो समूचा विश्व ही अवस्थित है, और ये खालीपन तो सभी के हृदय में पाया ही जाता है। सोचिए अगर ये खालीपन नहीं रहता तो फिर हम कहाँ रहते। जी, आपकी ये बात है। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि हंसना सेहत के लिए और ख़ास करके हृदय के लिए बहुत लाभदायक है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्सर हंसते रहते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल हंसते नहीं। उनको पूछना पड़ता है कि तेरी हंसी की कीमत क्या है बता दे तू। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जहाँ तक मुझे जानकारी है, महमूद जी अपना मेहनताना मुख्य अभिनेता से केवल 1 रुपये कम लेते थे। उनका किसी भी फिल्म में किरदार जो भी रहे, पूरी फिल्म की जान रहते थे और फिल्म में कॉमेडी तो को उन्होंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का काम भी किया है। जी हाँ, धन्यवाद आपको। चलिए अब सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। महमूद और साथियों की आवाज़ें हैं और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना है। संगीत किसका है अगर आपको पता है तो हमें बताइए।

दिया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया। The whole thing is that के भैया सबसे

आया ये हॉकी फ्रॉम वेयर दिस इंग्लिश मैन, आज कहां का नेशन काहे की धरती मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे

सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत बासु मनोहारी का। अब आपको तय करना है कि सबसे बड़ा क्या है आपके जीवन में, रुपया, पैसा, सेहत, हंसी या खुशी, या अपने सगे संबंधी। चलिए, महमूद विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज हमारे खान पान में शुद्धता की कमी है और लोग अक्सर खाद्य पदार्थों के पैकेट पर दी गई जरूरी जानकारी को अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि कुकिंग ऑयल के बारे में, जिससे दिल के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आजकल के रहन सहन का तरीका बहुत तनावपूर्ण रहता है, खान पान भी ठीक नहीं होता है, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, मनोरंजन में कमी मिलकर तनावपूर्ण जीवन बनाते हैं, फिर दिल के डायबिटीज आदि रोग भी हो जाते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ मानव प्राणी ही ऐसा है जो हंस सकता है, और पड़ोसन एक चतुर नारी है जो हमें हंसाती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हमारे शरीर में जो कोई सबसे ज्यादा प्रामाणिक अवयव है वो हृदय है, जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी हमारी रक्षा करता है। विमान में 4 इंजन लगाए जाते हैं, लेकिन भगवान ने हृदय में 6 गुना ज्यादा ताकतवर बनाया है। एक साथी लिख रही है कि हंसिए और दिल को तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। लोग भूल गए हैं कि दिल को वेंटिलेटर की नहीं, सिर्फ थोड़ी सी खुली हंसी की जरूरत है। हंसने से फेफड़े तो फूलते ही हैं, साथ ही दिल को भी लगता है कि आप अभी जिंदा दिल हैं। इसलिए पार्क में जाकर कृत्रिम रूप से हा हा हा करने वाले लाफ्टर क्लब की जरूरत पड़े उससे पहले ही घर में बीवी के चुटकुलों पर या खुद के हालातों पर हंस लीजिए। जी हाँ, हंस लीजिए। हम आज अभिनेता महमूद को याद कर रहे हैं, उनके द्वारा जो एक हास्य कलाकार के रूप में उन्हें ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन उन्होंने और भी मतलब अभिनय के क्षेत्र में जो है उन्होंने अपना एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि दूसरी तरह की जो भूमिका है उन्हें भी उन्होंने बहुत संजीदगी से पूरा किया है या निभाया है। चलिए, शबनम फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, जावेद अनवर के बोल हैं, संगीत है उषा खन्ना का।

0: ಆಶಿಕನ್ ತಾವಾಶಿಕನ್ ತಾವಾಶಿಕನ್.
1: बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि सबसे बड़ा धन तो अपना स्वास्थ्य होता है. हेल्थ इज़ वेल्थ. सेहत अच्छा है तो आप धन कमा सकते हैं, पर धन से आप सेहत नहीं खरीद सकते. ये बात हमारे एक साथी ने लिखी है जो हमने आपको पढ़ के सुनाए. एक साथी लिख रहे हैं कि आज सुबह सुबह गैस सिलेंडर खत्म हो गया. जब मैं सिलेंडर बदलने के लिए नया सिलेंडर लेने लगी तो पतिदेव ने पूछा कि क्या गैस खत्म हो गया है, तो मैंने कहा नहीं, इस वाले सिलेंडर को घुमाने ले जा रही हूँ. फिर दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े और दिन बन गए. एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अनिद्रा सबसे बड़ा कारण है दिल के लिए. जब भी रात को नींद ना आए तो लंबी लंबी सांस ले और श्वासासन में थोड़ी देर लेटे और मोबाइल से तो दूरी ही बना ले तो आपको लाभ अवश्य होगा. एक साथी लिख रहे हैं कि आज जो आपने टॉपिक लिया है बड़ा अच्छा है. हंसना, मुस्कुराना और अपने दिल का ख्याल रखना, ये जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत हो गई है. सबसे बड़ा रुपया. इस गाने पर मुझे याद आ गया कि कॉलेज के एनुअल फंक्शन में हम लोगों ने, चार पांच लड़कियों ने मिलकर इस गाने पर डांस किया था. वो फोटो आज भी देखती हूं तो अपने आप चेहरे पर हंसी आ जाती है. और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अब हृदय को पहले की तरह स्वस्थ नहीं रख सकते. हृदय क्योंकि हृदय ही क्यों बल्कि पूरे शरीर को ही नहीं रख सकते, क्योंकि अब वो चूल्हे की रोटी नहीं खा सकते. अब तो गैस आ गई है जिससे पेट में गैस बनना शुरू हो गई और पहले की तरह फिट रहना एक सपना है. यदि व्यक्ति गैस की पकी रोटियां खाना बंद कर दे तो स्वास्थ्य पुनः लौट आएगा, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है क्योंकि आजकल कोई कुछ करना नहीं चाहता है. एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल की दुनिया में हंसी और चाहत का अपना ही रंग है. किसी की मुस्कुराहट दिल को सुकून देती है, किसी की सादगी मन को छू जाती है और किसी का माकपन दिल पर तीर सा असर कर जाता है. अपनों के साथ हंसी के ठहाके जीवन में खुशियों के रंग भर देते हैं. कभी अटपटे चटपटे पल भी चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं. चलिए धन्यवाद आपका. इसी के साथ एक सवाल और मैं आपके हवाले करती हूँ कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बात बात पर बहुत हंसता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी मुस्कुराता नहीं है. चाहे कितनी ही हंसी की बात हो, वो न कभी हंसते हैं न मुस्कुराते हैं. तो ऐसे लोगों को जब आप देखते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में, बताइएगा. चलिए अगला गाना गुमनाम फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और महमूद की आवाज़ें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, महमूद और हेलन पर फिल्माया गया ये गाना.

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं?
1: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं तो

0: पाका नारंगी की पाका पाता चिमटा रंगी चाला जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी है क्या
1: गुमनाम फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि जो बिल्कुल हंसते नहीं, ऐसे लोग तो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हमारे परिवार में हम सब हंसते हंसाते रहते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि परिवार में है तो मैं रिश्ते की बात नहीं करूंगी, शायद रेडियो पर सुन ले तो संबंध खराब हो जाएगा, पर 40-42 सालों से मैंने कभी उन्हें ठहाके लगाकर हंसते हुए नहीं सुना। अगर वो कभी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो सोचती हूं कि आज निश्चित कुछ अजीब होने वाला है। परिवार के लोग उनके इस एटीट्यूड से वाकिफ है और पीछे से जो है उनके बारे में ये बात भी होती है, तो आज कुछ अच्छी बात हो तो 1-1.5 इंच वो मुस्कराएंगे जरूर। एक साथी ये लिख रहे हैं कि अक्सर बहुत से कॉमेडियन की असली जीवन जो है वो बहुत तनावपूर्ण रहता है, दूसरों को हंसाकर खुद अंदर से वो दुखी होते हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गुजराती मुहावरा है कि हंसे तेनू घर वसे, मतलब जो सदा हंसता मुस्कुराता रहता है उसका घर आसानी से बस जाता है। वैसे अच्छी तंदुरुस्ती यानी सेहत के लिए हंसना मुस्कुराना बहुत जरूरी है, भले ही वो अपने मित्र सगे संबंधी हो या कोई और हो। एक साथी ने ये बात लिखी कि महमूद अपने पूरे शरीर से अभिनय करते थे। एक समय ऐसा था कि वे पर्दे पर आते और हंसी का जो दौर दर्शकों के मन में चलता वो ख़त्म ही न होता। एक ज़माना तो ऐसा था महमूद अकेले अपने दम पर पर्दे तक दर्शकों को खींच कर ले आते थे। वैसे तो फिल्मी दुनिया के पिटारे में अनेक हास्य कलाकार आए और गए, मगर महमूद एक रत्न थे। वे उस अनमोल मोती की तरह थे जो हर फिल्म निर्माता अपनी अंगुली में पहनना चाहता था। ऐसे रत्न सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए आरती फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। एक बार फिर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बात बात पर ठहाके लगाकर हंसते हैं और माहौल खुशनुमा हो जाता है? कोई ऐसे व्यक्ति जो चाहे कितनी भी हंसी की बात हो बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराते? चलिए गीत सुनिए।

गीत सुनते सुनते और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स है ये पढ़ते पढ़ते गीत कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, और बहुत सारे कमेंट्स हमारे सामने हमें नजर आ रहे हैं। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि बिहार में कहते हैं कि हंसे तो फंसे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हंसिए मत। किसी की नाकामियों पर, शारीरिक दुर्बलता पर मजाक उड़ाते हुए मत हंसी, ऐसी हंसी किस काम की। जी हाँ, किसी के ऊपर हंसने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी की कमियों पर हंसे, हंसे हंसने वाली बातों पर हंसे, या अपनी ही किसी गलती पर हंसे, या कोई मूर्खतापूर्ण कार्य जब आप हम स्वयं कर लेते हैं तो हमें अपने आप पर हंसी आ जाती, हम उस हंसी की बात कर रहे हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने का हंसने के अलावा एक और बहुत ही दिल के लिए लाभदायक बात है, वो है अपने हृदय में कोई भी बात दबाना नहीं चाहिए, कह डालना चाहिए, हृदय हल्का भी होगा और स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। साथ में विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम का आनंद भी हम ले सकते हैं। और एक साथी की ये बात है कि खुशी से खिला हुआ चेहरा सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि दिल, दिमाग और शरीर का हर अंग खिल जाता है। पता नहीं हम हंसने में भी कंजूसी क्यों कर देते हैं, पहले हम खुद मुस्कुराएं तभी तो हम दूसरों के होठों पर मुस्कान ला पाएंगे। एक साथी ये लिख रहे हैं कि एक वाक्य याद आ गया जो विविध भारती पर किसी प्रोग्राम में सुना था कि महमूद साहब के घर पर कोई पार्टी हो रही थी जिसमें जूनियर महमूद साहब को नहीं बुलाया, उन्हें पार्टी में जूनियर महमूद साहब बिना बुलाए पहुंच गए, वैसी ही टी शर्ट और ड्रेस पहनकर जैसी महमूद साहब ने पहन रखी थी। इस गीत में हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले, इस गीत में जो पहन रखी और ये गीत गाने लगे, बस फिर क्या था, महमूद साहब ने जूनियर महमूद को अपने गले से लगा लिया। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि हंसना केवल होठों का व्यापार नहीं, आत्मा की औषधि है। जो व्यक्ति हंसना जानता है वो दुखों में भी रास्ता निकाल लेता है, और जो हंसाना जानता है वो दूसरों के जीवन में दिया जला देता है। तनाव, बीमारी, अकेलेपन से भरी इस भागदौड़ भरे जीवन में एक सच्ची हंसी दिल हल्का कर देती है और रिश्तों में जमी धूल को साफ कर देती है। हंसने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता और हंसाने वाला व्यक्ति कभी भुलाया नहीं जाता। इसलिए हंसिए ताकि आपका मन स्वस्थ रहे, और हंसाइए ताकि आपका होना दूसरों के लिए उत्सव बन जाए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बचपन में जब छोटे थे तो कक्षा 8वीं में था तो मेरे क्लास टीचर बहुत ही अच्छे थे, उनके चेहरे पर हमेशा हंसी ही दिखाई देती थी, चाहे वो हमें मारते भी थे लेकिन उस मार के पीछे भी एक हंसी छुपी रहती थी। और हमारे प्राचार्य थे, उनको कभी भी हमने हंसते हुए नहीं देखा था। तो ये बातें हमारे साथियों की है, और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब एक ऐसा गीत हम सुनने जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, जितनी भी बार ये गीत सुनो चेहरे पर हंसी आए बिना नहीं रहती। सुनिए ये गाना।

Tadam,

0: ಚತುರ ನಾರ ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡ ಕರಕ ಗದೆ
1: ಮೇದೆ ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಏ ಭೂತ ಜಾತ.

पड़ोसन फिल्म का ये गाना अभी हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि हृदय प्रसन्न कर दिया आपने चतुरनार, ये गाना सुनवा के जो कि पड़ोसन फिल्म से हमने सुना। और एक साथी लिख रहे हैं कि मैं तो हंसता हूँ अपने हालातों पर, क्योंकि लोग कहते हैं कि हंसने वाले लोग ज़्यादा जिंदा रहते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है, एक पड़ोसी थे जो किसी को हंसते हंसाते या बच्चों को खेलते हुए देख करके बहुत भड़क जाते थे। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि मेरे जो पति हैं बहुत कम ठहाका लगाकर हंसते हैं, बहुत सीरियस वो रहते हैं। और एक ये भी लिखा है साथी ने कि पड़ोस में बहुत पहले एक परिवार आया था, उसमें उनकी जो श्रीमती जी बहुत हंसमुख थी और जब भी मिलती थी तो ऐसा लगता था कि वो अभी हंस देंगी या जो है एक स्माइल एक दे देंगी, इस तरह की बात इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हंसना हंसाना एक कला है, किसी किसी को ये इसमें महारत हासिल होती है। कई कलाकार हैं जो दूसरों को आसानी से हंसा देते हैं, महमूद जी भी उनमें से एक हैं जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं। हंसना सेहत के लिए ज़रूरी है, जिसमें शरीर में उत्पन्न तनाव को वो दूर करता है, आंतरिक खुशी मिलती है। और कुछ गानों का जिक्र उन्होंने किया है। चलिए अगला गाना बेटी बेटे इस फिल्म से।

0: एक साथी की ये बात है कि हृदय के स्पंदन को हृदयंगम कर हृदय हेतु हंसिए और हंसाइए। हृदय की अदला बदली सिर्फ प्रेम और साहित्य में होती है, भौतिकी नहीं। विश्व हृदय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिल आपके पास ही रहेगा, कोई और नहीं ले सकता, अतः उसकी सुरक्षा संरक्षण आपके ही हाथों में है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अपने दिल का ख्याल रखना, अपने दिलों को जोड़ना, इसका ध्यान रखिए। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, कुमारा बाप इस फिल्म का गाना।
1: Hurry! Yeah.

हंसते हंसाते रहिए और अपने हृदय के अपने दिल के सेहत का ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार। एक खूबसूरत सा शब्द है हृदय। छोटा सा शब्द है लेकिन इसमें हमारी पूरी जिंदगी की कहानी छिपी है। दिल खुश होता है तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, दिल उदास होता है तो आंखें नम हो जाती हैं। किसी अपने की एक छोटी सी बात भी दिल को छू जाती है। लेकिन यह दिल केवल भावनाओं का केंद्र नहीं है। हमारे शरीर में मौजूद हृदय हर पल हर क्षण हमारे लिए काम करता है। हम जाग रहे हों या सो रहे हों, खुश हों या परेशान, दिल अपनी धड़कनों के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाता रहता है। इसी अनमोल दिल की सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो आज बातें उसी दिल की, जो कभी किसी की खूबसूरती देखता है, कभी किसी के प्यार में धड़कता है और कभी किसी की याद में टूट जाता है। और जब बात दिल की हो तो चेहरे से ज्यादा दिल को देखना ही शायद सबसे जरूरी है।
1: दिल को

0: चेहरा झूठा।
1: चेहरा तो वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन दिल की अच्छाई लंबे समय तक याद रहती है। कुछ ऐसा ही हमारे स्वास्थ्य के साथ भी है। हम बाहर से अपने आप को स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त देखते हैं, लेकिन अंदर हमारा दिल किस हालत में है, इसका पता लगाना भी उतना ही जरूरी है। आज की जीवन शैली में हर काम की भागदौड़ में अपने खाने पीने, नींद, व्यायाम और मानसिक सुकून को अक्सर पीछे छोड़ देते हैं। तनाव को सामान्य मान लेते हैं और शरीर के संकेतों को टालते रहते हैं। दिल की देखभाल के लिए बहुत बड़े बदलाव हमेशा जरूरी नहीं होते। रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी शारीरिक सक्रियता, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, तनाव को कम करने की कोशिश और अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात, दिल का रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी है। कभी कभी हम मन में इतनी सारी बातें दबा लेते हैं, जैसे दिल के अंदर भी एक गिरह पड़ जाती है। किसी से बात कर लेना, अपने मन की बात कह देना, थोड़ा गुनगुना लेना, मुस्कुरा लेना, मन शायद ऐसी ही कितनी गिरहें खोल देता है।

कितनी खूबसूरत बात है, दिल की गिरह खोलने के लिए एक गीत भी काफी हो सकता है। संगीत हमारे मन के बहुत करीब होता है, कभी खुशी में साथ देता है, कभी अकेलेपन में साथी बन जाता है, और कभी हमारे उन एहसासों को आवाज देता है जिन्हें हम शब्दों में नहीं कह पाते। और दिल की बात हो तो रिश्तों का जिक्र भी होना ही है, क्योंकि किसी का प्यार दिल को सुकून देता है तो किसी की बेरुखी वही दिल तोड़ भी देती है। दिल टूटने का दर्द शायद हर इंसान ने कभी न कभी महसूस किया होगा, लेकिन जिंदगी की खूबसूरती यही है कि दिल टूटने के बाद भी धड़कता रहता है और हमें फिर से जीना सिखाता है। इसलिए अपने दिल को सिर्फ दुखों की यादों में मत भरिए। जिस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी चीजें चुनते हैं, उसी तरह मन के लिए भी प्यार, दोस्ती, हंसी और सकारात्मकता चुनिए। और अगर कभी कोई दिल तोड़ भी दे तो उस टूटे हुए दिल को हमें संभालना भी सीखना होगा, क्योंकि जिंदगी किसी एक रिश्ते या दुख पर नहीं रुकती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है, देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीकी से विचार विमर्श की जरूरत है। डॉ जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमरीकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमरीका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक

0: विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सराय कालेखां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर तथा लोनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1,900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
1: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
2: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी, हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है, खोजो। तो ये रातों रात नहीं है, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश किए सब। तो मुझे मालूम था कि गौरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, उनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
1: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
3: इस अमेंडमेंट एक्ट में

0: प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी सूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रूपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
2: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरद्वाज के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी न्यूज गुवाहाटी।
0: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
3: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है, देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना आंचल फिल्म से है। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें, प्रदीप का लिखा हुआ गाना, श्री रामचंद्र का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना है अनार बाला, इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर और सुबीर सेन की आवाजें, आरसी पंड्या का लिखा हुआ गाना, बुलो सिरानी का संगीत।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अब सुनते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। इस फिल्म का गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में, कैफी आजमी के बोल हैं, संगीत है एसडी बर्मन का।

आइए अब सुनते हैं अनुराधा फिल्म का गाना, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है, शैलेंद्र ने लिखा है और रविशंकर का संगीत है।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। और अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, इकबाल कुरैशी का संगीतबद्ध किया ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम बिंदिया।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में अब आपको सुनवा रहे हैं कमर जलाल आबादी का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम छलिया।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में छलिया फिल्म का ये गाना आपने सुना। और अब सदाबहार नगरी में कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बम्बई का बाबू। इस फिल्म का गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने गाया है, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन बनाई है SD बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सखी सहेली कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंजू द्विवेदी
2: और मंजरी वर्मा का
1: नमस्कार।
2: बहुत दिनों बाद सखी सहेली के मंच पर आपके साथ वक्त मिला है कुछ बातें करने का, कुछ विषयों पर चर्चा करने का। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि समय कितना गुजर जाता है जब हमारा मिलना वैसे तो होता है, लेकिन हाँ इस मंच की देखिए अलग ही बात होती है ना। तो हमारे साथी भी इंतजार कर रहे होंगे कि आज तो भाई मंजू जी भी हैं और मंजरी भी और ये लोग क्या दिल की बातें करते हैं ना।
1: बिल्कुल। और देखिए दिल की बातों की आपने बात की, तो जब भी मिलते जुलते हैं तो दिल की बातें करते हैं और कर ही लेना चाहिए।
2: बिल्कुल।
1: कहते हैं कि दिल की बातें कर लेने से मन जो है हल्का हो जाता है और हमें थोड़ा सुकून भी मिलता है कि हमारी सखी ने, हमारे साथी ने, हमारे दोस्त ने, हमारे मित्र ने हमारे दिल की बात सुन ली। हो सकता है वो कोई उस चीज का कोई सोल्यूशन दे सके, कोई उसका निर्णय निकल सके।
2: बिल्कुल।
1: और एक मन को तो सुकून मिलता ही है, साथ ही साथ हृदय की जो या दिल की जो सेहत है वो भी दुरुस्त रहती है।
2: बिल्कुल दुरुस्त रहती है और बातों का कोई राय का पहाड़ भी नहीं बना पाता है।
1: सही बात है। और आज के विषयों की बात कर ले हम सबसे पहले।
2: हमने तो बातों में आपने दिल की बात करी, उसमें अभी विषय आपने निकाल दिया, तो मैंने कहा भाई मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे दिल से तो कोई राय का पहाड़ भी नहीं बना पाएगा।
1: तो तुमने भी विषय की बात
2: कर दी मुहावरों की दुनिया में, है ना।
1: बिल्कुल। तो आज का हमारे जो विषयों में सबसे पहला विषय होगा स्वस्थ दिल लंबा जीवन। चूंकि आज विश्व हृदय दिवस है तो हम दिल की या हृदय की बात करेंगे। और इसके अलावा सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करेंगे महिला उद्यमी अदिति बलबीर की।
2: जी। और इसके साथ हल्की फुल्की बातें में होगा कि अन्न का दाना व्यर्थ ना जाने दे। यानी ये जो सारी चीजें है ना आज की, दिल की बात है, फिर अन्न की बात है और राई के पहाड़ बनाने की बात है, तो ये सब चीजें एक दूसरे से मिली हुई है। क्योंकि दिल से हम अगर खाना खाएंगे, अन्न खाएंगे तो हम पूरा ठीक से खाएंगे, और दिल से नहीं खाएंगे तो हम थोड़ा थाली में छोड़ देंगे, है ना।
1: बिल्कुल
2: जी। तो इस तरह की बात
1: है, अन्न को व्यर्थ ना होने दे, जितना जरूरत हो उतना ही बनाए, और अगर बच जाए और किसी तरह आप अगले दिन उसका उपयोग कर सके तो अच्छी बात है। या जैसे किसी समारोह में अगर बच जाता है तो आपको किस तरह से दूसरों को वो दे देना चाहिए ताकि उसका उपयोग हो सके, इस के अंतर्गत हम यही बातें जो है करने वाले हैं। इसके अलावा मुहावरों की दुनिया में जैसा तुमने बता ही दिया है कि राई का पहाड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना करके बता देना, जितनी बड़ी वो है भी नहीं बात।
2: बिल्कुल। तो, और मंजू जी, राई को अगर हम चाहें भी कि एक पहाड़ की जैसे खड़े करने की सोचे, कल्पना भी करें तो राई
1: नहीं
2: रुकेगी, नहीं वो भरभरा के गिरी जाएगी।
1: तो इसी तरह से जब छोटी सी बात को कोई बहुत बड़ा बना देता है तो जैसे राई भरभरा के गिर जाती है, उसी तरह वो बातें भी कभी न कभी सामने आकर के गिर जाती है।
2: बिल्कुल सही।
1: तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। तो स्वस्थ दिल लंबा जीवन, दिल की बातें हम करते हैं तो दिल हमारे शरीर का इंजन है, और जब इंजन सही चलेगा तभी जिंदगी की गाड़ी लंबी और सुहानी चलेगी। तो प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे हम मनाते हैं ताकि हम सब इसकी अपनी इस धड़कन की कद्र करना सीखें।
2: बिल्कुल। और आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, खराब खान पान और लगातार बढ़ते तनाव का जो सबसे बड़ा असर होता है वो हमारे दिल पर ही पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह होती है मंजू जी कि अपने दिल को मजबूत और सेहतमंद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। रोजमर्रा की जीवन शैली में थोड़े से बदलाव करके हम बीमारियों से भी बच सकते हैं और अपने दिल को भी संभाल सकते हैं।
1: बिल्कुल। और दिल को सेहतमंद रखने के कई सारे ऐसे तरीके हैं जो आसान भी हैं और कारगर भी है। इस बारे में हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें हमें लिख करके भेजी है, तो उन आसान तरीकों के बारे में हम बताएंगे और श्रोताओं के कमेंट्स की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल को सही रखने का एक और तरीका है, संगीत कितना दिल को है ना खुशी से भर देता है, मन को खुशी से भर देता है, उससे भी तो हमारी सेहत अच्छी होती है।
2: बिल्कुल, आपका इशारा हम समझ गए।
1: चलिए सुनते गाना।

0: मंजरी ये गाना हमने सुना, दिल मेरा बस में नहीं, लेकिन दिल को बस में रखना पड़ता है,
1: बिल्कुल रखना
0: कई बार
1: है।
0: हालांकि हालात बड़े मुश्किल हो जाते हैं, नहीं रख पाते हैं, लेकिन दिल को बस में रखना या वश में रखना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल, वो भी एक कला है मंजू जी।
0: हाँ,
1: कि हम अपने हर परिस्थिति में, चाहे वो खुशी के दिन हो, चाहे गम के दिन हो, दुखी वाले दिन हो, हर समय हमें अपने दिल को बहुत मजबूती से रखना पड़ता है, कि तभी हम सामने जो भी हमारी समस्याएं होती, चाहे खुशियों के दिन, उनका सामना हम कर पाते हैं। और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश लिखकर भेजे हैं।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल केवल हमारे शरीर का एक अंग नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है। स्वस्थ दिल हो तो जीवन में ऊर्जा, उत्साह और खुशियों की रौनक बनी रहती है। इसलिए अपने दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अतः संतुलित भोजन, नियमित हल्की फुल्की कसरत, पर्याप्त नींद और तनाव को कम करना, ये छोटी छोटी आदतें दिल को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन दिल की सेहत के साथ मन की सेहत भी उतनी ही जरूरी है। खुलकर हंसिए, अपनों के साथ समय बिताइए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए और मन में प्यार व सकारात्मकता बनाए रखिए, क्योंकि जब दिल स्वस्थ रहता है तो जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं होती बल्कि वो अधिक सुंदर और खुशहाल बनती है। कितनी प्यारी बातें और सटीक बातें इन्होंने लिखी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और एक हमारे साथी ने छोटी सी बात लिखी है कि दोस्तों के साथ दिल खोलकर हंसिए, ऑपरेशन थिएटर में दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: बहुत सही बात लिखी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो यही हमने कहा था ना कि जब हम सखियां मिलती है तो दिल की बात करती है, तो बस ऐसे ही अपने दोस्तों मित्रों से
1: गागर में सागर भरने वाली बात है ना। और एक साथी और लिखते हैं कि कोई माने या ना माने, पहले कभी हृदय को बीमार होते हुए सुना था, कभी ब्लड प्रेशर की कोई बात सुनी थी, कभी शुगर की कोई बीमारी सुनी थी, कभी किडनी की कोई इतनी बीमारी सुनी थी। इसकी सच्चाई सिर्फ इतनी है, हजारों सवालों का एक जवाब, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए मौसम का अनियंत्रित वातावरण हो रहा है। ईश्वर ने तो हमें, ये प्रकृति ने तो हमें 4 महीने का हर मौसम दिया था, मगर हमने अपनी स्वार्थ और कायरता से उस मौसम को बिल्कुल बदल दिया। ना गर्मी आएगी तो 7-8 महीने गर्मी पड़ेगी, ठंड जाए 4 महीने पड़नी थी, वहां 4-5 दिन में चली जाती। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि इतनी सारी पॉपुलेशन हो गई है कि समस्याएं होती जा रही है इंसान की जिंदगी में, चाहे वो भागा दौड़ी की हो, कि कमाने धमाने की चिंता है या घर परिवार को पालने की चिंता है, तो और मौसम का भी उस पर असर पड़ता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें अब जल्दी ज्यादा सुनाई देने पड़ गई, तनाव की वजह से हो जाता है लोगों को, तो इस तरह की बीमारियां सुनाई देने लग गई हैं।
0: हाँ, इन्होंने ये लिखा कि पहले के जमाने में इन बीमारियों के बारे में हमने सुना ही नहीं था, लेकिन अब ये बहुत आम हो चुकी है। हाँ, ये तो सही बात है कि मौसम का बहुत असर हुआ है, हमारे खान पान का असर हुआ है, हमारी दिनचर्या का भी बहुत असर हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग तो बहुत देर तक सोते नहीं है और सुबह बहुत देर तक सोते रहते हैं, जल्दी उठते नहीं है, और खान पान का असर तो हुआ ही है। जंक फूड खाते हैं हम, मसालेदार और तेज मिर्च वाले, और इसके अलावा तेल बहुत होता है उनमें, बहुत सारा बटर चीज वगैरह डाल करके इस तरह की चीजें जब हम खाते हैं तो इसका दिल पर असर तो होता ही है।
1: बिल्कुल।
0: तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है ताकि हमारा दिल जो है वो स्वस्थ रहे। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि स्वस्थ दिल और लंबा जीवन पाने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाना सबसे जरूरी है। स्वस्थ दिल और दीर्घायु के लिए मुख्य उपाय जो है वो भी इन्होंने लिखे हैं कि नियमित व्यायाम करें, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता से व्यायाम करें, और उन व्यायाम में आप जो है तेज चलना, साइकिल चलाना या तैरना ये आप कर सकते हैं। संतुलित आहार, अपने खाने में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और नट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, ये शामिल कर सकते हैं। तनाव प्रबंधन कर सकते हैं, योग, ध्यान और मेडिटेशन से आप जो है तनाव को दूर कर सकते हैं, और धूम्रपान और शराब से दूरी बना सकते हैं। इसके अलावा पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है, रोज 7 से 9 घंटे की नींद लें, नियमित जांच कराएं, जैसे अगर रक्तचाप जैसी कोई बीमारी है या शुगर है या नहीं है, उसके कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं तो भी आप जो है जांच करवा सकते हैं, और इस तरह से जो है आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हंसिए और दिल को तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। लोग भूल गए हैं कि दिल को वेंटिलेटर की नहीं बल्कि सिर्फ थोड़ी सी खुली हंसी की जरूरत है। हंसने से फेफड़े तो फूलते ही हैं, साथ ही दिल को भी लगता है कि आप अभी जिंदा दिल हैं। इसीलिए पार्क में जाकर कृत्रिम रूप से हा हा हा करने वाले लॉफ्टर क्लब की जरूरत पड़े, और उससे पहले ही घर में बीवी के चुटकुलों पर या खुद के हालातों पर हंस लिया कीजिए, यानी कि अपने आसपास हंसी खुशी का माहौल रखेंगे तो ये समस्याएं आएंगी ही नहीं और आपका दिल और आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे।
0: बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम की सेहत के लिए भी कुछ बातें बहुत जरूरी हो जाती है मंजरी, और इसमें एक बात है कि हमको समय समय पर छोटा सा एक ब्रेक लेना होता है। तो कार्यक्रम में इस वक्त समय हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है, देखिए हम फिर से हाजिर हैं और हम दिल की बातें कर रहे थे, तो एक साथी ने बहुत दिल से ये बात लिखी कि दिल एक ऐसा इंजन है जो बिना किसी ब्रेक के जिंदगी भर लगातार चलता रहता है। हमने अभी कार्यक्रम में ब्रेक लिया लेकिन दिल की बात जब आती है तो वहां ब्रेक का कोई काम ही नहीं होता है। जब तक ये धड़कता है तब तक सांसें चलती है और जीवन मुस्कुराता है। इसलिए कहा भी जाता है रखेंगे जब दिल का ख्याल तभी जीवन बनेगा खुशहाल। एक मजबूत और सेहतमंद दिल सिर्फ हमें बीमारियों से बचाता नहीं है बल्कि हमारी उम्र को भी बढ़ाता है। दिल स्वस्थ होगा तभी जीवन का हर पल लंबा, ऊर्जावान और खुशनुमा बना रहेगा।
1: क्या बात है। और एक साथी लिखते हैं कि आजकल के व्यस्त रहन सहन के तौर तरीकों के कारण, खान पान, नींद में कमी के कारण बहुत से असाध्य रोग पैदा हो जाते हैं जिनमें डायबिटीज और हृदय रोग मुख्य हैं। इसके साथ ही एक साथी और लिखते हैं कि विश्व हृदय दिवस की सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। सालों साल तक दिल स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए मुख्य रूप से ताजा, संतुलित और पौधों पर आधारित आहार लेना चाहिए। दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों के खान पान और के सुझावों के अनुसार उनकी थाली में हर चीजों को शामिल करना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। आप सादा भोजन करें और खूब सारा पानी पिए और हरी सब्जियां, फल वगैरह खाएं तो आप हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे।
0: कुल मिलाकर हम वर्षों से जो परंपरागत तौर तरीके जो हम अपना रहे हैं या खान पान जो अपना रहे हैं, बस उन्हीं को अगर हम अपनाते चलेंगे और समय से सोना, समय से उठना, थोड़ा व्यायाम करना, छोटी छोटी बातें, लेकिन इन बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो स्वस्थ रहा जा सकता है।
1: और हमारी मंजू जी बहुत ध्यान रखती हैं चीजों का।
0: देखिए रखना तो जरूरी है ही, क्योंकि हमें शरीर के साथ साथ अपनी आवाज का भी ख्याल रखना पड़ता है और सेहत दुरुस्त रहेगी तभी तो हम अपने काम को समय से आ पाएंगे और जा पाएंगे।
1: और आपको से ही तो हम लोग प्रेरणा लेते हैं देखा जाए तो।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार, नियमित रूप से व्यायाम और धूम्रपान जैसी आदतों से बचाव करना चाहिए। इसी तरह की बात हमारे एक साथी ने पहले भी लिखी है तो जो हमने आपको पढ़ के सुनाई है। एक साथी और लिख रहे हैं कि स्वस्थ दिल लंबा जीवन का आधार है, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लें और व्यायाम करें। और इसी तरह की और भी बातें हमारे साथियों ने लिखी है।
1: एक लिखते हैं कि मंजू जी कि मुस्कान और ठहाकों का सफर ही जिंदगी को खुशनुमा बनाता है, क्योंकि बिना हंसी के इंसान का दिल एक उदास और बंजर जमीन की तरह हो जाता है। किसी के चेहरे पर खुशी लाना एक जादुई हुनर है जो हर किसी के पास नहीं होता। जो लोग दिल के अमीर होते हैं वे दौलत और पैसों से नहीं बल्कि किसी मासूमियत, उसकी तिरछी चितवन और दिलकश अदाओं से ही अपना सब कुछ हार बैठते हैं। जब कोई अपनी ही धुन में मगन होकर अजीबोगरीब हरकतें करता है तो महफिल में अपने आप हंसी के फव्वारे फूट पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते जब ऑटो रिक्शा या ट्रकों के पीछे लिखे वो मजेदार और तीखे डायलॉग्स नजर आते हैं तो इंसान चाह कर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता है। बिल्कुल वो दृश्य उभर आया जब जाते हैं लंबे सफर पर।
0: एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि दिल दुरुस्त तो जिंदगी दुरुस्त, एक स्वस्थ हृदय लंबा और स्वस्थ जीवन बिताने में हमारा सहायक होता है। आप सभी को हृदय दिवस की शुभकामनाएं। और एक और साथी लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ और दुरुस्त रखने के लिए प्रतिदिन योग प्राणायाम अपने दिनचर्या में शामिल करें, संतुलित आहार लें, सकारात्मक सोच रखें। तो आप सभी का धन्यवाद और अब हम एक गीत सुनते हैं।

0: गीत हमने सुन लिया मंजरी, और अब हम बात करेंगे, एक हमारी सखी की बात करेंगे जिन्होंने क्या किया है और किस तरह से उन्होंने जो है दुनिया को राह दिखाई है उसके बारे में बात करेंगे, अदिति बलबीर की बात करेंगे। हम कुछ अपनी तरफ से बात बोले उससे पहले हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने उनके बारे में कुछ बात लिखी है, तो पहले वही पढ़ के हम सुना देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत एकदम सटीक बैठती है अदिति बलबीर पर, जो कि वी रिसोर्ट्स के सीईओ और फाउंडर है। उनकी गिनती आज भारत की सबसे सफल बिजनेस वुमेन में होती है।
1: बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखी है। और एक ने लिखा है कि बचपन से ही अदिति को घूमने का शौक था। अदिति इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद की एक पूर्व छात्र हैं। उन्हें बचपन से घूमने फिरने से प्यार था, जिसको उन्होंने अपने लिए करियर में बदल लिया, जिसके बाद उन्होंने वी रिसोर्ट की शुरुआत की। अदिति 2014 में वी रिसोर्ट की सीईओ बनी। 5 साल से कम समय के भीतर ही अदिति ने भारत के 21 राज्यों में 120 से ज्यादा रिसोर्ट के लिए कंपनी के विस्तार का नेतृत्व किया। ये रिसोर्ट ऑफ बीच यात्रा श्रेणी में अपनी तरह का पहला ब्रांडेड रिसोर्ट बन गया है। बहुत अच्छी सी जानकारी भेजी हमारे साथियों ने।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि हमने कहा कि अदिति बलबीर जो है वो भारत की एक प्रमुख महिला उद्यमी और वी रिसोर्ट्स की संस्थापक है, और उन्होंने भारत में ऑफ बीट और इको टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। अदिति बलबीर का जन्म नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने मुंबई के वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से फाइनेंस में पीजीडीएम यानी कि एमबीए की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद और ड्यूक यूनिवर्सिटी के फुकुआ स्कूल ऑफ बिजनेस से उच्च प्रबंधन शिक्षा प्राप्त की है।
1: अदिति ने अपने करियर की शुरुआत फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर से की। उन्होंने बेरिंग प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स और बेडरॉक वेंचर्स जैसी प्रमुख प्राइवेट इक्विटी और वेंचर्स कैपिटल फर्मों में काम किया। इस दौरान उन्होंने रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्रों में बड़े निवेश का प्रबंधन किया, जिससे उन्हें इस उद्योग की बारीकियों, बाजार की कमियों और अवसरों की गहरी समझ मिली।
0: बिल्कुल, और वी रिसोर्ट्स की जो नींव है वो कैसे पड़ी इस बारे में भी हम आपको बता दें। प्राइवेट इक्विटी के काम करते समय अदिति ने देखा कि भारत में कई खूबसूरत और ऑफबीट यानी कि कम लोकप्रिय या प्राकृतिक ऐसी जगहें हैं जहां छोटे बुटिक रिसोर्ट्स मौजूद हैं। हालांकि ये रिसोर्ट्स असंगठित थे, इनके पास न तो उचित ब्रांडिंग थी और न ही मार्केटिंग और पहुंच और न ही पेशेवर प्रबंधन। इसी अंतर को खत्म करने के लिए 2014 में उन्होंने वी रिसोर्ट्स की नींव रखी। उन्होंने एक ऐसा एसेट लाइट मॉडल तैयार किया जिसके तहत स्वतंत्र रिसोर्ट मालिकों के साथ साझेदारी करके उन रिसोर्ट्स का माननीकरण और प्रबंधन वी रिसोर्ट्स के बैनर तले किया जाने लगा।
1: बिल्कुल, और माइक्रो और ऑफ बीट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को शहर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच अद्वितीय और प्रामाणिक अनुभव प्रदान करना है, और मानकीकरण दूर दराज के इलाकों में

0: सहायता मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। और सतत पर्यटन, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय संस्कृति व व्यंजनों को पर्यटकों तक पहुंचाना, ये भी इस चीज का एक उद्देश्य रहा है। अब हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान की। तो पर्यटन और उद्यमिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अदिति बलबीर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें है फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस, ये अवार्ड उन्हें मिला है। दूसरा है द इकोनॉमिक टाइम्स, इनकी तरफ से वुमेन अहेड ट्रॉफी से इन्हें सम्मानित किया गया। और इसके अलावा CNBC TV18 यंग टर्क्स, इनकी तरफ से भारत की उभरती हुई दूरदर्शी उद्यमी के रूप में प्रदर्शित ये अवार्ड इन्हें दिया गया। डेल विमेंस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क की तरफ से वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली चुनिंदा महिला उद्यमियों में उन्हें शामिल किया गया। और वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप उत्कृष्ट महिला उद्यमी और हॉस्पिटेलिटी लीडरशिप अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया।
1: इतना सारे उन्हें पुरस्कार मिले, ये सब उनकी मेहनत का ही और सोच का नतीजा है, जो जब उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया कि हमें इस तरह की सुविधाएं देनी चाहिए, इन पर काम करना चाहिए, तो उनके काम की तारीफ हुई और ये जो चीजें उन्हें मिली हैं सम्मान पुरस्कार वो उसका ही एक परिणाम है। तो ऐसी सोच सबकी अगर हो, अपने ही आसपास के चीजों को हम अच्छा करने के लिए सोचे, तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम सभी।
0: बिल्कुल कर सकते हैं। होता क्या है ना कि हम बड़ी बड़ी चीजों की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ा काम है जिसका नाम है, हमें लगता है कि जब हम वहां काम करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी
1: जी।
0: या फिर वहीं जाकर के हम पैसा कमा सकते हैं या अच्छा जीवन तो एक वहीं पर बिताया जा सकता है। लेकिन अगर हम आसपास नजर डालें या जो पढ़ाई हमने की है, या फिर ऐसा भी होता है कि जिस क्षेत्र में हमारी रुचि है, अगर उन क्षेत्रों की तरफ हम ध्यान दें और हमारी पढ़ाई का उपयोग उन चीजों को बढ़ावा देने में अगर हम करें, तो हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। इसमें ये कोई शर्म की बात नहीं है या ये कोई कमतरता आंकने की भी बात नहीं है कि अगर हम यहाँ ये छोटा सा काम करेंगे तो अरे हमको कौन पूछेगा, या हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, या पैसा हम कैसे कमा पाएंगे, या घर कैसे चला पाएंगे। लेकिन अगर आप इन बातों की तरफ नजर डालें, और कई बार क्या होता है जिससे कई महिलाओं को या पुरुषों को जिनको भी बहुत किसी क्षेत्र में रुचि होती है, जैसे किसी महिला की बात करें, उसे कशीदाकारी बहुत पसंद है या उन्हें भोजन बनाना बहुत पसंद है,
1: किसी को अचार पापड़ इन सब का भी शौक होता है, तो भाई आप अपनी ही उस कला को आगे जाने दीजिए।
0: हाँ, तो ये बहुत सुनने में शायद हो सकता है या कहने में बहुत छोटी बात ये लगती हो, लेकिन अगर कोई महिला कोई व्यक्ति इस चीज को ठान ले कि नहीं मुझे इसी क्षेत्र में कुछ करना है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत है और थोड़ा सा उस क्षेत्र में कुछ काम करने की जरूरत है। जैसे हम अदिति की बात कर रहे थे, ऐसा अगर इन्होंने नहीं सोचा होता तो क्या ये काम ये कर पाती, इन्हें पुरस्कार मिल पाती या आगे बढ़ पाती? तो ऐसा हम सब सोच सकते हैं और सब कर सकते हैं। और अब हम ये सोच रहे हैं कि कार्यक्रम में एक ब्रेक ले लें।

love you.

0: तो मंजी, गीत हमने सुन लिया और अब कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मन बहुत जरूरी होती है कि जब हम अच्छी सारी हल्की फुल्की बातें करते हैं तो मन भी थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है। और लेकिन जब बात हो भाई अन्न के दाने की, तो अन्न का नाम सुनते मन प्रसन्न होता है, लेकिन जब उसकी कोई कद्र नहीं करता है तब मन दुखी होता है ना।
0: बातें हल्की फुल्की है लेकिन ये जो विषय है ये बड़ा भारी है।
1: बिल्कुल,
0: कि अन्न से हमारा वास्ता रोज पड़ता है, अन्न के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। कोई दिन ऐसा नहीं जब हम अन्न के बिना रहते हो, कुछ तो हम खाते ही हैं, पीते ही हैं। तो उसकी जो अहमियत है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार होता है। हमारे संस्कारों में भी अन्न को ईश्वर का रूप माना जाता है और हर साल 29 सितंबर को दुनिया भर में खाद्य हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ये मनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा जो मकसद होता है या उद्देश्य होता है वो ये याद दिलाना होता है कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ ना जाने दे।
1: बिल्कुल, और आज एक तरफ लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ खेतों से लेकर हमारी थालियों तक ढेरों खाना बर्बाद हो जाता है। जब खाना बर्बाद होता है तो सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि उसे उगाने में लगी उस व्यक्ति की मेहनत यानी किसान की मेहनत, पानी, ईंधन और जमीन जैसे अनमोल संसाधन भी बर्बाद होते हैं। क्योंकि दिन रात अपने खेत को सींच कर, बीज डालकर बोना, फसल को देखना पल पल बढ़ते हुए, फिर उसमें अन्न लगता हुआ, दाने लगते हुए देखना, उनकी जो कहते हैं बालियां लगती, गेहूं की बालियां लग रही है, तो देख के वो कितने हर्षित होते हैं। और जब या तो प्राकृतिक गड़बड़ी हो तो अलग बात है, लेकिन जब हमारे पास तक वो खाना आ रहा, अन्न आ रहा है और हम उसको कदर नहीं कर रहे हैं तो फिर मन खराब होता है कि नहीं, एक गेहूं के दाने से हम कितना अन्न उपजा सकते हैं।
0: बिल्कुल, किसान की मेहनत तो अपनी जगह है ही मंजरी, लेकिन उसके बाद हम भी तो उसे बाजार जाते हैं, खरीद कर लाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, घर में लाते हैं, उसके बाद उसे बनाने का जो एक प्रोसेस है बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है, उस तरीके से हम भोजन को पकाते हैं और उसके बाद जब हम खाते भी नहीं है उसे यूं ही फेंक देते हैं, तो ये एक मतलब मुझे लगता है कि सही बात नहीं है। हमारे साथियों ने ये बात लिखी है कि अन्न केवल हमारी भूख नहीं मिटाता बल्कि ये किसान की महीनों की मेहनत, पानी, मिट्टी की उर्वरता और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। जब हम अपनी थाली में भोजन छोड़ते हैं तो हम केवल एक निवाला नहीं फेंकते बल्कि उस तक पहुंचने में लगे अनगिनत संसाधनों और प्रयासों को व्यर्थ कर देते हैं।
1: बिल्कुल, और इसी तरह हमारे एक साथी और लिखते हैं कि व्रत लिखते कि हल्की फुल्की बात है, ना जाए व्यर्थ उनका एक भी दाना, अंक एक ही दाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे किसान इस अंक को, इस मतलब अन्न को उगाने में कितनी मदद करते हैं। इसलिए अपनी थाली में जितना लेना है, जितना आपको खाना है उतना ही आपको लेना चाहिए, जितना आप खा सकते हैं और उतना ही आप थालियों में डालें। अगर आप शादी या पार्टियों में जैसे जाते हैं देखते हैं वहां पर बहुत सारी चीजें आप ले लेते हैं या गिलास भी उसमें लेके थाली भर के उसका जूठा छोड़ देते हैं, मतलब लिया थाली में और जूठा छोड़ दिया, तो अनाज की जो होती बर्बादी ही हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि आप बिल्कुल उसी हिसाब से ले जितना आप खा सकते हैं।
0: एक हमारी सखी ने लिखा है कि हम जब अपने गुरुओं के मंदिर में जाते हैं वहां की बात है कि इतनी अच्छी लगती है वहां की उनकी बात की, वहां दो लोग सबकी थाली चेक करते हैं कि किसी ने खाना बचाया तो नहीं है, उसे वही पूरा खाना पड़ता है, तो अब सब लोग उतना ही लेते हैं जितना उन्हें खाना होता है। वैसे भी हम पहले थोड़ा कम लें और फिर चाहिए तो और ले लें। और देखो जो भोजन व्यर्थ होता है ना उसका एक कारण ये भी होता है, कोई भी जैसे समारोह हुआ, शादी समारोह या कोई भी ओकेजन होता है तो वहाँ खाने में बहुत सारी वेराइटी बहुत होती, बहुत तरह के व्यंजन बनते हैं और व्यक्ति चाहता है कि मैं सारे व्यंजनों को चख तो लूँ,
1: कैसे खा सकते हैं आप सोचिए,
0: जबकि उसके पेट में उतनी जगह होती नहीं है, लेकिन वो सब ले लेके चखना जरूर चाहता है और उस चक्कर में जब कोई भी चीज थोड़ी सी भी उसको कम पसंद आती तो वो लेता है और छोड़ देता है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी राय है, कि हम थोड़े अगर व्यंजनों की संख्या अगर कम रखेंगे तो शायद भोजन की बर्बादी कम हो, ऐसा मुझे लगता
1: वो है। तो खैर ये अपना सोचना, लेकिन आजकल लोग दिखावे के चक्कर में तरह तरह की चीजें रखते हैं और सलाद के भी इतने सारे वैरायटी होती, फ्रूट्स की भी होते हैं, स्टाल होते हैं कि सब तो नहीं खा सकता कोई, तो ठीक है आप उन्होंने लगाया ये आप उनको अपना अपनी तरह से सबको स्वागत करना है, लेकिन हम अपने लिए अपनी थाली में अन्न का स्वागत हिसाब से करें वो ज्यादा सही है। और हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे मंदिर में जहां खाना होता है वहां दीवारों पर लिखा होता है खाओ मन बचाओ नकन, और इतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। बहुत सुंदर सी बात है। इसी तरह एक साथी और लिखते हैं कि अन्न का दाना व्यर्थ न जाए, इसके लिए घर या सामूहिक भोजन के वक्त ये बात ध्यान में रखें, इतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। सभी ने ऐसी बात लिखी है। और थाली में लिया हुआ खाना झूठा होकर या बचकर बर्बाद ना हो, शादी या पार्टियों में अक्सर देखा गया है कि बुफे सिस्टम में कुछ लोग थाली में इतना ज्यादा भोजन ले लेते हैं कि दूसरी बार लेने जाना ना पड़े। इस ना लेने जाने की मानसिकता से भरी आलस ही खाने की बर्बादी का कारण अक्सर बनती है। तो इन चीजों का भाई ध्यान रखें कि जिसने भी आपको बुलाया है स्वागत सत्कार में, आपके लिए भोज का इंतजाम किया है, आयोजन किया है, तो उसके खाने की आप कद्र करें,
0: बिल्कुल
1: उसको व्यर्थ ना जाने दें।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि अन्न का एक एक दाना कीमती है और इसे व्यर्थ होने से बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब हम भोजन बर्बाद करते हैं तो सिर्फ खाना बर्बाद नहीं होता बल्कि उसे उगाने में लगी किसान की मेहनत और भी जाती है। और यहाँ कुछ छोटी और व्यावहारिक आदतें दी गई हैं जिसके बारे में उन्होंने लिखा है कि थाली में उतना ही ले जितनी भूख हो और बचे हुए भोजन का सही उपयोग, यदि खाना बच जाता है तो उसे फ्रिज में सुरक्षित रखें और अगले समय किसी नई रेसिपी बनाने में उसका उपयोग करें। और एक ये भी बात लिखी है कि जरूरतमंदों की मदद करें, यदि किसी पारिवारिक समारोह या पार्टी में भोजन अधिक मात्रा में बच जाए तो उसे फेंकने के बजाय पास के किसी शेल्टर होम या जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। खरीदारी की योजना जो है उसके बारे में बाजार जाने से पहले घर में मौजूद सामान की सूची बना लें ताकि जरूरत से ज्यादा सामान खरीद कर खराब ना हो। और लिखा है कि अन्न ही जीवन है, आइए मिलकर यह संकल्प लें कि हम न तो खुद भोजन बर्बाद करें और न ही दूसरों को करने दें।
1: और हम लोग पहले एक गीत सुन लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।

0: हॉर्स उड़ने की यहाँ पर बात हो रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कई लोगों को देखते हैं बहुत सारा भोजन बनाते हैं, फेंक देते हैं, तो उनको जब फेंकते हुए हम देखते हैं ना, तब भी हमारे होश उड़ जाते हैं, हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई इस भोजन को लाने में, बनाने में इतना पैसा खर्च, इतनी मेहनत खर्च, इतना इसके अंदर संसाधन लगते हैं, और जब फेंका जाता है तो कैसे लोग इतना आराम से फेंक देते हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारा दिल नहीं करता है
1: बिल्कुल फेंकना,
0: तो
1: बिल्कुल भी
0: तब
1: नहीं,
0: हमारे भी होश उड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल सही आपने कहा है। और देखिए हम लोग समय समय पर बताते भी रहते हैं अपने व्यंजन वाले में कि अगर कोई चीज है आपके पास घर में बची है, जैसे चावल बचा है, तो आप उसका चावल को भी दूसरी तरह से बना सकते हैं, चाहे उसको फ्राई कर लीजिए, चाहे आप चावल को पीस करके उसमें थोड़ी सूजी बेसन मिला करके आप उसमें डोसा जैसा बना सकते हैं। चावल की भजियां भी बहुत अच्छी बनती है, कच्चे चावल की,
0: हाँ,
1: तो वो चीजें भी आप कर सकते हैं।
0: हाँ।
1: तो अन्न आप दिमाग लगाएंगे ना, तो आपका अन्न जो है बेकार नहीं जाएगा। और अगर आपको जैसे, और किसी को देना है, मंजू जी एक बात मुझे यहाँ पर याद आई कि अगर आपको खाना किसी को देना है, तो देने से पहले एक बार खाने को आप चेक जरूर कीजिए,
0: हाँ,
1: कि वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई, बासी तो नहीं, बासी में गंध तो नहीं आ रही है, वो खराब तो नहीं होने लगा है। अगर ऐसा खाना अगर आपके पास है और आप चाह रहे हैं नहीं इसको दे दें, नहीं वो काम बिल्कुल मत करिए। आप उस अन्न को आप मिट्टी में आप दबा दीजिए, जिससे वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए, वो फिर भी ठीक है एक बार, लेकिन खाना कभी किसी को गलत मत दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: ऐसा ना सोचे कि चलो हम जो नहीं खा सकते तो दूसरों को दे दें, जो भोजन आप खा सकते हैं, जो खाने लायक है, उसी को आपको दूसरों को देना है। ऐसा नहीं है कि जो खराब हो चुका है वो हम दे दें और वो खा करके बीमार हो जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। चलिए अब हम अपने दूसरी बात की तरफ चलते हैं, राई का पहाड़, ये कहावत है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनना बड़ा ही अनूठा मुद्दा है। राई का पहाड़ बनना से तात्पर्य है कि छोटी छोटी बातों को एकदम लंबा बना देना। और एक और साथी यही लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनाना यानी कि बात का बतंगड़ बना देना, जैसे किसी साधारण सी बात या छोटी सी समस्या को बेवजह तूल देना और उसे बड़ा मुद्दा बना देना, ये एक बात है। और इसी से संबंधित एक और एक ऐसी कहावत है कि गरम तेल में राई की तरह उछलना, ये भी इन्होंने
1: बिल्कुल मतलब जैसे कोई बात चल रही है और किसी ने थोड़ी सी बात शुरू करी और वो आपके मन के या लोगों के मन के खिलाफ है, लेकिन आप उसमें उसको थोड़ा सा और हवा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो भाई तेल में जैसे राई चटकती ना वैसी चटकेगी। कई बार ऐसा होता भी है कि साथ में सारी सहेलियां या सारे दोस्त खाना खा रहे हैं और एक कुर्सी की वजह से आपस में हो जाए कि नहीं ये कुर्सी पे हम बैठेंगे, उस पे हम बैठेंगे, तो ये भी राई के पहाड़ वाली जैसी हालत हो जाती है।
0: वैसे देखो मंजरी, अगर हम अपने आसपास नजर डालें तो ऐसे कई लोग हमें मिल जाते हैं जो राई का पहाड़ बनाना उन्हें बहुत पसंद होता
1: है, उन्हें मजा आता है चटकारे लेके, हाँ। उसमें किससे अपने डालेंगे उसकी बात को, कहते ना मुंह से बात निकली,
0: हाँ।
1: किसी ने कहीं कहीं तक कही लेकिन दूसरा उसको मिर्च मसाला लगा के आगे तक बढ़ा देता है। और जैसे राई के उछलने वाली बात होती है, एक बार इसने कहा, उससे कहा, उससे कहा, हर समय बदलते हुए दूसरे रूप में वो सामने आ जाती है।
0: हाँ, जब एक ही बात अगर मतलब 5-6-10 लोगों तक पहुंचती है तो उसका स्वरूप थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है, और जब वापस पहले व्यक्ति तक वो बात आती है तो उसमें बहुत कुछ बदलाव आ चुका रहता है, यानी जो बात उसने कही होती है और जो बात लोगों तक पहुंची है, इन दोनों बातों में बहुत अंतर हो जाता है।
1: तो बड़ी समस्या होती है ना मंजू जी की, अब वो जो हमने जो सच बोला है उसको हम कैसे साबित करें, वो बड़ी एक समस्या होती है कि फिर या तो लगता है कि जिसने बात फैलाई है ना उसी को सामने बुलाओ और आमना सामना कर लो,
0: लेकिन ये संभव नहीं होता। किसने किससे कहा, क्या कहा, कैसे कहा, ये सब समझना। और दूसरी बात यह है कि ये सब करने में तो हमारा बहुत सारा समय भी चला जाएगा और हमारी बहुत सारी ऊर्जा भी खर्च हो जाएगी। हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, आप घर का काम करते हैं, आप बाहर का काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उसके लिए समय की भी जरूरत होती है और ऊर्जा की। अगर हम यही सब करते रहेंगे तो फिर तो हम अपना काम ही नहीं कर पाएंगे।
1: अच्छा है कि उन्हीं को छोड़ दो, तुम्हें फैलाने दो जिसको फैलाना है।
0: सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन जो जिन बातों पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत ना है उन बातों पर ध्यान ना दें। और जो लोग राई का पहाड़ बनाते हैं उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि इन व्यर्थ बातों में अपनी ऊर्जा को खर्च ना करें, बल्कि जो आपके पास समय है, जो ऊर्जा है, उसको किसी सकारात्मक कार्य में आप लगाएं, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी सेहत बनाने के लिए भी हम ये समय दे सकते हैं।
1: बिल्कुल सही,
0: थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा ईश्वर भक्ति में अपना समय लगाइए, और किसी और काम में जिससे आपको थोड़ा कुछ अर्जित हो सके अगर उसका उपयोग उसमें करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
1: बिल्कुल सही बात। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि छोटी सी बात को इतना बड़ा ना बना दे कि रिश्तों में दूरी आ जाए। बात चाहे राई जितनी हो, समझदारी यही है कि उसे पहाड़ ना बनने दे। रिश्तों की बात जहां तक है मंजू जी, कि अगर आपके रिश्तों में ऐसे मनमुटाव हो गए, आपको पता भी नहीं चला है कि किसने क्या किससे कह दिया, तो जब मिले तो वो बात आप क्लियर जरूर कर लें जिससे कि ऐसी दूरियां ना बने। और एक लिखते हैं कि राई का पहाड़ कितना ही बड़ा हो पर खामोशी रूपी एक गोटी ही काफी है। बहुत सही बात कही है कि वो कितना भी राई का पहाड़ बना ले, उसकी बातों का जवाब ही मत दे, खामोश हो जाए। तो मौन की तलवार जिसे कहते हैं ना, वो बहुत तेज होती है। तो बड़ी अच्छी सी बात इन्होंने लिख करके भेजी है। तो कहना चाहिए कि राई, एक और लिखते हैं कि राई का पहाड़ बनाना यानी छोटी सी बात को लास्टिक की तरह खींच करके बड़ा करना है, जिससे दिल और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। और ये क्या कहते हैं कि जल्दी से ही, जिसे कहते हैं कि आप नॉर्मल होने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा आप खींचे मत, इलास्टिक की तरह मत खींचे बातों को, वहीं पर थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करें तो ज्यादा ठीक है। तो हम लोग एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: उम्र है
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: देखिए हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि किसी की पहाड़ जैसी गलत बात को और किसी को बतानी हो तो उसे राई जैसा छोटा करके बताओ, क्या बात है। और अगर किसी की बात बहुत अच्छी है तो वो राई जितनी है तो उसे पहाड़ जैसा बनाकर बताओ ताकि हर कोई उससे कुछ सीख सके। बहुत सुंदर सी इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है, तो ये बहुत मतलब सारगर्भित चीज इन्होंने लिखकर भेजी है।
3: एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मुहावरों की दुनिया भी गजब है। मेरे पास एक पुरानी किताब थी जिसमें वो कहानियां थी, जिस कारण वो मुहावरा बना। वो किताब कोई मांग कर ले गया और वापस नहीं दी। राइस से पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना होता है।
2: क्या बात है, तो किताब देनी चाहिए किसी की भी ले जाओ तो देनी चाहिए।
3: हाँ,
2: और
3: हाँ, पुस्तक जो कई बार है ना, होता क्या है ना, पुस्तकें किसी को बड़ी प्रिय होती है इसीलिए वो खरीदते हैं
2: बिल्कुल,
3: और वो संग्रह करके रखते हैं और आपको इतने उदार मन से वो पढ़ने के लिए देते हैं, और जब आप उनकी पुस्तक उन्हें नहीं लौटाते हैं। और कई बार तो क्या, जैसे किसी की आदत होती कि पुस्तक किसी ने मांगी दे दी और उसे याद भी नहीं रहता कि मैंने कौन सी पुस्तक किसको दी, और इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं और वापस नहीं देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। उन्होंने इतनी उदारता दिखाते हुए आपको कोई पुस्तक दी, उन्हें पढ़कर वापस लौटा दीजिए।
2: आप भी तो उदारता दिखाइए, उदारता
3: जब वो मांगने आए तो राई का पहाड़ मत बनाइए।
2: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके मन में अफसोस तो होगा, ग्लानी तो देखिए होगी कि आपके पास किताब है, आपको पता है कि आपके पास किताब है, आपने वापस नहीं करी, तो आप अपनी ग्लानी को क्यों बढ़ा रहे हैं। आप
3: बिल्कुल
2: सहृदय उन्हें उदारता के साथ वापस कीजिए। और देखिए बहुत सारे हमें कमेंट्स और भी मिले हैं, अलग अलग विषयों के मिल गए, तो हम उनको भी ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। कि ये लिखते हैं कि अन्य के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि मेरी नानी हमेशा हम लोगों को बोलती थी।

0: हर बार के संत का एक क्षण भी और अन्न का एक भी कर्ण बर्बाद नहीं करना चाहिए। कभी तो हम लोगों को वो सब सिखाया गया, लेकिन इसलिए हम लोगों ने भी अपने बच्चों को सिखाया है कि जितना खाना हो उतना ही लें, अन्न का एक दाना भी थाली में ना छोड़ें। और ईश्वर की कृपा है कि बच्चे भी उतना ही लेते हैं जितना खाते हैं। कभी मेरे घर में कोई खाना बर्बाद नहीं होता है। कितना सुंदर आपका घर का स्वरूप होगा, हम कल्पना कर सकते हैं कि आप एक भी दाना अन्न का वहां पर बर्बाद नहीं हो रहा है। तो बहुत अच्छी सी बात है।
1: एक हमारे साथी लिख रहे है कि अन्न में ही ब्रह्मा ही नहीं अपितु इसमें अन्नपूर्णा देवी का वास भी माना गया है, और इस दृष्टिकोण से उसकी बर्बादी, वो भी आज के महंगाई वाले युग में, तो ये तो जानकर के अज्ञानता का ही परिचायक है। फिर वैसे ही अन्य प्राण के दृष्टिकोण से अन्न की बर्बादी से बचते रहना ही श्रेयस्कर है।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि अन्न का हर दाना सिर्फ खाना नहीं, किसी के मेहनत, पसीने और उम्मीद का फल है। थाली में उतना ही ले जितना खा सके, क्योंकि अन्न का सम्मान मेहनत का सम्मान है। बहुत सुंदर सी बात है। मुझे तो लगता है ये वाला जो संदेश है ना, ये लिख करके अपने घरों में लगा लेना चाहिए।
1: एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान या अपने आते हैं और वो पूरा खाना फिनिश करते हैं, ये फिर उतना ही लेते हैं जितना वो खा सके, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। और जो भी झूठा खाना छोड़ते हैं, हम उन्हें जरूर कहते हैं कि आप ऐसा न करें, उतना ही ले जितना आपको खाना है।
0: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि भोजन करते समय थोड़ी देर के लिए सोचे कि ये भोजन जो हम लोगों को आसानी से मिला है और खा रहे हैं, उसको पैदा करने में किसानों ने कितना पसीना बहाया है, कितनी कठिनाइयों से होकर हमारी थाली में आया, तो अन्न का एक भी दाना नहीं फेंकना।
1: चलिए अब हम अपनी बातों को थोड़ा विराम दे देते हैं, नहीं तो लोग हमें ये कहेंगे कि अरे आप तो छोटी बातों को राई का पहाड़ बना रहे हैं। तो अब घड़ी की तरफ हमने नजर डाली और समय हमें आज्ञा नहीं दे रहा है, तो अब हम श्रोताओं से आज्ञा लेते हैं, कार्यक्रम को विराम देते हैं। आप सभी को मंजु द्विवेदी
0: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बरसों के संघर्ष और नामुमकिन हालातों के बावजूद अपनी मेहनत और सच्चाई से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। फिल्मिस्तान के सनी से लेकर द फैमिली मैन के जेके तलपड़

0: तक इन्होंने हर किरदार में वो आम और सहज व्यक्तित्व दिखाया जिससे हम सब खुद को जोड़ पाए। और आज जैसे जैसे हम बातचीत में आगे बढ़ते जाएंगे, मुझे यकीन है कि हम ये समझ पाएंगे कि ये कहानी जो है सिर्फ कामयाबी की नहीं है, ये धैर्य और डटे रहने की मिसाल भी है। तो बिना देरी किए आज इस स्टूडियो में, विविध भारती के स्टूडियो में, हम स्वागत करते हैं हमारे मेहमान शारिब हाशमी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आके बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि विविध भारती के साथ में काफ़ी नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ
0: जी जी जी जब
1: है।
0: हम आ रहे थे और लाइब्रेरी के दौरान जब आप देख रहे थे, साथ में फोटोग्राफ्स देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा जुड़ाव तो है। किस
1: हाँ
0: तरह का जुड़ाव है रेडियो से या विविध भारती से, वो हमारे साथ साझा कीजिए प्लीज।
1: हाँ कि मतलब क्योंकि बचपन हमारा तो रेडियो पर ही पूरा गुजरा है, और खासकर उस वक्त तो मतलब मैं आई एम एन 80s किड, तो उस वक्त तो ज़्यादा रेडियो लोग ज़्यादा सुना करते थे,
0: जी जी
1: और शुरुआत ही विविध भारती के कार्यक्रम से होती थी सुबह की,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जिसमें नए गाने आते थे, और रात को जो है वो थोड़े पुराने गाने होते थे, वो बेला के फूल,
0: बिल्कुल
1: और तो मैं सारे सुना करता था। मैंने कभी पुराने गाने जो हैं वो बैठ के कभी मैंने याद नहीं किए, वो रेडियो पे गाने सुन सुन के अपने आप याद हुए हैं, जो अब तक याद हैं सारे
0: बिल्कुल
1: गाने, किशोरदा के, रफ़ी साहब के, मुकेश जी के, जो भी गाने मैंने याद किए हैं, तो वो सब थैंक्स टू विविध भारती है।
0: जी। और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आज। मुझे लगता है दिलचस्प बातें होगी और गीत भी हम आपसे सुनेंगे क्योंकि
1: अरे
0: आप गाते भी बहुत अच्छा है,
1: हाँ,
0: ये
1: बहुत
0: मैं
1: अच्छा तो
0: जानती
1: नहीं लेकिन
0: हूँ।
1: हाँ शौकिया तौर पे।
0: जी हाँ जी हाँ। शुरुआत रेडियो की बातें से हुई तो बचपन की यादें, कुछ कैसा रहा परिवेश घर का? आपके पिता एक पत्रकार थे, जाने माने पत्रकार, तो क्या उनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में आपका एंट्री हुआ या किस तरीके से, या आपने खुद ही अपना ये रास्ता चुना?
1: नहीं, चुना तो मैंने खुद ही रास्ता, लेकिन ये उनका जो प्रोफेशन था वो मतलब उसने मुझ पर बहुत असर छोड़ा था, तो उसी
0: जी
1: वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भी इस फील्ड में आना है। उन्होंने मतलब मुझे, मैंने उनसे हेल्प भी नहीं मांगी थी कि मुझे कहीं पर लगवा दीजिए या कर दीजिए, तो वो मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू कहीं पर मुझे एज एन असिस्टेंट के तौर पर जॉब मिला, एडी,
0: एडी
1: तो हाँ तो वैसे करियर की शुरुआत हुई थी। लेकिन मैंने उनसे कभी ये नहीं बोला था कि मुझे कहीं पर मतलब ये एज एन असिस्टेंट या कहीं कुछ काम
0: पर
1: देगा ये।
0: फिल्मी हस्तियों को आपने देखा है अपने घर पर
1: हाँ
0: बचपन
1: वो
0: से
1: देखा था, तो
0: आते
1: उस
0: जाते
1: वजह
0: हुए।
1: से मतलब मेरा मतलब अगर मैं इस लाइन में हूं तो वो मेरे डैड की बदौलत ही हूँ, उनकी
0: जी
1: वजह से हूँ।
0: जी जी जी उस बारे में कुछ बताएं, बचपन की कुछ यादें, उस टाइम आप सेट पे जाते थे या किसी से मुलाकात हुई या उस वक्त किसी ने कहा कि हाँ आप इसी लाइन में जाएंगे, कुछ उस टाइम ऐसे चिन्ह नजर आए?
1: उस टाइम एक्चुअली किसी ने मुझसे कहा नहीं। अब मैंने वैसे बचपन में एक सीरियल आता था आफ्टरनून ट्रांसमिशन में दूरदर्शन पे, कैसे बना मुहावरा कैसे बनी कहानी।
0: अच्छा।
1: तो उसके एक एपिसोड में मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था, हमने SL स्टूडियो में शूट किया था उसको ट्रॉम्बे में, बहुत दूर, जब बचपन में तो बहुत ज़्यादा दूर लगा था। अब और ज़्यादा दूर हो गया ट्रैफिक की वजह
0: जी
1: से, तो हम वहाँ पर गए थे और मेरा मतलब मैं बांसुरी बजाते हुए घर में घुस रहा हूँ, और मेरे डैड जो है बने हुए थे उसमें, डांटते हैं और मैं डरता हूँ, मुझे मुझे मुझे डरने का वो रिएक्शन देना था। तो वो जब शूट हो रहा था तो उन्होंने जब मुझे डांटा मैं डरा, तो उनको लगा कि मैं सच में डर गया हूँ, और वो अपने डायलॉग भूल गए। उनको लगा, मुझे लगा ये बच्चा सच में डर गया है, तो
0: जी
1: मतलब मुझे डरना ही था इसके लिए मैं डरा। तो तब लोगों ने बोला अरे ये अच्छा एक्टर है, लेकिन वो स्कूल के टाइम पे किया हो गया और ऐसा कोई वो नहीं था तब की, लेकिन वो टाइम मेरा बड़ा ये था कि बड़े होके तो मुझे एक्टर ही बनना है, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो वो उतना बड़ा हुआ नहीं। तो उस वजह से तब मैंने सोचा था कि एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, और क्योंकि मैंने पूरा बचपन ये सोचकर गुजारा कि बड़ा होऊंगा तो हीरो बनूंगा, अब हीरो वाली तो पर्सनैलिटी है नहीं और मुझे बाकी कुछ करना
0: नहीं, आप जो हैं जिस भी पात्र में ढलते हैं हमें बहुत अच्छे लगते
1: थैंक
0: हैं
1: यू, थैंक
0: और
1: यू सो
0: बहुत
1: मच।
0: पसंद किए जाते हैं। और जानना चाहेंगे आपके स्कूल और कॉलेज का वक्त, क्या आपने स्ट्रीम्स ली थी, क्या पढ़ाई की?
1: स्कूल तो नॉर्मल यहीं पर SSC बोर्ड में था, और उसके बाद में मैंने आर्ट्स में मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया, BA किया है, और 2 साल पहले मैंने कॉलेज के बाद इस्माइल यूसुफ में जूनियर कॉलेज किया, और बाद में 3 साल भवंस कॉलेज अंधेरी में था,
0: जी
1: तो वहाँ पर मतलब मेरी पूरी कायापलट हुई एकदम। वहाँ काफ़ी बहुत सारे दोस्तों से मिला, बहुत लोगों से मिला। इस्माइल यूसुफ में भी काफी शुरू हो गया था
0: जी। अच्छा, थिएटर और ड्रामा?
1: थिएटर ड्रामा तो पता नहीं मेरे नसीब में कुछ, मुझे नाटक मुझे हुआ ही मिला ही नहीं ना। स्कूल में मैं कुछ कर पाया, इस्माइल यूसुफ में जब मैं गया वहां पर नाटक हुआ नहीं। एक प्ले की रिहर्सल शुरू हुई और वो प्ले बंद हो गया। कॉलेज मैंने चेंज किया इसी वजह से कि मुझे नाटक करने थे। मैं जिस साल भवंस कॉलेज में मैंने एंट्री ली वहां पर एक नए प्रिंसिपल उस साल मेरे साथ में, उन्होंने भी एंट्री मारी थी।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने नाटक वाटक सब बैन करवा दिए थे पता नहीं क्यों। तो मेरा मतलब पूरा कॉलेज का जो टाइम था जब मैंने सोचा था कि यार मैं नाटक वाटक करूंगा वो हुआ ही नहीं। फिर थिएटर कभी मैं कर ही नहीं पाया, थिएटर के साथ में मेरा जुड़ाव हो ही नहीं पाया। फिल्में करने के बाद में मैंने नाटक किए।
0: जैसे कि अभी आप कर रहे हैं। हाँ, उस बारे में भी हम
1: जी,
0: बात करेंगे। फिलहाल हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं।
1: मेरी पसंद का कोई गीत? यार बहुत सारे गीत हैं मेरी पसंद के। आपकी याद आती रही रात भर अगर।
0: अच्छा।
1: गमन से
0: थोड़ा सा गुनगुना देंगे?
1: अरे वो तो बहुत

0: क्या बात है,
1: थैंक यू.
0: सुनवाते हैं गीत
1: अभी से मैं
0: अपने.
1: ऐसे गाने बोलूंगा जो मैं अच्छे से गा सकूं.
0: नहीं, हर गीत पे
1: जैसे
0: हम
1: वो कहते
0: नहीं
1: हैं ना कि
0: गवाएंगे आपको अगर
1: बच्चों
0: आप ऐसा
1: को,
0: चाहेंगे तो.
1: हाँ, कि बच्चे के बोलते हैं कि
0: जी.
1: महाराष्ट्र कौन से स्टेट में रहते हो, तो मैं महाराष्ट्र, उसकी स्पेलिंग बताओ. नहीं, मैं गोवा में रहता हूँ.
0: नहीं, आप
1: तो
0: बेफिक्र रहिए.
1: अब मैं सिंपल वाले गाने बताऊंगा.

0: अच्छा 1999 में हम तुम पे मरते हैं फिल्म में एज असिस्टेंट डायरेक्टर आपने काम किया, तो वहां से जुड़ाव कैसे हुआ? और आपने नौकरी भी कुछ की है, तो उससे पहले की बात है या उसके 99 के बाद की बात है?
1: नहीं, नौकरी बाद में हुई, पहले मैंने अच्छा। मेरा पहला काम जो
0: पहला
1: है
0: एज एन
1: असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी नौकरी थी।
0: हाँ हाँ।
1: तो मेरी पहली नौकरी वो थी।
0: तो वो कैसे जुड़े, कैसे?
1: वो मेरे कॉलेज में मेरे एक दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं, मतलब काफी क्लोज फ्रेंड हैं, राजुल मिश्रा। तो वो उस वक्त सूरज जी को असिस्ट करते थे, वो मेरे से कॉलेज में 2 साल सीनियर थे और हम साथ में काफी गाने वाने गाया करते थे, और वो कॉलेज में मतलब ही वॉज अ स्टार सिंगर। तो उन्होंने बाद में राची प्रोडक्शंस ज्वाइन किया, सूरज जी को वो असिस्ट कर रहे थे, और हमारी फिर मुलाकात फिर भी होती रहती थी। और उनके जरिए मुझे उनके ही एक एक्स कलीग जो थे नव कुमार राजू जी, जो सूरज जी को पहले असिस्ट किया करते थे, तो वो एक फिल्म शुरू कर रहे थे, और उन्होंने मुझे, राजुल ने मुझे उनसे मिलवाया, और मेरा एक इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया, और इस तरीके से पहली फिल्म मिली हम तुम पे मरते हैं, जिसमें गोविंदा जी, उर्मिला जी, डिंपल कपाड़िया मैम, बहुत बड़ी कास्ट थी, परेश रावल साहब थे, जॉनी लीवर जी थे, गुलशन ग्रोवर जी, तो बहुत मजा आया था, मेरा पहला काम था वो, और काफी मजेदार एक्सपीरियंस रहा था वो, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ही बहुत कमाल था।
0: उसके बाद आपने दूसरी नौकरियां भी की है?
1: हाँ, उसके बाद मैंने एक और फिल्म में असिस्ट करना शुरू किया, लेकिन 20 दिन में मैंने वो फिल्म छोड़ दी थी, और उसके बाद फिर 1-1.5 साल तक फिर काफी काम की तलाश चली, और फिर फाइनली कुछ फ्रीलांस काम मिलने लगा एज अ राइटर, वो भी राजुल की बदौलत, मतलब राजुल मिश्रा का मेरे करियर में बहुत ही बड़ा अच्छा। योगदान है, तो उन्होंने मुझे असल में राइटिंग की तरफ झुकाव जो है वो उस तरफ बढ़ाया, रुझान। तो वो उन्हें पहले एक कोई डिस्कवरी के लिए कोई एक शो मिला था जिसको वो हिंदी में उनको ट्रांसलेट करना था, तो मैं उस वक्त मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था राजश्री प्रोडक्शंस में, हमेशा जब ऑफिस आवर्स खत्म होते थे तो मैं शाम को वहां पहुंचता था, हम गप्पे उप्पे मारते थे और काम वाम की बातें भी करते थे
0: जी।
1: तो उनको वो ट्रांसलेट करने के लिए मिला था, तो राजुल ने मुझे कहा कि यार एक बार तू भी ट्राई कर, तेरी भी भाषा तो ठीक ठाक ही है। तो मैंने जब एक पैराग्राफ लिखा तो वो उन्हें बहुत पसंद आया, तो और बोला यार तू तो मतलब सिर्फ ट्रांसलेट नहीं, तू तो मतलब अच्छे से उसे, मतलब तेरी लैंग्वेज पे काफी अच्छी कमांड है। तो मुझे तो ये पता नहीं था ऐसा कि मतलब मैं कुछ लिख भी सकता हूँ। फिर उन्हें एक कॉमेडी टाइप थोड़ा सा मतलब MTV के लिए एक शो था जो रागेश्वरी होस्ट किया करती थी,
0: अच्छा।
1: उसमें उस वक्त विजय थी वो उस वक्त MTV में, तो वो शो लिखना था, उनके एंकर लिंक्स वीजे लिंक्स जो होते हैं कि वो जो बोलते हैं फिर उसके बाद गाना आता है, तो वो लिखने के लिए दिया और वो मैंने लिखा, वो भी साथ में उनके, वो भी पसंद आया, उन्हें भी पसंद आया, रागेश्वरी को भी अच्छा लगा, तो फिर और शोज लिखने लगे, फिर एक शो से दूसरा शो, फिर ETC, मैं, राजुल और हमारे एक और दोस्त है कॉलेज का रेंजी वर्गिस, हम तीनों ने फिर मतलब लिखना शुरू किया काफी, और धीरे धीरे कब मैं मतलब एकदम से राइटर बन गया मुझे खुद पता नहीं चला, 1-2 साल गुजर गए, राइटर का तमगा लग गया
0: जी।
1: फिर नौकरी की मैंने MTV में 4 साल इन हाउस राइटर के तौर पे, और फिर 1 साल चैनल V में था, तो ऐसे फिर शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, तो यही लाइफ हो गई थी, मुझे लगा कि अब ऐसे ही चलता रहेगा। अब बाद में मैं क्रिएटिव हेड बन गया एक दूसरे चैनल में, बॉलीवुड चैनल था वो, इमेजिन शोबिज, तो फिर मतलब ऐसे लाइफ शुरू हो गई। बट ये नौकरी के जो मेरे साल थे उसमें सबसे ज्यादा जो मैंने एंजॉय किया वो MTV के जो 4 साल थे वो मेरे लिए बेहद खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा मैंने वहां पर सीखा, बहुत अच्छे दोस्त बनाए, प्यारे दोस्त बनाए जो अब तक जिनके मैं टच में हूँ जिनके साथ
0: जी।
1: तो वो मेरे मतलब बहुत ही खूबसूरत 4 साल रहे हैं MTV में।
0: बिल्कुल। यहाँ पर आपके गीत पसंद के, कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे, और हो सके अगर वो गीत अगर आप गाना चाहें तो गा सकते हैं।
2: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सावरिया, ओए होए, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सावरिया, ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया, आके सीधी।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब।
2: आके के सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ संवरिया ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ संवरिया।

गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय नटखट रंगीले सांवरिया आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कट

0: हम बात कर रहे हैं शारिब जी से, और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में और बैनर आपके फेहरिस्त में हैं, आपके खाते में शामिल हैं। हम बात करते हैं अगर स्लम डॉग मिलेनियर की, काफी चर्चित पॉपुलर फिल्म रही है, उसके साथ कैसे जुड़ना हुआ?
1: उस वक्त एक्चुअली मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। तब मैं चैनल वी में काम कर रहा था, 4 साल एमटीवी में गुजारने के बाद मैंने चैनल वी ज्वाइन किया था। और उस वक्त मेरे एक दोस्त, मेरे एमटीवी के ही एक मतलब एक्स कलीग जो हैं स्वप्निल कोरे, तो वो उसमें असिस्ट कर रहे थे कास्टिंग में, और उन्होंने मुझे एक रोल के लिए बुलाया। रोल क्या, वो तो मतलब एक सीन था जो मतलब अगर कोई हिंदी फिल्म होती तो वो किसी असिस्टेंट डायरेक्टर से या कोई जूनियर आर्टिस्ट से करवा देते, बट मेरा उसके लिए बाकायदा ऑडिशन लिया गया। और डैनी बॉयल साहब मेरे ऑडिशन में मौजूद थे, वो मुझे क्यूज दे रहे थे दूसरे कैरेक्टर का, तो मैं मतलब एकदम हक्का बक्का था कि यार इतना इन्वॉल्वमेंट किसी डायरेक्टर का, मतलब मैं आकर चला भी जाऊंगा कुछ वो नहीं था उस ऐसे रोल के लिए। डायरेक्टर कभी रहते भी नहीं है, वो तो सेकेंडरी तक भी नहीं पहुंचते। तो बट इतना उन्होंने मुझे उस वक्त अप्रिशिएट किया था मेरे काम को और इतनी तारीफ की थी। और मतलब डैनी बॉयल साहब हैं वो,
0: बिल्कुल,
1: वो
0: बिल्कुल
1: भी मतलब रत्ती भर भी मतलब उनमें कोई मतलब एयर नहीं था, ना कोई ईगो था, ना कोई ऐसे अहम था कुछ। इतना प्यारा इंसान, बहुत मतलब मेरे लिए स्लमडॉग मिलियनेयर में मेरा शूट एक ही दिन हुआ था
0: जी,
1: लेकिन उन्होंने 2 दिन का रखा था बफर। फर्स्ट डे जो है मैं शूट नहीं कर पाया था और नेक्स्ट डे शूट हुआ था, तो फर्स्ट डे जब पूरा दिन मैं बैठने के बाद में उन्होंने बोला पैकअप हो गया, तो पैकअप के वक्त डैनी साहब मुझे मिले और पहले उन्होंने माफी मांगी कि हम शूट नहीं कर पाए।
0: अच्छा।
1: उनको कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने, ना मुझसे मिलने की जरूरत थी, बट उसके बावजूद वो आए। और मैंने ऑडिशन के टाइम एक लाइन ऐसी इम्प्रोवाइज की थी कुछ, तो वो उन्होंने स्क्रिप्ट में डाली थी, वो लाइन उन्होंने स्क्रिप्ट में ऐड कर दी थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि डिड यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट, वी एडेड योर लाइन, यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ। मतलब मैं कभी जिंदगी भी नहीं भूल सकता कि इतने बड़े आदमी ने मतलब इतने प्यार से और इतनी रिस्पेक्ट दी मुझे, जो मैं मतलब हमेशा याद रखूंगा। मैं 50 बार ये किस्सा मैं 1000 लोगों को सुनाता हूँ।
0: और जब तक है जहाँ, उससे भी आप रिलेट किए, उससे कैसे जुड़ना हुआ?
1: उसमें मैं असल में जब मैंने डिसाइड किया 2008 एंड मतलब 2009 के आसपास में मैंने नौकरी छोड़ छाड़ के एक्टिंग करने का डिसीजन लिया था, और फिर 3 साल तक बहुत सारे ऑडिशन हुए, सैकड़ों, और सिर्फ रिजेक्शन मिले। एक ऐड किया था, एक शॉर्ट फिल्म की थी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला था
0: जी।
1: तो फिर से मुझे क्योंकि कर्जे चढ़ गए थे बहुत ज्यादा, तो मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ी। एक चैनल था यूटीवी बिंदास, वहां पर मैंने ज्वाइन किया एज एवीपी प्रोग्रामिंग, और वहां कुछ 3 महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा जी का फोन आया।
0: अच्छा।
1: जो YRF में कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो, तो उन्होंने मेरी जो शॉर्ट फिल्म मैंने की थी वो यूट्यूब पर देखी, और वो देखकर फिर उन्होंने मुझे जब तक है जान के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया। तो शुरुआत में 3 राउंड जो हुआ उसमें सिर्फ मैंने रब ने बना दी जोड़ी में जो विनय पाठक साहब का जो कैरेक्टर था उनके सीन्स के साथ ऑडिशन दिया, फिर वो हुआ। उसके बाद मुझे जब वो पड़ाव पार हो गया उसके बाद मुझे जो जैन के जो मैं प्ले करने वाला था उसके सीन्स दिए, और फिर उसके 3 राउंड हुए। और मेरा सबसे पहला ऑडिशन भूमि पेडनेकर ने लिया था।
0: अच्छा।
1: उस वक्त वो शानू की असिस्टेंट थी।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो बहुत मतलब मेरे लिए तो ये चीजें जो मेरे साथ में हो रही थी, और उस वक्त मैं नौकरी कर रहा था, और थैंकफुली जो मेरी इमीडिएट बॉस जो थी वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, तो मैं आराम से मतलब
0: मौका
1: मिलते ही मतलब मैं मतलब ऑफिस से चला जाता था और ऑडिशन देके आ जाता था। तो फिर एक दिन रात को 12 बजे मुझे इन्होंने फोन किया शानू ने कि यार नहीं हो पा रहा है और किसी और एक्टर को कास्ट कर लिया है। तो मुझे लगा ठीक है, अब इतने सारे रिजेक्शन हुए हैं, मैं वैसे भी मतलब मैंने सोचा था कि ये भी रिजेक्ट ही होने वाला हूँ। तो मैंने फिर एक और थोड़ा सा उदास हुआ और फिर काम पे लग गया अपने, क्योंकि नौकरी थी एटलीस्ट। बट 1 हफ्ते बाद फिर से मुझे फोन आया, और इस बार यशराज के ऑफिस से आया था, और अक्षत कपिल जो उस वक्त यश जी के चीफ थे उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया कि आप एक बार और ऑडिशन दे सकते हैं क्या। तो मैंने बोला ठीक है एक बार और ले लो। तो मैं ऑफिस गया उनके YRF में और वहां पर एक बार फिर से ऑडिशन दिया और मैं फिर वापस अपने ऑफिस आ गया। तो ऑफिस पहुंचा ही था मैं कि आधे घंटे में फोन आया कि आप सेलेक्ट हो गए, 4 दिन बाद शूट है।
0: अच्छा,
1: दो दिन
0: उसी के लिए जिसमें पहले नहीं हुआ था।
1: हाँ, सेम रोल का ही मैंने इतनी बार ऑडिशन लिया और वो फिर फाइनली मतलब हो गया, क्योंकि शायद वो उसके पहले जिसको कास्ट किया था वो भी थोड़ा हैंडसम और गुड लुकिंग टाइप था, तो दोनों हैंडसम और गुड लुकिंग, दोनों शाहरुख खान साहब भी हैंडसम तो ये भी हैंडसम, तो उन्हें शायद कुछ कॉन्ट्रास्ट चाहिए था,
0: वो कुछ
1: और मैं उस वक्त एकदम ऐसा था 90 किलो का।
0: तो हमेशा ये जो मूवीज का जो प्रोसेस है ये ऑडिशंस, क्या इतना लंबा होता है या अलग अलग प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, बार बार राउंड्स देने पड़ते हैं?
1: हाँ, जितनी बड़ी फिल्म होती है उतने ज्यादा राउंड्स होते हैं फिल्म में ऑडिशंस के। अभी तो मैं वो ऑडिशन प्रोसेस तो अब नहीं रहा, लेकिन हाँ अगर कभी कोई ऐसी फिल्म होती है जिसके लिए ऑडिशन की बहुत जरूरत हो तो वो भी मैं करने में मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो मतलब जो वो फर्स्ट 3 साल जो मैंने ऑडिशंस दिए थे उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। ऑडिशन मेरा रियाज था एक्चुअली, क्योंकि मेरी कोई फिल्म में या एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ना मैंने थिएटर किया था, ना कोई एक्सपीरियंस था एक्टिंग करने का। सिर्फ मैं एमटीवी में मैंने मतलब काफी जो हम स्केच कॉमेडीज करते थे वो उसमें मैं कुछ कुछ कभी एक्टिंग कर लेता था, बकरा, एमटीवी बकरा करता था, अदरवाइज मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो वो उन ऑडिशंस में मैंने बहुत कुछ सीखा उसके दौरान और उसके जरिए मेरा रियाज हुआ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये ऑडिशंस में जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़े बड़े बैनर्स के साथ आप जुड़े, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट से रिजेक्शन भी मिला कहीं ना कहीं, बहुत सारे, तो कैसा महसूस हुआ या वो हिम्मत कहाँ से आती है, मोटिवेटेड कहाँ से रहते हैं आप कि नहीं अभी चलते जाना है आगे, कोई बात नहीं रिजेक्ट हुआ कोई बात नहीं आगे और कोशिश करेंगे, कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं छोड़ देते हैं अभी मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ होगा?
1: नहीं, मैं वो एक तो अब मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ये सब इसलिए क्या था क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन से प्यार है बहुत। और अगर वो मतलब वो लव फॉर द जॉब जो है ना वो मतलब छोड़ने नहीं देता। और मैं थोड़ा बचपन से ही काफी पॉजिटिव रहा हूँ और मेरे आसपास भी काफी एनकरेजिंग फ्रेंड्स और फैमिली, खासकर मेरी बेगम, तो वो बहुत हमेशा सपोर्टिव रही और उनकी ही बदौलत एक्चुअली मैं कंटिन्यू कर पाया। वरना एक दो बार ऐसा आता था मौका कि मतलब मन करता था कि यार बेकार में मैं सबको परेशान कर रहा हूँ इसके चक्कर में, बट उन्होंने बोला कि ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की मतलब वो नहीं है, हम सब इसमें तुम्हारे साथ में हैं। तो वही, और खुद पे भरोसा था कि यार टैलेंट तो अपने में है, कूट कूट के भरा है, तो बस जनता तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग रहा है, वो हो जाएगा।
0: वो जो कूट कूट के भरा है टैलेंट वो नजर आया फिल्मिस्तान
1: जी
0: फिल्म में।
1: हाँ।
0: तो वहां पर ऐसा लगा कि बस आप तो एंटरटेनमेंट के लिए बने, उसमें डायलॉग भी है।
1: हाँ,
0: ये कि मेरा जन्म
1: मैंने लिखे हैं फिल्म।
0: हाँ, वो आप ही ने लिखे हैं कि मेरा जन्म ही एंटरटेनमेंट के लिए हुआ है।
1: यस।
0: तो ये कैसे इसके साथ जुड़ा हुआ, कैसे लिखे
1: फिल्मिस्तान? मैं असल में जब मैं तब ये यूटीवी मंदास में ही नौकरी मेरी चल रही थी, उसी दौरान जब तक है जान के ऑडिशंस में दे रहा था, तो वो जब जो मेरे वहां पे 3-4 महीने जो मैंने वहां पर गुजारे थे, उस वक्त नितिन ने उस पर काम करना शुरू किया था स्क्रिप्ट पर फिल्मिस्तान की। तो मैं ऑफिस खत्म होने के बाद मैं नितिन के घर जाता था और जो भी उन्होंने लिखा होता था वो मुझे सुनाते थे और मैं आई वुड वर्क एज अ बाउंस बोर्ड। मैं कहता था हाँ ये अच्छा है, बहुत सही है, ज्यादातर वो सब अच्छा ही होता था। नितिन बहुत ब्रिलियंट राइटर है, बहुत कमाल जब भी वो लिखता है। फिर हमने साथ में थोड़ा थोड़ा और वो करना शुरू किया और नितिन को भी जब मैं जब तक ही जान में सेलेक्ट हुआ, उसी दौरान नितिन को

0: कोशिश की वो मेरे हाथ ही नहीं आई। जब थक हार के कहीं बैठ गया तो अपने आप मेरे कांधे पे आके मतलब जो है वो बैठ
1: बिल्कुल, कहते हैं ना जिसे आप चेज करते हैं वो
0: गई।
1: मिलता नहीं है, जब आप छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिल
0: वो
1: जाता है,
0: मिल जाता है, तो वही
1: ऐसे
0: हुआ
1: ही
0: मेरे
1: कुछ हुआ।
0: साथ में। और इस तरीके से फिल्मिस्तान ही हुई, और फिल्मिस्तान ने फिर मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी एकदम।
1: बिल्कुल। यहां पर आपकी पसंद का गीत?
0: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा भी था, जावेद अख्तर साहब के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि फिल्मों में मतलब आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ सबसे फेवरेट गाना उनका कौन सा है, तो उन्होंने बोला था जिंदगी के सफर में, और मुझे भी ये गाना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है।
1: बिल्कुल, ये सुनवाते हैं हम अपने सुनने वालों को।

0: हम बात कर रहे हैं आज शारिब हाशमी जी से। तो फिल्मिस्तान की जब बात चली है तो उसका सुर कैसे पकड़ा और कितना करीब है सनी शारिब से?
1: सनी और शारिब वैसे तो काफी, मतलब बहुत, मैंने जितने भी किरदार निभाए हैं उसमें सनी अरोरा मतलब मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है, और उसी लिए मुझे उसे परफॉर्म करते वक्त मुझे लगा रही ये तो बहुत आसान होगा, यही सब मिमिक्री करना है, डांस करना है, नाचना गाना है और मस्ती
0: उसके
1: करनी
0: डायलॉग
1: है।
0: भी आपने लिखे हैं।
1: उसके डायलॉग मैंने लिखे हैं, हाँ, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान होगा। बट जब हमने शूट करना शुरू किया तब सिंपल चीजें भी, क्योंकि पहली बार एक तो मैं मेन लीड कर रहा था, वो एक प्रेशर भी था, और मैं कर रहा हूं तो वो लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे उसका एक प्रेशर था, और नितिन का जो मुझ पे भरोसा था, मैं उसे मतलब उस भरोसे पे पूरा उतरूंगा नहीं उतरूंगा, मैं बहुत उस तरीके से उस वक्त पता नहीं थोड़ा एक प्रेशर था, और वो शायद फिर परफॉर्मेंस में नजर आने लगा, और नितिन मुझे बार बार कह रहा था कि थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा ठंडा हो जा थोड़ा। तो मुझे एक दो दिन लगे थोड़ा अपना सुर समझने में, अपने किरदार में मतलब पूरी तरह से थोड़ा ढलने में, और सही तरीके से मतलब जो रिक्वायरमेंट थी किरदार की वो
0: मतलब
1: परफॉर्म
0: पेश
1: करने
0: करने
1: में
0: में।
1: जो है मुझे थोड़ा 2 दिन लगा सेम पेज पे आने में नितिन के साथ।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जब मैं आया तो फिर, और जब नितिन कुछ अच्छा बोलता था तो मेरा पूरा ऐसे मैं बच्चों की तरह
0: जो कि
1: नाचता
0: हमने उसमें भी देखा, परफॉर्मेंस भी देखा, बिल्कुल दिल खोल के, जिसे बोलते हैं ना कि बस यही मेरी, यही सब कुछ है, उस तरह से आपने सब कुछ उसमें डाल दिया था,
1: जी
0: पूरा
1: थैंक
0: एंटरटेनमेंट। और वो
1: यू।
0: डायलॉग भी है उसमें कि
1: हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ
0: पैदा
1: हूँ।
0: हुआ।

0: और जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
1: जी हाँ, फिल्मिस्तान के बाद आपने राम सिंह चार्ली करके भी फिल्म की है और उसमें भी नितिन कक्कड़ जी हैं और कुमुद मिश्रा,
0: हाँ, हाँ,
1: उन्हीं के साथ काम किया है।
0: बिल्कुल।
1: तो फिर से एक टीम के साथ फिर से काम करना इजी भी होता है, और कैसा ये अनुभव है?
0: नितिन के साथ तो मेरा अलग कम्फर्ट लेवल ही अलग है। हम बहुत गहरे दोस्त भी हैं, और साथ में मैंने राइटिंग का काम तो सिवाय नितिन के और किसी के साथ किया ही नहीं है, फिल्म राइटिंग। तो मैंने उनके लिए और मित्रों, एक फिल्म है उसके लिए भी डायलॉग्स लिखे हैं, नोटबुक के लिए भी डायलॉग्स लिखे हैं, और राम सिंह चार्ली तो हमने तकरीबन साथ में लिखी है। बट मेजर काम हमेशा राइटिंग में नितिन का ही होता है। वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है। हमने सबसे पहली बार मुझे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नितिन ने मुझे बताया था जब हम बुसान फिल्म फेस्टिवल में गए थे फिल्मिस्तान को लेकर। वहां पर फिल्मिस्तान का वर्ल्ड प्रीमियर था, और तब नितिन ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोला था कि चार्ली चैपलिन के इम्पर्सोनेटर की अगर कोई कहानी हो और उसको अगर हम लोग कुछ करें तो कैसा रहेगा। और मैं तो सुन के ही बहुत खुश हो गया था, यार ये तो कमाल होगा। और फिर हमने धीरे धीरे, नितिन ने थोड़ा उसको डेवलप करना शुरू किया, फिर हम साथ में बैठ के उस पर काम करने लगे, और करते करते करते राम सिंह चार्ली की स्क्रिप्ट तैयार हो गई, और हम बहुत खुश थे स्क्रिप्ट के साथ। और पिच करना शुरू किया तो कोई तैयार नहीं हो रहा था प्रोड्यूस करने के लिए, या कोई कह रहा था कि कोई नाम लेकर आओ, कोई बड़ा एक्टर लेकर आओ। फिर हमने डिसाइड किया कि यार जब हमको इस चीज़ पे इतना भरोसा है तो हम खुद ही क्यों ना प्रोड्यूस करें। और हमने फिर, मैंने, नितिन ने और हमारे एक और पार्टनर है उमेश पवार, हम तीनों ने मिलके अपने पैसे लगाकर हमने फिल्म प्रोड्यूस की, और कुमुद जी को हमने टाइटल रोल में कास्ट किया, दिव्या दत्ता, फर्रुख सियार, और बहुत अच्छी कास्ट जमा की, आकर्ष खुराना, और बहुत कमाल एक्सपीरियंस रहा वो फिल्म बनाने का। एक ही फिल्म प्रोड्यूस की है मैंने, और आगे शायद पता नहीं कब करूँगा या करूँगा भी, यानी वो भी नहीं पता। लेकिन अगर सिर्फ जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म मैंने प्रोड्यूस की तो वो भी मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि यस, मैंने राम सिंह चार्ली प्रोड्यूस की है।
1: मैं प्रोड्यूसर हूँ।
0: मैं प्रोड्यूसर हूँ तो राम सिंह चार्ली का हूँ। एक खूबसूरत फिल्म है। और यस,
1: तो जब हम बात करते हैं आपकी नोटबुक राम सिंह चार्ली की 47 डिग्री की, तो कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल और सहज मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ी फिल्में हैं ज्यादातर, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ से आता है? ये शायद आपने अनुभव किया हुआ है, या ज्यादातर आपकी शॉर्ट फिल्म्स या कहानियां या लेखनी जो है कहीं ना कहीं इसी तर्ज पर है?
0: मे बी, शायद मैंने वही लाइफ जी है। मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूँ मैं
1: जी,
0: वही रचा बसा है।
1: हम उससे काफी रिलेट कर पाते हैं।
0: हाँ, टोटली रिलेट कर पाते हैं। और मैं, क्योंकि आप कितने भी अच्छे एक्टर हो या कितना भी कुछ भी हो, आपको काम तो वैसे ही मिलेगा जैसे आप दिखते हैं। तो मैं, मेरे ख्याल से वही मिडिल क्लास वाला, मतलब चेहरा भी वही है, आम आदमी वाला, तो वैसे किरदार भी मुझे मिलते हैं। इसीलिए फिल्मिस्तान का सनी अरोरा या तरला का नलिन दलाल या जो भी मैंने ज्यादातर किरदार निभाए हैं उस हिसाब से, जो शॉर्ट फिल्म्स में भी मैंने, अगर मेहरूनी में जो किया है,
1: मेहरूनी की बात करते हैं, हाँ, बिल्कुल,
0: तो वो सब वैसे ही है। इट्स ओनली 47 डिग्रीज में भी वैसा ही एक ट्रैफिक हवलदार का एक किरदार है।
1: जी जी जी जी।
0: तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो हम जितने अलग किस्म के किरदार निभाएं उतना अच्छा होता है, और थैंकफुली मुझे मिलते भी हैं डिफरेंट किस्म के किरदार निभाने को, बट ज्यादातर जो है वो एक, वो हाँ, मिडिल क्लास वाला, क्या
1: और दर्शकों से भी वो कहीं ना कहीं जुड़ाव
0: तो
1: आ
0: है।
1: जाता है।
0: हाँ।
1: यहाँ पर आपकी पसंद का कोई गीत?
0: ये मिडिल क्लास से मुझे याद आया, मतलब काफी, एक तो जो अमोल पालेकर साहब की जो फिल्में होती थी ना उस वक्त की, वो मुझे बहुत, खासकर छोटी सी बात मेरी बहुत ही पसंदीदा फिल्म है, और घरौंदा, घरौंदा में जो एक गाना है वो मुझे बहुत पसंद है, वो प्लीज तुम्हें हो ना हो मुझको तो
1: बिल्कुल
0: इतना यकीन,
1: वो सुनवा देते हैं, वो गीत हम जरूर सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।

0: बात तरला की जैसे आपने की, बहुत ही सपोर्टिंग हस्बैंड के रूप में वो किरदार है, तो कहीं ना कहीं निजी जिंदगी में भी काफी सपोर्टिंग रहे हैं आप कहीं ना कहीं. और जब आप एक चुनौती भरा वो फेज से गुजर रहे थे, वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, तो आपकी वाइफ जो है नसरीन जी आपके साथ रही हैं, कैसे उस दौर से आप निकले हैं? अगर आप अपने निजी कुछ अनुभव बताना चाहें तो कैसे वो आपकी सपोर्ट रही हैं?
1: वो तो मतलब जब मैं ऑडिशन देना शुरू किया था और तब अच्छी खासी एक नौकरी कर रहा था मैं, एक लाइफस्टाइल थी, अब उसको बच्चा भी हो चुका था, तो उसके हिसाब से जो है उसको मेंटेन करने के चक्कर में और साथ में दाल रोटी के लिए और स्ट्रगल भी कंटिन्यू रखना है, तो वक्त गुजरता जा रहा था, पैसे कम होते जा रहे थे, कम क्या खत्म हो गए एक पॉइंट के बाद, और जो सेविंग्स थी सारी उड़ गई, जेवर भी मैंने मतलब उनसे मांगने शुरू कर दिए और उन्होंने कभी उफ तक नहीं की, घर जो खरीदा था नौकरी के दौरान वो भी बेच दिया, बट उन्होंने एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो मतलब मेरे पैशन को और मेरे ड्रीम को और मेरे टैलेंट पर उनको काफी भरोसा था, उनको ये था कि यार कुछ ना कुछ तो इसका होने वाला है इस बंदे का, और जितना मुझे खुद पे भरोसा था शायद उससे कहीं ज्यादा उनको मेरे काम पर यकीन था, लेकिन उस वक्त जब गुजर रही थी तब मुझे पता है कि कैसे उन्होंने उसको हैंडल किया, कैसे घर मैनेज किया, कैसे मुझको हैंडल किया और कैसे हमने वो मुश्किल दौर गुजारा है साथ में, वो हम दोनों को ही पता है
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे बड़ी
1: और
0: ताकत रही हैं
1: जी हाँ,
0: आपकी.
1: वो मेरी मतलब उस वक्त की सबसे बड़ी हिम्मत, सबसे बड़ी ताकत रही हैं और उनके बगैर वो पॉसिबल ही नहीं होता, और जब मतलब चीज़ें होनी शुरू हुई अच्छी और थैंकफुली मतलब ऊपर वाले ने साथ दिया, तो फिर वो उन्होंने बोला भी कि मैंने सही घोड़े पे पैसा लगाया
0: अभी उस सीरीज की बात करते हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, द फैमिली मैन.
1: जी
0: इससे जुड़ना कैसे हुआ, और ये जेके का किरदार आपको लगा था उस वक्त कि कुछ तो कमाल कर जाएगा, मुझे लोग जेके के नाम से पुकारने लगेंगे या ज्यादा जानने लगेंगे?
1: जेके जब मतलब हुआ तब मैं जिस पॉइंट पे आया ये किरदार मेरी जिंदगी में, उस वक्त मुझे उसकी बहुत सख्त जरूरत थी, बहुत करियर मेरा एक एकदम लो पर था, बहुत डाउन था मैं फाइनेंशियली, कि फिल्मिस्तान हो चुकी थी जब तक ए जान हो चुकी थी, उसके बावजूद मैं फिर से ऑडिशन दे रहा था, फिर रिजेक्शन हो रहे थे, फिर काम नहीं मिल रहा था, एक दो फिल्में हो जाती थी और फिर मतलब लंबा एक गैप होता था, पैसे फिर ख़त्म होने लगे थे, तो वो बहुत अजीब सा मतलब दौर था, और ये और ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा सक्सेस का टेस्ट चखा था फिल्मिस्तान के ज़रिए, जब तक है जान के ज़रिए, और अब फिर से फिर ऑडिशन देना पड़ रहा था, फिर भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, फिर पैसों के बारे में सोचना पड़ रहा था कि अब कहाँ से करें क्या करें, तो वो बहुत मुश्किल टाइम था। उस वक्त मुझे एक कॉल आया मुकेश छाबरा भाई के ऑफिस से, और ये जेके जो है उस वक्त जेके नाम तो नहीं था उसका, घोष था उस कैरेक्टर का नाम, बंगाली कैरेक्टर था, तो मैंने ऑडिशन दिया वो, और जब ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल तुम न्यूट्रल उसमें ही करो, कोई बंगाली एक्सेंट की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से कर दो, बाद में हम देखते हैं, और जब ऑडिशन हुआ तो मुझे लगा कि यार आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है आपको थोड़ा पता चल जाता है कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो, और अच्छा अगर ऑडिशन होता है तो आप फिर फोन का इंतजार भी करने लगते हैं कि यार अब
0: बिल्कुल.
1: घंटी बजेगी, अब घंटी बजेगी, और हफ्ता 10 दिन लग गया और उसके बाद लेकिन फोन आया और मेरी पहले डीके साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आपका ऑडिशन तो अच्छा था लेकिन ये बंगाली में मतलब मुझे नहीं लगता है कि आप बंगाली में एज ए बंगाली फिट होंगे, नेचुरली आपको कौन सा कोई एक्सेंट या डायलेक्ट जो है आप में मतलब नेचुरली आप किस में वो कर सकते हैं, आप अपने आप को
0: कंफर्टेबल है.
1: कंफर्टेबल हैं, तो मैंने बोला मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, मराठी बोल लेता हूँ, तो उन्होंने बोला कि यार हाँ महाराष्ट्रन कर सकते हैं उसको, फिर नाम की तलाश शुरू हुई कि इसका नाम क्या होगा, घोष हट गया अब तो फिर बहुत सारे नामों के ऑप्शंस मैंने भी निकाले, तांबे और ये वो बहुत सारे मात्रे,
0: जी.
1: फाइनली फिर वो जेके जो है जेके तड़पदे नाम जो है लॉक किया गया, और फिर जब आया जब हम शूट कर रहे थे तभी भी एक इनफैक्ट ऑडिशन के वक्त ही मुझे एक इंट्यूशन हुआ था, मतलब मैं उसमें एंटर हो गया, काम मिल गया मुझे, तो लाइफ में कुछ तो एक बदलाव आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और वो इंट्यूशन मेरा बिल्कुल करेक्ट था। जैसे ही फैमिली मैन आया सीजन वन और वो OTT पर, मतलब एक अलग ही किस्म की मतलब एक्साइटमेंट आई लाइफ में मेरे।
0: बिल्कुल।
1: और लोगों ने बहुत देखा उसे और फैंस बढ़ने लगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगे सब जगह। सीजन टू आया और रिस्पॉन्स जो है वो डबल हो गया। तो वो मेरे लिए मतलब फैमिली मैन के बाद असुर आया, असुर को भी लोगों ने पसंद किया। स्कैम आया, जबकि उसमें मेरा एक सीन था, उसको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया
0: जी।
1: और फिर काम और मिलता गया, लेकिन शुरुआत उसकी फैमिली मैन से हुई। और मतलब वो मेरी जिंदगी में बहुत एक अहम जगह रखता है फैमिली मैन, और JK ने मुझे बहुत प्यार दिया है।
0: तो इसकी जो स्क्रिप्ट है, अगर फैमिली मैन की अगर हम बात करें, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज आप खुद करते हैं वहां पर, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग ऐसे सुनने को आते हैं कि ऐसा लगता है इंस्टेंट आ गया, ये तो कुछ तो अलग आ गया है। तो क्या वो सब लिखा रहता है या?
1: नहीं, लिखी भी होती है स्क्रिप्ट पूरी बाकायदा। और सुमन कुमार जो है वो हमारे जो राइटर हैं, और फर्स्ट सीजन में सुमित अरोरा ने डायलॉग्स लिखे थे, और सेकंड में सुपन और सुमन भी थे, तो वो पूरा सब कुछ लिखा होता है। और लेकिन राज एंड DK जो है ना,
0: हाँ,
1: वो कभी कट नहीं करते हैं। जब सीन खत्म हो गया जो पेपर पे था, उसके बाद भी वो कभी कट नहीं करते। और मनोज सर मतलब इम्प्रोवाइजेशन के किंग हैं एकदम। तो वो कुछ बोलते हैं तो फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर वो कुछ बोलते हैं तो मैं कुछ बोलता हूँ, और वो जब तक कोई हंसता नहीं तब तक वो कट नहीं होता।
0: मुझे लगता है उनके साथ वो केमिस्ट्री कुछ अलग ही है।
1: हाँ, और उनके साथ बहुत मजा आता है। उनके साथ आपको मतलब आपके एकदम टोस पे रहना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे एक के बाद एक मतलब कमाल के डायलॉग्स कहाँ से लेकर आते हैं। कमाल, बहुत ही मजा आता है उनके साथ काम करने में। और इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं और उसमें से कुछ जमती हैं, कुछ नहीं जमती हैं, वो तो हमारा काम है। मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ छूट मिलती है वो करने की। राजेंद्र DK बहुत हमें मतलब आजादी देते हैं, जहां पे हम कुछ ज्यादा ही करने लगते हैं तो बोलते जरा कंट्रोल। फैमिली मैन का जब शूट आता है तो मैं मतलब बहुत एक्साइटेड रहता हूँ लाइफ में। मैं मतलब एकदम आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन द सेट्स कि अरे यार आज फिर से कुछ बढ़िया सा शूट होने वाला है, आज मनोज सर के साथ शूट है, राजेंद्र DK है और मैं JK बनूंगा और मजेदार कुछ कमाल करेंगे। और हर दिन मैं उसी माइंडसेट में रहता हूँ जब भी फैमिली मैन का शूट होता है। तो अब मैं सीजन 4 का शूट जल्दी से शुरू हो उसका इंतजार कर रहा हूँ।
0: हमें भी इंतजार है बहुत बेसब्री।

0: इंतजार है हमें.
1: थैंक यू.
0: अच्छा, इन सीरीज में जहाँ पे एक्शन सीरीज होती है तो पहले कुछ वर्कशॉप होती है या फिर जैसे स्टंट्स किए जाते हैं वहां पर कैसे हेल्प होती है?
1: नहीं,
0: स्टंट्स आप
1: वर्कशॉप
0: करते हैं, कुछ एक स्टंट्स आप करते हैं या फिर
1: नहीं, जो डिफिकल्ट होते हैं तो वो हम खुद ही हाथ उठा लेते
0: उठा
1: हैं,
0: लेते
1: और वो कोई
0: हैं?
1: बोलता भी नहीं है कि
0: जी
1: आप करो. अगर
0: हाँ
1: डिफिकल्ट
0: हाँ
1: होते हैं तो वो उसके लिए जो स्टंटमैन है वो आपका पूरा वो सीन करते हैं. और जहाँ पे जो हम खुद कर सकते हैं, भागना दौड़ना थोड़ा सा पंच और वो सब होता है, तो वो वहाँ पर आप 3-4 बार प्रैक्टिस करते हैं और रिहर्सल होती है, और उसके बाद में फिर आप भी ग्रूव में आ जाते हैं, वो
0: यूज्ड टू हो जाते
1: यूज
0: हैं.
1: टू हो जाते हैं. कहीं पर थोड़ा गिरना पड़ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जैसे हैवान में था, मतलब मुझे वो टेबल पे जो है वो मतलब फेंकते हैं और उसी से लुढ़क कर मुझे नीचे गिरना था, और वहीं तो वो पूरा शॉट था, तो मैं टेबल पे गया फिर वहां से ज़मीन पे गिरा. लेकिन वो ये भी बहुत बेसिक है.
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल.
1: वो हम कर लेते हैं, बट अदरवाइज जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं वो तो स्टंटमैन ही कर सकते हैं, हमारे बस की बात भी नहीं है. मेरे तो नहीं है.
0: और हैवान में आपका किरदार अगर आप कुछ बताना चाहें किस तरह से कुछ अलग है अभी तक के किरदारों से.
1: बिल्कुल, हैवान में मेरा काफी, मैं मतलब एक नेगेटिव शेड है मेरे कैरेक्टर में, लेकिन उसमें मैं ह्यूमर भी है, मस्ती भी है, कॉमेडी भी कर रहा हूँ. दो सीन्स हैं मेरे जो काफी, जिसमें एक असरानी साहब के साथ है, एक राजपाल जी के साथ में. तो असरानी साहब के साथ तो जब शूट हो रहा था, मतलब मेरे लिए, मतलब दोनों ही मेरे बहुत पसंदीदा
0: बिल्कुल.
1: एक्टर्स हैं और उनके साथ काम करके बहुत मजा आया. असरानी जी का आखिरी सीन था वो, मेरे ख्याल से उसके बाद, उसके 10 दिन बाद उनका देहांत हुआ.
0: जी जी जी जी
1: तो मैं मतलब अब खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं हैवान का हिस्सा बन पाया, प्रियदर्शन जी के साथ काम किया,
0: जी.
1: सैफ अली खान साहब के साथ. बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा वो.
0: कोई गीत जो आप हमारे सुनने वालों को सुनवाना चाहते हैं?
1: किशोरदा का एक और काफी रेयर सॉन्ग है जो लोग कम सुनते हैं, जो कि है सैड सॉन्ग, लेकिन उसमें भी उन्होंने थोड़ा यॉडलिंग का चीज उन्होंने की है, जो आगले लग जा फिल्म से है, ना कोई दिल में समाया, वो मुझे बहुत पसंद है. अगर वो आप प्ले करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा.
0: बिल्कुल.

0: दिलचस्प बातों का सिलसिला चला है शारिफ जी के साथ, और जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का आपने नाम लिया ही है अब जुड़े हुए हैं, असुर की बात हुई, स्कैम की बात हुई, हैवान अभी आई है, द फैमिली मैन, बहुत सारी फिल्मों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के पीछे रिजेक्शन भी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो जब कभी ऐसा कुछ हुआ, उससे कैसे आपने अपने ऑडिशन के तरीके को या फिर नए प्रोजेक्ट में जब आप जाते हैं तो उस तरीके को कुछ बदलाव आया? और ये मैं इसलिए भी जानना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारे नए एस्पायरिंग एक्टर्स आना चाहते हैं, बाहर से आते हैं, फिल्मी दुनिया में कदम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है जब बार बार रिजेक्शन झेलते हैं या एक वक्त लंबा गुजर जाता है कि अब हम यहाँ टिके रहें या बस हमारे लिए ये फिल्मी सफर नहीं है। तो किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, आप अपने अनुभव से हमें बता सकते हैं?
1: उसको तो मतलब हैंडल करने के लिए आपको अपनी चमड़ी जो है थोड़ी मोटी करनी चाहिए क्योंकि बहुत इतनी बार ना सुनना ना आप पर वो असर कर सकता है बहुत गलत तरीके से। लेकिन एक ये जो ऑडिशन होता है ना, उसके पीछे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं सिलेक्ट करने के। अगर आपको वहाँ पर एक तो ऑडिशन पे बुलाया है यानी कि वो समझते हैं कि आप काबिल हैं, लेकिन उसमें आप उसमें फिट भी हो रहे हैं और दूसरे कास्ट में भी वो आप सबके साथ में मैच कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कास्ट करने से पहले, तो आपकी काबिलियत का टेस्ट नहीं हो रहा है, आप उस रोल में कितना फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं उसका टेस्ट लिया जा रहा है। तो अगर रिजेक्शन होता है तो उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए और अच्छा करने का सोच कर आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करते रहनी चाहिए, अपने हुनर को, अपने स्किल्स को, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नया नया काम लोगों का देखना चाहिए, नाटक करना चाहिए, देखने चाहिए। तो वो उससे मेरे ख्याल से जो है वो जब ये ऑडिशन वाला दौर है ना वो आपका बेहतर होगा। और टिके रहना एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, कोई टिक पाता है, कोई कभी किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे मेरी खुद की, मुझे 3 साल बाद फिर से नौकरी करनी पड़ी थी। तो अगर ऐसा भी हुआ तो ठीक है, कर लेनी चाहिए। कोई जिंदगी जो है वो सिर्फ एक काम नहीं होता है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो आपके साथ में या आपके साथ लोग हैं वो जिम्मेदारियां भी आप ही की हैं और उनको निभाना भी आपका कर्तव्य है। अगर वो है तो करिए, काम करना जरूरी है, आगे बढ़ते रहना जरूरी है। उसके लिए कभी जो है दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि मैं इसमें रिजेक्ट हो गया या मैं उसमें हो गया। काम करते रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए, मतलब किसी तरीके से आप टिके रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप गेम में जमे हुए हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे, अगर गेम में है ही नहीं तो आपको आगे कोई मौका मिलेगा ही नहीं।
0: आजकल बायोपिक का जमाना है, कोई ऐसा किरदार जो आप करना चाह रहे हैं या लुकिंग फॉरवर्ड टू, कोई खास एक दो किरदार ऐसे कि ये तो मुझे करने का मन है?
1: मैं तो मतलब वैसे मेरा डील डॉल वैसा है नहीं, ना चेहरा है ना कद है, लेकिन मेरा किशोरदा की बायोपिक तो मेरी बड़ी मतलब क्या कहते हैं इसको
0: कमाल हो जाएगा
1: बहुत। हाँ, लेकिन वो खाली वो सपना है वो तो मुझे पता है लेकिन हाँ, अगर किशोरदा की बायोपिक बने तो मैं उसमें किसी भी तौर पे किसी न किसी किरदार में उसमें रहना चाहूंगा, जुड़ना चाहूंगा। जैसे अभी आर डी बर्मन जी की लाइफ पर एक फिल्म बन रही है, मैं जरूर, काश उसमें मुझे कुछ मिले, लेकिन
0: क्या बात है, हम चाहेंगे कि जरूर आपका ये सपना पूरा हो। और बाकी जब शारिब शूटिंग नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते हैं, आपका सुकून जैसे बोलते हैं, मन का सुकून?
1: मैं घर पर रहता हूँ दोस्तों के साथ में वक्त गुजारता हूँ कि घर पे रहता हूँ, फैमिलीज जो हैं मतलब अपने दोस्त या तो घर पर बुलाता हूँ या दोस्तों के घर पर जाता हूँ और फिल्में देखता हूँ, सीरीज देखता हूँ, गाने सुनता हूँ बहुत, और अगर ज्यादा वक्त है तो फिर परिवार के साथ कहीं घूमने चला जाता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है, म्यूजिक बहुत पसंद है,
0: म्यूजिक तो हम जानते ही,
1: फिल्में बहुत पसंद है
0: जी,
1: तो मतलब टाइम तो बहुत कम है एक्चुअली
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपने अपने फिल्मी सफर के साथ साथ जिंदगी के बहुत से अनुभव साझा किए हमारे साथ और बहुत मजा आया बातचीत करके।
1: थैंक यू।
0: हम चाहेंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं ढेर सारी,
1: thank you.
0: और आप बार बार आए और हमें बार बार आपसे बातें करने का मौका मिले विविध भारती के जरिए।
1: थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मजा आया, मेरे लिए मतलब आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई एम सिटिंग हियर, और पूरा एक बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है विविध भारती के साथ में, जी मतलब आंख जिससे खुलती थी और सोने से पहले जिसको सुना करते थे, आज मैं वहां बैठा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा फिर से आएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत।

रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: विलक्षण गायक
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओ।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारत।

अभी आप सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 5 बजे आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: हाथी बने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का विचरण हमारे आसपास के वन क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है। नर दंतैल हाथियों से विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अर्चोक का बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और घुई में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये टुकुडाण, सिलफिली, कनकनगर, गणेशपुर, दलदली, मदन नगर, गोरगी, धुमाडाण, बरपटिया, ढलमेला, बटई, नरोला, धोंधा, बोंगा, दरहोरा, सेमई, करंजवार, सरहरी, परमेश्वरपुर, हरिहरपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये मेंढारी, स्याही, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा, उदयपुर और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 17 है। ये उदारी, असकला, दोरना, जरहाडी, सायर, कुदर बसवार, सुखरी भंडार, मूड़ापारा, बोड़ाझरिया, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, तपकरा और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये मयूर चूंदी, जामचुआ, लोटा पानी, सागजोर, सोनाजोरी, कोरंगामल, खारी बहार, तेलाइन, हाथीबेड़, कोल्हेन झरिया, कुदरा झरिया, साजा पानी, तीता पाकेर, बहमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, लैलूंगा, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 76 है। ये आमापाली, आमगांव, ओंगना, रुपुंगा, पोटिया, धवईडाण, कुड़ेकेला, बंगरसूता, लोटान के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला और कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये रैनखोल, केरा कछार, लबेद, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के जडगा, एतमानगर और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 54 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, सिटी पखना, फुलसर, कोरबी, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 82 है। ये जुनवानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव, सलियारी, छर्रा टांगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के सोना खान में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये फुरफुंदी, झालपानी, पठिया पाली, कोठारी, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारीपानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
2: दोस्तों, हाथियों की सूचनाओं पर रात में खेतों के आसपास या घर के बाहर ना सोएं, हाथियों से सामना हो सकता है। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
3: नमस्कार
4: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें।
5: हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
0: अभी आप सुनते प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए आपको बता दें आज की शाम प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर पश्चात यानी शाम 5:10 पर सुनिएगा नाटिका अच्छे दिन बुरे दिन, लेखक हैं कुमलेश श्रीवास्तव। युवा श्रोताओं, कार्यक्रम युवाणी आप सुन सकते हैं आज शाम 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के कारण और बचाव विश्व हृदय दिवस पर। साथ ही सुनिए क्रम चर्चा, प्लास्टिक को कहे ना, कपड़े के थैले को कहे हाँ, स्वच्छता ही सेवा। साथ ही सुनिए क्रम गैर फिल्मी गीत। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी की दिल्ली से प्रसारित करेंगे आज शाम 6:00 से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनिएगा आज शाम 6:10 पर। हमारे केंद्र से सुन सकते हैं फिल्म संगीत आज शाम 6:20 पर और शाम 7:15 पर। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रसारित करेंगे आज शाम 6:45 पर। सेवा संकल्प अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम सुनेगा विषय अटल इनोवेशन मिशन, इसका प्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 7:00 से। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण आप सुनिएगा आज शाम 7:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। हमारे केंद्र से सुनिएगा गैर फिल्मी गीत आज रात्रि 8:00 से। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं।

0: रात्रि 8:30 पर समाचार संध्या का प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। आज रात्रि 8:45 पर विविध भारती के कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाएंगे आज रात्रि 9 बजे से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आज रात्रि 10 बजे से आप सुनिएगा डेली हाईलाइट्स कैप्सूल एशियन गेम्स 2026 पर। आज रात्रि 10:20 से आप सुन सकते हैं विविध संगीत कार्यक्रम, पुराने फिल्मी गीतों कार्यक्रम यादें हम आपके लेकर आएंगे आज रात्रि 10:30 पर। तो ये थी जानकारी आज के सांधिकरण प्रसार सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों की।
1: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूम बूम में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
2: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
3: तीनों कॉलेज में
4: डोंट वरी,
3: फीस तो देखो।
5: क्या हाल है, क्या हुआ?
4: फीस की टेंशन,
5: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
6: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
5: वो कहाँ है
6: मिठाई?
7: RBI कहता है
8: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
10: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
9: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
11: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
12: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
12: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
12: आकाशवाणी से।
11: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
13: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
13: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
13: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
11: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। प्रस्तुत है नाटिका अच्छे दिन बुरे दिन।

0: नमस्ते अंकल।
1: नमस्ते, तुम कम्मो हो ना?
0: जी।
1: वाह, इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई।
0: आइए ना अंकल। बाबूजी, कानपुर वाले अंकल आए हैं।
2: ओह, आओ आओ कैलाश भैया, बड़े दिन बाद आए।
1: क्या करूं दयाल, 3 साल से इधर का दौरा ही नहीं लगा।
2: हाँ भाई, वो तो मैं समझ ही गया, वरना तुम कहाँ आने वाले हो मतलब के बिना।
0: नमस्ते भाई साहब।
1: नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप?
0: नमस्ते अंकल।
1: नमस्ते, ये तो सुन ही रहे ना।
0: जी हाँ,
1: ये भी काफी बढ़ गया है। 3 साल में सब के सब बदल गए।
2: बैठो बैठो तो भाई।
0: अरे सुनील, अंकल का सूटकेस उस कमरे में रखा। 3-4 दिन तो ठहरेंगे ना भाई साहब?
1: नहीं भाभी जी, सिर्फ 2 दिन के लिए आया हूँ।
2: तो क्या हुआ भाई, सिक लीव ले लेना, इतने दिन बाद आए हो, 4-6 दिन ठहर कर आराम से जाना, डॉक्टर का सर्टिफिकेट मैं दिलवा दूंगा।
0: अंकल चाय।
1: अरे इतनी जल्दी चाय बना लाई, बड़ी होशियार हो गई है कम्मो। वाह, बड़ी अच्छी चाय बनाई है। इतनी अच्छी चाय ना बनाया कर कम्मो।
0: क्यों अंकल?
1: अरे तेरा दूल्हा सारा दिन तुमसे चाय ही बनवाता रहेगा।
0: जाइए अंकल।
1: शर्मा गई। कौन सी क्लास में है?
0: इंटर का 2रा साल है। भाई साहब, कोई लड़का वड़का नजर में हो तो बताइएगा।
2: अरे भाई, सफर का थका मांदा होगा, नहा धो के फ्रेश तो हो लेने दो कैलाश को।

0: वाह, मजा आ गया भाभी जी, क्या लजीज तरकारी बनाई है।
1: मैंने नहीं, कम्मो ने बनाई है।
0: अच्छा, तब तो वाकई कम्मो बहुत होशियार हो गई है।
1: आइसक्रीम खाइए ना अंकल।
0: अरे, ये आइसक्रीम मंगवाने की क्या जरूरत थी भाभी जी?
2: अरे मंगवाई अंगवाई नहीं है भाई, घर की ही है।
0: घर की? अरे यानी कि घर में फ्रिज भी आ गया है।
2: आपकी दुआ से।
0: बधाई हो दयाल बाबू, बधाई हो। मैं तो दरवाजे पे खड़ा हुआ स्कूटर देखकर ही समझ गया था कि दयाल बाबू की पांचों उंगलियां आजकल घी में हैं। क्या कोई नया धंधा शुरू कर दिया भाई?
2: धंधा अंधा तो वही है भैया। हाँ, ऊपर वाले की नजर थोड़ी सीधी हो गई है।
0: हाँ चलो अच्छा है, मगर बुरा ना मनाना भाई दयाल, धंधे में तेजी मंदी लगी रहती है।
2: हाँ।
0: अब समझदारी इसी में है कि दिन अच्छे चल रहे हैं तो लगे हाथों कम्मू के हाथ पीले कर डालो।
1: वही तो मैं भी कह रही थी भाई साहब, आपकी नजर में कोई लड़का हो तो बताइए।
0: ये लीजिए, अब बताना होगा।
1: अरे हाँ, आपका लड़का उमेश भी तो जवान हो गया होगा।
0: जवान? अच्छी खासी नौकरी कर रहा है भाई। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में है।
1: अच्छा।
0: हाँ, शायद मेरे पर्स में उसकी हाली की तस्वीर भी होगी।
1: दिखाइए।
0: ये देखिए, अगर आप दोनों को पसंद हो तो।
1: ना पसंद की क्या सवाल ही नहीं उठता भाई साहब।
2: क्या कह रहे हैं?
0: तो फिर बात पक्की?
2: ना ना ना ना ना, सबसे पहले लेन देन की बात पक्की हो जानी चाहिए कैलाश, है ना?
0: अमा कैसी बात करते हो यार, मैं और लेन देन की बात, और वो भी तुमसे? छी छी छी छी छी, तुमसे कमतर सही, इतना गिरा नहीं कि तुमसे दहेज मांगूं। तुम्हें जो देना हो तो अपनी बिटिया को देना, और कुछ भी नहीं देना हो तो वो भी चलेगा।
2: बुरा मान गए तुम तो, मैं तो मजाक कर रहा था यार। बोलो, हम लोग लड़का रोकने के लिए कब आ जाएं फिर?
0: जब तुम्हारी मर्जी।
2: तो फिर इसी बात पर मुंह मीठा करो। हाँ भैया, तुम्हारी आइसक्रीम गर्म हो रही है।

0: हे भगवान, ये कौन से पापों का फल दे रहा है हमें? कम्मू के पिताजी को हमसे जुदा हुए 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में कौन सा दुख है जो हमें नहीं दिया तूने? कम्मू के पिताजी ने भरा पूरा घर छोड़ा था, पर हमें क्या मालूम था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। बेचारी कम्मू रोज सवेरे घर से निकल जाती है, नौकरी के लिए सारा दिन धूप में भटकती रहती है, और शाम ढले थकी हारी मुंह लटकाए लौट आती है। जिसे आंगन पार कराने चली थी उसी के कंधों पर सारा बोझ पड़ गया, सारा बोझ। कम्मो बेटी
1: जी।
0: बेटा दरवाजा तो खोल देना
1: जी।
0: किशोरी आया होगा, और तो कोई अब आता नहीं।
2: अम्मा, कानपुर वाले अंकल आए हैं।
0: भाई साहब, भाई साहब, मैं तो लुट गई भाई साहब, मैं लुट गई भाई साहब।
3: बहुत बुरा हुआ भाभी जी,
0: मेरा सब कुछ लुट गया।
3: बहुत बुरा हुआ, मुझे तो खबर पाते ही घश आ गया। क्या करूं, आ नहीं सकता।

0: राजल जी,
1: बैठ जाइए, बैठिए ना कम्मो बेटी,
2: जी
1: चाय बनी रखी है, अंकल के लिए ले आओ।
2: जी
0: रहने दो कम्मो, फ्रिज का ठंडा पानी ले आओ बस।
1: फ्रिज? फ्रिज तो चला गया भाई साहब।
0: कहाँ?
1: बेच दिया, 3 महीने से इसी तरह गुजारा हो रहा है। बिजनेस के लिए आपके भाई साहब ने कुछ कर्जा लिया था, कुछ तो अदा कर दिया, कुछ बाकी है।
0: उफ, अचानक क्या से क्या हो गया।
1: हम अब इस काबिल नहीं रहे कि ज्यादा कुछ कर सके, लेकिन मैं चाहती हूँ सगाई की मामूली सी रस्म हो जाती तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाती।
0: मैं समझता हूँ, लेकिन उमेश भी वैसे अभी शादी करने के मूड में नहीं है।
1: जी
0: कोई दूसरी अच्छी नौकरी तलाश कर रहा है। उसका कहना है अच्छी तरह सेटल होने के बाद ही सगाई वगैरह हो तो ठीक है।
1: आप लोगों की जैसी मर्जी, बस गरीबों का साथ ना छोड़िएगा भाई साहब, बस यही विनती है आपसे।
0: अच्छा अच्छा, मैं चलूंगा।
3: नौकरी मिल गई।
4: अच्छा?
3: हाँ माँ, बहुत बड़ी कंपनी है अम्मा।
4: सच?
3: लेकिन हरीश जी ने प्रॉमिस किया है कि 6 महीने में स्टेनो का ग्रेड दिलवा देंगे।
1: हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा हाँ? ये हरीश कौन है?
3: अरे उन्हें नहीं जानती अम्मा, अपने ही मोहल्ले में रहते हैं।
1: अच्छा?
3: उसी कंपनी में इंजीनियर है। एक दिन रास्ते में मुझे रोककर पिताजी के बारे में पूछने लगे, वही मुझे अपनी कंपनी ले गए और ये अपॉइंटमेंट लेटर दिलवा दिया।
1: चलो कोई तो काम आया, अपना ना सही पराया सही। कैलाश भाई साहब की तो कानपुर से अब चिट्ठी तक नहीं आती बेटी।

0: अरे तुम लोग टीवी देखने में मगन हो, कब से कोई दरवाजा पीट रहा है, देखो तो कौन है।
1: तुम अपने
0: कानपुर वाले अंकल आए हैं।
2: नमस्ते भाभी जी।
0: नमस्ते नमस्ते। आपने तो कमाल कर दिया भाई साहब, पूरे 2 साल के बाद आज सूरत दिखाई है, चिट्ठियों का जवाब तक नहीं दिया।
2: यकीन मानिए भाभी जी, 2 साल से दम मारने की फुर्सत नहीं मिली। दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई के दौरों पर भटकता रहा हूँ। पूरे 2 साल के बाद अब इधर का दौरा लगा है।
0: तभी तो दर्शन भी हो गए आपके, वरना आपका तो बस।
2: मैं जानता था भाभी जी की डांट औरों की तरह बढ़ेगी, मगर अब क्या कहूँ, बस माफी चाहता हूँ।
0: आइए बैठिए।
3: पहली दफे कर रहा हूँ, अगली दफे गलती नहीं करूँ।
2: तो सब टीवी देखने में मगन है। ये टीवी कब खरीदा?
0: कम्मो ने खरीदा है पिछले महीने।
2: अच्छा
0: कम्मो, बेटी चाय तो बना ला।
2: बड़ी गर्मी पड़ रही है, पहले मटके का एक गिलास ठंडा पानी पिला दो।
4: मटके का क्यों अंकल, फ्रिज का पानी नहीं पियेंगे?
2: फ्रिज? क्या फ्रिज ले लिया?
4: क्यों नहीं, आपको अपने फ्रिज की आइसक्रीम भी खिलाऊंगी।
0: आजकल कमा रही है मेरी बेटी, 2 साल में 2-2 तरक्कियां ले चुकी है।
2: अच्छा अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, उमेश के भी तरक्की हो गई है।
0: अच्छा?
2: अब प्रमोशन पर ट्रांसफर होकर यहीं आ रहा है।
0: भाई ये तो बड़ी खुशखबरी है।
2: मैं समझता हूँ भाभी जी, अब समय आ गया है कम्मो और उमेश की शादी का मुहूर्त।
4: अंकल पानी फ्रिज का है और ये आइसक्रीम, टेस्ट कीजिए ना, और शादी की बात भूल जाइए अंकल। हा? मुझे अब ये शादी नहीं करनी।
2: हा?
0: अरे अचानक क्या हो गया है इसे, कल तक तो उमेश की फोटो पर्स में लिए फिरती थी। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मैं आती हूँ। कम्मो क्या हो गया है तुझे, क्यों नहीं करनी ये शादी?
4: मेरी मर्जी,
0: लेकिन कल तक तो तू।
4: कल की बात और थी,
0: कहीं उस हरीश से तो
4: नहीं? अम्मा ऐसा सोचना भी पाप है, हरीश जी मेरे बड़े भाई के समान हैं।
0: तो फिर क्या बात है, हमें संभालने के लिए तू कब तक ऐसे बैठी रहेगी बेटी? एक दिन तो शादी करके इस घर से जाना ही होगा।
4: अम्मा मैं तुम्हें बोझ लगती हूँ तो जहर दे दो मुझे, मगर ऐसे घर में मत भेजो जो तुम्हारी बेटी को नहीं उसके दहेज को बिहाना चाहते हैं।
0: दहेज? दहेज का तो कैलाश भाई साहब ने नाम तक नहीं लिया बेटे, वो तो अपने मुंह से कुछ भी नहीं मांग रहे।
4: कुछ लोग जो शराफत का मुखौटा ओढ़े होते हैं अम्मा, वो मुंह खोलकर नहीं मांगते, आंखें फाड़ कर देखते हैं। तुमने देखा नहीं, जब हमारे अच्छे दिन थे उन्होंने शादी की बात छेड़ी थी, बुरे दिन आए तो मुंह फेर लिया, और आज हमारे घर में सब कुछ देखकर, मेरी मोटी तनख्वाह देखकर फिर शादी की बात कर रहे हैं। बदले हुए रूप में ये वही गिद्ध है अम्मा, दहेज के लोथड़ों पर नजर रखने वाले गिद्ध।
0: कम्मो
4: कम्मो, ये फोटो उन्हें वापस कर दो अम्मा, और कह दो वो अपने काम से आए हैं तो रहे, सिर्फ शादी की बात करने आए हैं तो लौट जाए।
5: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
6: प्योर एंड सेफ गरिमा ग्लिसरीन, सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
7: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात, अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुँचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
8: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
9: देश की सुरीली धड़कन
10: विविध भारती,
8: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
9: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
8: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
9: वीर सैनिकों की जय माला
8: और हंसी का हवा महल,
11: सहेली,
9: बॉम्बे टॉकीज और
12: सेल्यूलॉइड के सितारे,
9: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
13: मुझे याद सब है जरा जरा,
8: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
9: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
8: मन का सुकून, दिल की आरती,
9: सुरीली संदली।
7: FM 107.7 MHz पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए आपको बता दें आज की शाम प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर पश्चात यानी शाम 5:30 पर सुनिएगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के कारण और बचाव, विश्व हृदय दिवस पर सुनिएगा चर्चा। साथ ही सुनिए क्रम प्लास्टिक को कहना, कपड़े के थैले को कहना, स्वच्छता ही सेवा। साथ ही सुनिएगा क्रम गैर फिल्मी गीत। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे आज शाम 6 बजे से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे आज शाम 6:10 पर। हमारे केंद्र से सुनेगा फिल्म संगीत आज शाम 6:20 पर और शाम 7:15 पर। प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 6:45 पर। सेवा संकल्प अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम सुनेगा विषय अटल इनोवेशन मिशन, इसका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 7 बजे से। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का अनुप्रसारण हम आप आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से सुन सकते हैं आज रात्रि 7:30।

0: किताबों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
4: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
5: श्रोताओं, सुनते हैं सूचना। नवोदय विद्यालय में क्लास 9वीं और 11वीं लिस्ट 2027 के लिए एप्लीकेशन जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट लिस्ट 2027 के जरिए खाली सीटों को भरने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। कक्षा 9वीं 11वीं में सेशन 2027-28 के लिए एडमिशन होगा। कैंडिडेट नीचे दिए गए लिंक पर जाकर फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। कक्षा 9वीं के लिए https://cbseitms.nic.in/2026_9। कक्षा 11वीं के लिए https://cbseitms.nic.in/2026/nvsxi_11। ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख 30/9/2026 है। प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उपलब्ध है। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी। सूचना समाप्त हुई। FM 100.7 MHz पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 5:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिशा यादव और मैं स्वागत करती हूं आप सभी श्रोता साथियों का जो आज हमारे आज के युववाणी कार्यक्रम में हमसे जुड़ रहे हैं। दोस्तों, आजकल हम हर किसी की लाइफ को देखें तो हमें पता चलता है कि आज हर किसी की लाइफ काफ़ी बिजी हो चुकी है। पढ़ाई, नौकरी, काम का दबाव, देर रात तक जागना और ऊपर से फास्ट फूड और लगातार स्क्रीन पर बने रहना, इन सब के बीच हम अपनी सेहत को अक्सर पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन शरीर कब हमें संकेत दे रहा है कि अब थोड़ा रुकने और संभलने की ज़रूरत है, इस पर हमारा ध्यान कम ही जाता है। इसी वजह से आज हार्ट अटैक जैसी समस्या को सिर्फ उम्रदराज लोगों से जोड़कर देखना सही नहीं है। युवाओं में भी हृदय से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। हालांकि हर सीने का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता। हार्ट अटैक में हमारे हृदय तक खून पहुंचाने वाली नसों में जब किसी वजह से रक्त का प्रवाह अचानक रुक जाता है तो हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसी स्थिति को हार्ट अटैक कहा जाता है। धूम्रपान, हाई ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, मोटापा, शारीरिक गतिविधि की कमी और अस्वस्थ खान पान इसके जोखिम को बढ़ा सकते हैं। लगातार तनाव और नींद की कमी भी

स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। इसके अलावा अगर परिवार में किसी की स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकती है। दोस्तों, अगर हम अपनी दिनचर्या सुधारें और सावधानी बरतें तो हम खुद को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। इसके लिए हमें अपने डेली लाइफ में कुछ अच्छी आदतों को शामिल करना होगा, जैसे खाने में ज़्यादा तेल, नमक, चीनी और बार बार फास्ट फूड लेने के बजाय घर का संतुलित और पौष्टिक भोजन ले। दाल, हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और दूसरे पौष्टिक खाद्य पदार्थों को अपने भोजन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। रोज़ कुछ समय पैदल चलने, व्यायाम या अपनी किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम ज़रूर निकालें। दोस्तों, किसी भी प्रकार का नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए नशा ना करें। धूम्रपान और तंबाकू से खासकर दूरी बनाएं। धूम्रपान से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं और रक्त का थक्का जमने की संभावना बढ़ जाती है, और अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करें। दोस्तों, अपने शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज करना भी ठीक नहीं है। सीने में गंभीर बेचैनी, छाती के बीचों बीच तेज दर्द, भारीपन, अत्यधिक दबाव या जकड़न महसूस होना, ये दर्द सिर्फ छाती तक सीमित नहीं रहता बल्कि बाएं हाथ, दोनों कंधों, गर्दन, जबड़े, पीठ या पेट के ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक ठंडा पसीना आना, सांस फूलना, ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में बहुत कठिनाई होना, चक्कर आना, घबराहट, उल्टी या मतली आना। दोस्तों, हर सीने का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन ऐसे लक्षण अचानक दिखाई दें तो उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में सबसे ज़रूरी है कि समय बर्बाद किए बिना तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता ली जाए। व्यक्ति को अकेला ना छोड़ें और उसे जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएं। अगर व्यक्ति बेहोश हो जाए और सामान्य रूप से सांस ना ले रहा हो तो प्रशिक्षित व्यक्ति तुरंत CPR शुरू कर सकता है और उपलब्ध होने पर AED का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जल्दी मिलने वाली चिकित्सा सहायता बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, हार्ट अटैक की समस्या गंभीर व जानलेवा ज़रूर है, पर समय पर इलाज और सावधानी से इसे रोका और बचा जा सकता है। साथ ही अगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई समस्या है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाना भी ज़रूरी है। दोस्तों, हार्ट प्रॉब्लम के बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्रतिवर्ष 29 सितंबर यानी आज ही के दिन विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को हृदय रोगों और उनके बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करना है। प्रतिवर्ष इस दिवस की थीम होती है। इस वर्ष की थीम है डोंट मिस अ बीट। ये थीम लोगों को शुरुआती लक्षणों को पहचानने, हृदय स्वस्थ आदतें अपनाने और समय पर जाँच कराने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, अपनी बिजी लाइफ में अपने दिल के लिए भी थोड़ा टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि स्वस्थ दिल के साथ ही हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं अक्रम गैर फिल्मी गीत में हमारी पहली प्रस्तुति में फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में ये गीत। गीतकार और संगीतकार हैं ललित सेन।

0: दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की चर्चा में। दोस्तों हम सभी डेली प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करते हैं। सामान लेते समय प्लास्टिक की थैली लेना हमें इजी टू यूज लगता है, लेकिन यही छोटी सी सुविधा बाद में पर्यावरण के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता और इधर उधर फेंका गया प्लास्टिक नालियों को जाम करने के साथ साथ जमीन और आसपास के वातावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर प्लास्टिक को जलाया जाए तो उससे निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का कारण बनता है। कहीं भी फेंक देने पर मृदा प्रदूषण व नदी नाले में प्लास्टिक फेंक देने पर जल प्रदूषण का कारण बनता है। इससे जलीय जीवों को भी परेशानी हो सकती है और हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। माइक्रोप्लास्टिक हमारे बॉडी में खान पान, सांस और त्वचा के संपर्क के जरिए हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं। दोस्तों लेकिन हम प्लास्टिक के थैले का यूज़ रोक सकते हैं और इसके विकल्प में कपड़े के थैले का यूज़ कर सकते हैं। हम इस थैले का बार बार यूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकते हैं। कपड़े के थैले पर्यावरण अनुकूल होते हैं, ये किसी भी तरह से हमारी हेल्थ को हार्म नहीं करते, इसलिए हमें जितना हो सके प्लास्टिक के थैले को यूज़ ना करके कपड़े के थैले का यूज़ करना चाहिए और देश की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों चलिए सुनते हैं अक्रम गैर फिल्मी गीत में हमारी अगली प्रस्तुति में ये गीत, जिसके स्वर गीत और संगीत हैं कैलाश खैर के।
1: किलत मोहे ऐसी लागी

दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि आज पर्यावरण संरक्षण कितनी ज़रूरी है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ही भारत सरकार द्वारा मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट जैसे वैश्विक जन आंदोलन की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों की रोज़मर्रा की आदतों और व्यवहार में बदलाव लाना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में हुए COP26 जलवायु सम्मेलन में की थी और इसे आधिकारिक तौर पर 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के केवड़िया से लॉन्च किया गया था। आज की दुनिया में यूज़ एंड थ्रो वाली संस्कृति चल रही है, जिससे कचरा और प्रदूषण बढ़ रहा है। मिशन लाइफ इस सोच को बदलकर सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देता है, जहां चीज़ों को बर्बाद करने के बजाय उनका दोबारा इस्तेमाल और रिसाइकल किया जाए। ये आंदोलन लोगों को बिना सोचे समझे संसाधनों से हटाकर सोच समझ कर सही उपयोग की ओर ले जाता है। इस मिशन के तहत जो लोग अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल आदतों को अपनाते हैं, उन्हें प्रो प्लैनेट पीपल कहा जाता है। इसका लक्ष्य दुनिया भर में ऐसे लोगों का एक बड़ा नेटवर्क बनाना है जो धरती को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हो। इस मिशन के तहत 7 प्रमुख विषय रखे गए हैं, जिन पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए, जो इस प्रकार हैं: ऊर्जा बचाओ, पानी बचाओ, सिंगल यूज प्लास्टिक कम करो, कचरा कम करो, ई कचरा कम करो, टिकाऊ खाद्य प्रणालियाँ, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इसके तहत हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने के लिए कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाएं, जैसे ज़रूरत न होने पर लाइट और पंखे बंद रखना, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना,

सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग, ब्रश करते समय नल बंद रखना, बाल्टी का इस्तेमाल करना, जितना उपयोग करना है उतने ही पानी का इस्तेमाल में लाना, बारिश के पानी का संचयन, प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े के थैले का उपयोग करना, प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग कम करना, गीला और सूखा कचरा अलग अलग करना। दोस्तों, हमारे द्वारा अगर हमारी छोटी छोटी आदतों में भी सुधार लाया जाए, यही इस आंदोलन की असली ताकत होगी। जैसा कि इस मिशन का मूल मंत्र है, प्रकृति रक्षित रक्षिता, यानी अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। आइए हम सब मिलकर अपने दैनिक जीवन में प्रो प्लैनेट पीपल बनने का संकल्प लें, क्योंकि हमारी आज की छोटी सी सजगता ही आने वाली पीढ़ियों को एक हरा भरा और सुरक्षित कल दे सकती है। दोस्तों, आइए सुनते हैं क्रम गैर फिल्मी गीत में हमारी अगली प्रस्तुति में अभिजीत सावंत की आवाज़ में ये गीत। गीत के बोल हैं समीर के और धुन है हरदीप सिंधु और प्रेमपाल हंस के।

0: कॉलेज में
1: डोंट वरी
0: फीस तो देखो
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन,
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है
3: मिठाई?
4: RBI कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: भाई साहब,

दोस्तों, क्रम गैर फिल्म गीत में बस इतना ही। अब समय हो चला है कार्यक्रम समाप्ति का। अपनी रेडियो दोस्त ऋषा यादव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या।

अपने युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6 बजने को ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू रणनीतिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की ब्लू वाटर नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में इस समय बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हित में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं है।
1: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इसे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की दूसरी बैठक नई दिल्ली स्थित संसदीय सौंध में आज हुई। गृह मंत्रालय और विधि तथा न्याय मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर सदस्यों को जानकारी दी। समिति शीतकालीन सत्र 2026 के पहले सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की बात

0: कही। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से शिष्टाचार भेंट की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष बल दिया गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। आईएनएस तरकश की यह यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। जापान एशियाई खेलों में महिला 4x400 रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 4x400 पुरुष रिले स्पर्धा और इसी स्पर्धा के मिक्स्ड वर्ग में भारतीय टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रच दिया। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए आपको बता दें आज की शाम प्रसारित एवं मनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर पश्चात यानी शाम 6:10 पर सुनेगा छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। हमारे केंद्र से सुन सकते हैं फिल्म संगीत आज शाम 6:20 पर और शाम 7:15 पर। प्राथमिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे आज शाम 6:45 पर। आज शाम 7 से हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे सेवा संकल्प अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम अटल इनोवेशन मिशन पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे आज शाम 7:30 पर। हमारे केंद्र से सुनेगा गैर फिल्मी गीत आज रात्रि 8 से। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं आज रात्रि 8:30 पर और रात्रि 10:30 पर। समाचार संध्या का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे आज रात्रि 8:45 पर। विविध भारती के कार्यक्रमों का सीधा अनुप्रसारण हम आप तक पहुंचाएंगे आज रात्रि 9 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आज रात्रि 10 से सुनिएगा डेली हाइलाइट्स कैप्सूल एशियन गेम्स 2026 पर। आज रात्रि 10:20 पर हमारे केंद्र से आप सुन सकते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम। तो ये थी जानकारी आज के संध्याकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों की।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों में 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
7: देश की सुरीली धड़कन
8: विविध भारती,
6: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
7: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
6: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
7: वीर सैनिकों की जय माला
6: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
7: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
9: सखी सहेली,
7: बॉम्बे टॉकीज और
10: सेल्यूलॉइड के सितारे,
7: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
11: मुझे याद सब है जरा जरा,
6: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
7: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
6: मन का सुकून, दिल की आरती,
7: सुरीली संदली।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6:10 में है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
12: रायपुर और सरायपाली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, 6:10 हुए हैं, अब आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
13: ये आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग ललित साहू के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहिन है कि सरकार डहल ले किसान मन के फसल के उचित कीमत देवाय में काम करे जाते। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर ला प्रगति 50 योजना में शामिल करे है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर दशहरा के तहत 23 अक्टूबर के मुरिया दरबार में शामिल होही। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहिन है कि सरकार डहल ले किसान मन के फसल के उचित कीमत देवाय में काम करे जाते। एमा फसल कांटे के बाद प्रबंधन, भंडारण और बेचे के बढ़िया व्यवस्था शामिल है। श्री चौहान हां आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के दूसरी दिन कहिन की राहेर, उड़द और मसूर के न्यूनतम समर्थन कीमत MSP में खरीदे के रूपरेखा तैयार करे जाही। ओमन कहिन की किसान मल्ला 48 घंटा के भीतर भुगतान करे के व्यवस्था करे जाही। श्री चौहान ने कहिन की भारत हा अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौता ले उभरत नवा बाजार के फायदा उठाही, जेखर ले देश के कृषि फसल, फल, साग सब्जी और खाए पिए के जीनिस मल्ला बाजार मन ले जोड़े जाही। राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ले मुलाकात करीन। ए दौरान श्री चौहान हा नेताम ला छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना के तहत करीबन 182 करोड़ रुपया के दूसरिया मत के राशि ला जारी करे के जानकारी दीन। ए राशि ले राज्य में कृषि ले जुड़े कई ठीन विकास काम ला आगू बढ़ाए जाही। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कालीले यूथ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव के आयोजन करे जाते। 3 दिन के कार्यक्रम के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य भर ले आए विद्यार्थी, युवा और उद्यमिता मल्ले गोलबात करीन। ओमन कहिन की युवा मन सिर्फ रोजगार खोजैया नो है, भलुक अपन कौशल, नवाचार और उद्यमिता के जोर मा रोजगार के नवा अवसर पैदा करे। ओमन कहिन की युवा शक्ति, नवाचार और स्टार्टअप के भागीदारी ले विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प ला साकार करे बर पड़ी। मुख्यमंत्री है बतैन की राज्य सरकार हा युवा मन ला उद्यमिता के क्षेत्र मा आगू बढ़े बर मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण योजना मा काम करत है। एकर बर 500 करोड़ रूपया के प्रावधान रखे गए है। ए मौका में मुख्यमंत्री ह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में नवा बनाए गए सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूबेशन सेंटर के अवलोकन करीन। ओमन कहिन कि ये सेंटर के खुले ले प्रदेश और देश ला फायदा मिलही। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर ला प्रगति 50 में शामिल योजना में शामिल करे है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर हा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले ये योजना के शुरुआत करीन। ये कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव हा राजनांदगांव ले ऑनलाइन जुड़ीन। मुख्यमंत्री श्री साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव हा प्रगति 50 योजना में शामिल होए के सेती रायपुर और बिलासपुर नगर निगम के स्वच्छता मित्र के संगे संग शहरवासी मन ला बधाई दीन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा छत्तीसगढ़ के जनजाति लोक संस्कृति परंपरा और प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल होही। खबर के मुताबिक राष्ट्रपति हा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेता मा 23 अक्टूबर के जगदलपुर में होइया बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल होए बर उखर नेवता ला स्वीकार कर ले है। राष्ट्रपति ला मुख्यमंत्री के नेवता चिट्ठी ला केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू संस्कृति और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल के संगे संग बस्तर सांसद महेश कश्यप सौंपिन। सर्वोच्च न्यायालय है केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ला कक्षा 6वीं के एसओ विद्यार्थी मन ला कक्षा 7वीं के विद्यार्थी मन जैसन 3 भाषा नीति ले छूट देमा विचार करे के निर्देश दिन है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और वी मोहना के पीठ है केंद्र सरकार और CBSE डहाल ले उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ले कहिन कि ओमन हा कक्षा 6वीं के विद्यार्थी मन ला घलो उही छूट देवय जौन कक्षा 7वीं 8वीं और 9वीं के विद्यार्थी मन ला छूट दे जाते। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन ला आप मन हा आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
8: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
13: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कोती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है बतेन है कि राज्य में कुछ दिन पहले हुए वर्षा ले 571 गांव मन के 22,000 ले ज्यादा लोगन मन ला प्रभावित हो है। प्रभावित हुए परिवार मन ला 173 राहत शिविर के माध्यम ले राहत दे जाते। अब तक 16,000 मनखे मन ला सुरक्षित निकाले गए है। मुख्यमंत्री है अधिकारी मन ला बाढ़ ले हुए नुकसान के आकलन करके RBC 6-4 के तहत प्रभावित मन ला जल्दी ले जल्दी मुआवजा राशि दे के निर्देश दे है। श्री साय काली सुकमा और जगदलपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मन के दौरा करें। ओमन राहत शिविर मन में भोजन पानी और स्वास्थ्य सुविधा के जानकारी लेन। उन्हें मुख्यमंत्री हा प्रभावित हुए परिवार मन ला मुख्यमंत्री राहत कोष ले 10,000 रुपया के सहायता राशि दे के घोषणा घलो करें। उन्हें ओडिशा के नवरंगपुर में इंद्रावती नदी के ऊपरी हिस्सा में जल स्तर के बाढ़े ले बांध के गेट ला खोले के बाद जगदलपुर में इंद्रावती नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी देखे गए है। उन्हें बाढ़ के पानी हा खतरा के निशान ले करीबन 9.5 फीट ऊपर चलत है। बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा हा नदिया के तीर के गाँव और बस्ती में रहिया लोगन मल्ला राहत शिविर में जाए के अपील करीन है। भिलाई स्टील प्लांट ले करीबन 250 टन लोहा चोरी के मामला के जांच ला CBI डहर ले करे जाही। ए संबंध में राज्य सरकार हा अधिसूचना जारी कर दे है। ए मामला में पुलिस हा अब तक 21 झीन आरोपी मन ला गिरफ्तार करे है। खबर के मुताबिक भिलाई स्टील प्लांट ले लोहा चोरी के मामला हा आगू आए के बाद पुलिस के टीम हा अकलोरडी खदान पारा के एक ठन निजी कंपनी के परिसर ले करीबन 250 टन लोहा स्क्रैप बरामद करे रहिन। जांच में आशंका जताई गई रही कि भिलाई स्टील प्लांट ले स्क्रैप निकाले पर डस्ट ले गया गाड़ी के इस्तेमाल करे जावत रहिस। आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहाल ले सेवा संकल्प अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम प्रसारित करे जाते। यही कड़ी में आज संध्या 7 बजे ले 7:15 तक अटल इनोवेशन मिशन ऊपर भिलाई के सरकारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य संगीता सिंह बघेल और अटल टिंकरिंग लैब के प्रभारी ऋतु हांडा ले भेंट वार्ता के प्रसारण करे जाही। ए कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के जम्मू आकाशवाणी केंद्र ह एक के संग्रह रिले करही।

0: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला कबड्डी टीम के सदस्य और छत्तीसगढ़ के संजू देवी ला 51 लाख रूपये के प्रोत्साहन राशि दे के घोषणा करीन। संजू देवी हा मुख्यमंत्री निवास में श्री साय ले भेंट करीन। जापान में हो एशियन गेम के फाइनल मैच में भारत हा ईरान लहरा के स्वर्ण पदक जीते रहीन। संजू देवी हा कोरबा जिला के रहैया हरे। छत्तीसगढ़ जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल हा काली स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ले भेंट करीन और अपन मांग ऊपर चर्चा करीन। प्रतिनिधि मंडल डहा ले डॉक्टर मन के मानदेय अनुबंध राशि अनुबंधित सेवा अवधि और उच्च अध्ययन बर अनापत्ति पत्र के कामकाज ले जुड़े विषय ऊपर गोटबात करेगी। स्वास्थ्य मंत्री है कहिन कि जम्मो मांग पर समा शासन स्तर में विचार करे जाहि और उचित मांग पर नियम अनुसार फैसला ले जाहि। अब थोरकुन समाचार सार में सुन लो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अगुवाई में काली भुइयां 11:30 बजे ले मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद के बैठक रखे जाहि। जसपुर जिला में आज बिजली पोल शिफ्टिंग के दौरान करंट के चपेट में आए ले 2 मजदूर के मौत हो गए। उन्हें 5 आने मजदूर मन झुलस गए। आयकर विभाग आयकर रिटर्न दाखिल करे के आखिरी तारीख ला 21 अक्टूबर ले बढ़ा के 31 अक्टूबर ले बढ़ा के 21 नवंबर तक कर दे है। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में 5 दिन हुए भारी वर्षा के सेती 26 सितंबर के स्थगित करे गए तिमाही परीक्षा ला अब 1 अक्टूबर के करे जाहि। आखिर मास प्रमुख समाचार एक गांव फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहिन है कि सरकार डहर ले किसान मन के फसल के उचित कीमत देवाय में काम करे जाते। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर ला प्रगति 50 योजना में शामिल करे है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर दशहरा के तहत 23 अक्टूबर के मुरिया दरबार में शामिल हो ही। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: अभी आप सुन रहे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 107.7 MHz पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6:20 में आइए सुनते हैं फिल्म संगीता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए पहले हम आपको सुनवाते हैं फिल्म राम बलराम का ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। आन बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्टकार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotaraiagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम की 6:45 पर होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
7: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
7: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
8: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा।

0: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर को प्रगति 50 योजना में शामिल किया। रायपुर में आयोजित यूथ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री हुए शामिल। विद्यार्थियों, युवा नवाचारकर्ताओं और स्टार्टअप उद्यमियों से किया संवाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर दशहरा के तहत 23 अक्टूबर को होने वाले मुरिया दरबार में शामिल होंगी। और भिलाई इस्पात संयंत्र से करीब 250 टन लौह स्क्रैप चोरी के मामले की जांच सीबीआई करेगी। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर को प्रगति 50 योजना में शामिल किया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव राजनांदगांव से वर्चुअल जुड़े। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रगति 50 योजना में शामिल होने पर रायपुर और बिलासपुर नगर निगमों के स्वच्छता मित्रों और शहरवासियों को बधाई दी है। गौरतलब है कि इस योजना में देश के 50 शहरों को शामिल किया गया है। इन शहरों को केंद्र सरकार की ओर से विशेष तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन दिया जाएगा, साथ ही श्रेष्ठ कार्य पद्धतियों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। प्रगति 50 के तहत घर घर कचरा संग्रहण, कचरे का वैज्ञानिक पृथक्करण और प्रसंस्करण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाने के साथ ही सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाओं और शहरों की साफ सफाई में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कल से यूथ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस कॉन्क्लेव के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश भर से आए विद्यार्थियों, युवा नवाचारकर्ताओं और स्टार्टअप उद्यमियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि युवा केवल रोजगार तलाशने वाले नहीं है, बल्कि अपने कौशल, नवाचार और उद्यमिता के बल पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाले बने। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति, नवाचार और स्टार्टअप्स की भागीदारी से विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प साकार होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण योजना पर काम कर रही है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्री साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद प्रदेश को अब तक लगभग 8,23,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित नवनिर्मित सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इक्यूबेशन सेंटर का अवलोकन किया। उन्होंने कहा इस सेंटर के खुलने से बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के सेक्टर में प्रदेश और देश को लाभ होगा।
1: इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप 2026 कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। इंक्यूबेशन सेंटर का कल शुभारंभ हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से हुआ है और इस सेंटर के खुलने से हमारे जो स्टार्टअप हैं के लिए एक अच्छा अलग अलग नवाचार करने का ये एक जगह उपलब्ध होगा और इससे निश्चित रूप से बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमारा प्रदेश और देश को लाभ होगा।
0: केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना के तहत करीब 182 करोड़ रुपए की दूसरे मद की राशि जारी की है। यह जानकारी आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम को दी। श्री चौहान ने उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ सरकार इस राशि का उपयोग करते हुए राज्य के किसानों तक इसका लाभ पहुंचाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं और गौरवशाली विरासत के प्रतीक बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल होंगी। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निमंत्रण पर 23 अक्टूबर को जगदलपुर में आयोजित होने वाले बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल होने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री का निमंत्रण केंद्रीय राज्य मंत्री तुखन साहू, संस्कृति और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल तथा बस्तर सांसद महेश कश्यप ने सौंपा। मुरिया दरबार बस्तर की सामाजिक और सामुदायिक परंपरा की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। इसमें पारंपरिक व्यवस्था से जुड़े सामाजिक प्रमुखों और स्थानीय समुदाय के बीच संवाद की परंपरा रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र से करीब 250 टन लौह स्क्रैप चोरी के मामले की जांच सीबीआई करेगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस मामले में पुलिस अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गौरतलब है कि भिलाई इस्पात संयंत्र से लोहा चोरी का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने अकलोरडीह खदान पारा स्थित एक निजी कंपनी के परिसर से करीब 250 टन लौह स्क्रैप बरामद किया था। जांच में आशंका जताई गई कि भिलाई स्टील प्लांट से स्क्रैप निकालने के लिए फ्लू डस्ट ले जाने वाले वाहनों का इस्तेमाल किया जाता था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आकाशवाणी केंद्र रायपुर में चल रहे हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह आज आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्र थे। श्री मिश्र ने अपने उद्बोधन में आकाशवाणी द्वारा हिंदी के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया। इस अवसर पर हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और सम्मान राशि प्रदान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से परिभाषित रही है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज की इस विशेष श्रृंखला सेवा संकल्प अभियान में हम आपको स्टार्टअप इंडिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। राज्य में स्टार्टअप से जुड़ी गतिविधियों का संचालन वाणिज्य और उद्योग विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ इनोवेशन एंड स्टार्टअप प्रमोशन पॉलिसी 2025-30 के तहत नवाचार आधारित उद्यमों को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन, इंक्यूबेशन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य सिर्फ नए व्यवसाय शुरू करना नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगार तलाशने वाले से रोजगार सृजित करने वाले उद्यमी बनने के अवसर देना भी है। नीति में पात्र स्टार्टअप के लिए ब्याज सब्सिडी, पूंजी निवेश सब्सिडी और कार्यालय किराए में सहायता जैसे प्रावधान भी हैं। पेटेंट, गुणवत्ता प्रमाणन और तकनीक खरीद जैसी जरूरतों के लिए भी सहायता का प्रावधान किया गया है। इससे शुरुआती चरण में पूंजी, तकनीकी सहयोग और व्यवसाय को आगे बढ़ाने से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप का ये प्रयास अब केवल राजधानी तक सीमित नहीं है। बीजापुर से दंतेवाड़ा तक, पॉलिटेक्निक और आईटीआई से लेकर विश्वविद्यालयों तक और महिला स्व सहायता समूहों से लेकर युवा नवाचारकर्ताओं तक स्टार्टअप और उद्यमिता को स्थानीय प्रतिभा और स्थानीय संसाधन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। समाचार डेस्क, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा सेवा संकल्प अभियान के तहत विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। इसी कड़ी में आज शाम 7 बजे अटल इनोवेशन मिशन पर भिलाई स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य संगीता सिंह बघेल और इसी विद्यालय में अटल टिकरिंग लैब की प्रभारी रितु हांडा से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। जशपुर जिले में आज बिजली पोल शिफ्टिंग के दौरान करंट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य मजदूर झुलस गए हैं। पथलगांव के एसडीओपी डॉक्टर ध्रुवेश जायसवाल ने बताया कि पथलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पाकरगांव में एक पेट्रोल पंप के सामने पुराने पोल की जगह नया लोहे का पोल लगाया जा रहा था। इसी दौरान पोल 11 केवी हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिसकी चपेट में 7 मजदूर आ गए। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को कक्षा 6वीं के इस वर्ष के विद्यार्थियों को कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों की तरह 3 भाषा नीति से छूट देने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल सुबह 11:30 बजे से मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला कबड्डी टीम की सदस्य और छत्तीसगढ़ की संजू देवी को 51 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने आज रायपुर में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई विशेष ब्रेल पुस्तक दिव्यांग अधिकार और प्रेरक कहानियां का विमोचन किया। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आशीष कुमार टिकरिया को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 125 अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है। सूची में अपर कलेक्टर, उप सचिव, अवर सचिव और संयुक्त कलेक्टर शामिल हैं। और गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में बीते 3 दिनों हुई भारी बारिश के कारण 26 सितंबर को स्थगित की गई त्रैमासिक परीक्षा अब 1 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर को प्रगति 50 योजना में शामिल किया। रायपुर में आयोजित यूथ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री हुए शामिल। विद्यार्थियों, युवा नवाचारकर्ताओं और स्टार्टअप उद्यमियों से किया संवाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर दशहरा के तहत 23 अक्टूबर को होने वाले

0: मौर्य दरबार में शामिल होंगी। और भिलाई इस्पात संयंत्र से करीब 250 टन लौह स्क्रैप चोरी के मामले की जांच सीबीआई करेगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 7 बजने को आइए सुनते हैं सेवा संकल्प अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम विषय अटल इनोवेशन मिशन पर आकाशवाणी रायपुर से इस अनुप्रसारण को। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं सेवा संकल्प अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम जिसका विषय है अटल इनोवेशन मिशन। इस विषय के विशेषज्ञ हैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिलाई की प्राचार्य संगीता सिंह बघेल और अटल टिंकरिंग लैब की प्रभारी ऋतु हांडा। प्रस्तुतकर्ता प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर।
1: श्रोताओं नमस्कार, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से परिभाषित रही है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। श्रोताओं, सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला के तहत आज की कड़ी में हम बात करेंगे अटल इनोवेशन मिशन की। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर भिलाई की प्राचार्य श्रीमती संगीता सिंह बघेल और इसी स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब की प्रभारी श्रीमती ऋतु हांडा। मैडम बघेल और मैडम हांडा, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद सर।
1: जैसा अभी हम अपने परिचय में बता रहे थे कि ये हमारा जो पूरा कार्यक्रम है वो अटल इनोवेशन मिशन पर है, तो मैडम बघेल सबसे पहले हम आपसे ये प्रश्न करना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को आप आसान तरीके से बताइए कि ये जो अटल इनोवेशन मिशन है वो क्या है और इसका उद्देश्य क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता महसूस की गई?
2: जी, अटल इनोवेशन मिशन जो है ये भारत सरकार और नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है
1: जी,
2: और इसका मुख्य उद्देश्य है नवाचार और उद्यमिता, इसकी संस्कृति को विकसित करना
1: जी।
2: और शालेय स्तर पर जो एक बहुत बड़ी पहल है, जो बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, वो अटल टिंकरिंग लैब है
1: जी।
2: वर्तमान स्थिति में देखते हैं कि ये जो पाठ्य पुस्तक का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, जिस तरह की अभी स्थितियां चल रही हैं, तो बच्चों में भी यह क्षमता विकसित होनी चाहिए कि वो अपने आसपास की, अपने परिवेश की समस्याओं को जाने, समझें और कारणों को जाने कि समाधान कैसे निकल सकता है उन समस्याओं का। तो इस खोजने का जो प्रयास है
1: जी,
2: इसको जो विकसित करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है अटल टिंकरिंग लैब
1: जी।
2: और इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य सर ये है कि किस तरह से जो शाला के विद्यार्थी हैं उनमें जिज्ञासा, उनकी जो रचनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक जो सोच है
1: जी,
2: उसके साथ में हम टेक्नोलॉजी को मेल करा के
1: जी,
2: समस्या समाधान को विकसित करना
1: जी। बहुत अच्छी बात कही आपने कि बच्चों को सिर्फ एक औपचारिक पढ़ाई तक ही सीमित ना रखते हुए उनको इनोवेशन के साथ, नवाचार के साथ जोड़ा जाए। तो इसमें जो अटल टिंकरिंग लैब की अभी आपने बात की वो क्या है, और हर स्कूल में जब हम भी पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में भी प्रयोगशाला हुआ करती थी, उससे ये अटल टिंकरिंग लैब किस तरह से अलग है?
2: सब प्रयोगशाला से और सामान्य जो कक्षा में जो होता है उसमें पहले से अवधारणा रहती है
1: जी,
2: और आप एक अवधारणा को पढ़ाते हुए उनको समझाते हैं, बच्चे समझते हैं
1: जी,
2: और उनको पता होता है कि उत्तर ये है
1: जी।
2: अटल टिंकरिंग लैब में क्या है सर कि उनके पास अवधारणा के रूप में कुछ नहीं है अभी
1: जी,
2: अभी उनको ये मालूम है कि अपने परिवेश में एक समस्या है
1: जी,
2: और इस समस्या का समाधान हमें करना है। आउटकम निकलेगा एक बार में, निकलेगा बार बार प्रयास करने पर निकलेगा
1: जी।
2: तो ये ट्राई एंड एरर मेथड से वो वहां तक पहुंचते हैं। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ ये लर्निंग बाय डूइंग है।
1: आमतौर पे जो परंपरागत प्रयोगशाला होती है तो एक प्रैक्टिकल की एक बुक भी होती थी, कॉपी भी होती थी, उसमें पहले से प्रैक्टिकल किए होते थे, आपको वो करके उसके निष्कर्ष तक पहुंचना होता था, जो निष्कर्ष पहले से तय होता था।
2: बिल्कुल,
1: यहाँ पे कोई निष्कर्ष, कोई समाधान पहले से तय नहीं
2: है,
1: समस्या भी आपको खोजनी है और उसका समाधान भी आपको खोजना है। इसे मैडम ये बताइए कि आप प्राचार्य हैं स्कूल की संगीता जी, तो ये बताइए कि आपके विद्यालय में जो अटल टिंकरिंग लैब है वो किस तरह से संचालित की जा रही है और विद्यार्थी इसमें किस तरह की गतिविधियों में या प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं?
2: जी जी सर, हमारी शाला में हम कक्षा 6वीं से 8वीं यहाँ पर ही से शुरू कर देते हैं कि बच्चों को हम अटल टिंकरिंग लैब तक लाते हैं।
1: अच्छा।
2: और उनको दिखाते हैं ताकि उनमें ये जागरूकता आए कि क्या है ये
1: जी,
2: उनको नया सा ना लगे। तो जब जब कक्षा 9वीं में आते हैं तो उनका रुझान हमको पता चल चुका रहता है
1: जी, जी।
2: और हमारे पास जो अटल टिंकरिंग लैब है वहाँ पे कार्य करने के लिए फिर हम चुनाव करते हैं, जैसे जो चयनित हुए कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्राएं उनमें से फिर हम ग्रुप बनाते हैं।
1: अच्छा।
2: 4-5 बच्चों का
1: जी।
2: और वो ग्रुप जो है वो अलग अलग उनका आइडियाज क्या है, वो आइडिया बॉक्स है
1: जी।
2: वो आइडिया बॉक्स में या तो फिर जो हमारी अटल टिंकरिंग लैब की इंचार्ज मैडम है हांडा मैडम, वो उनसे साझा करते हैं अपने कि उन्होंने आज ये परिवेश में देखा। 4-5 के बच्चों का जब ग्रुप रहता है तो आइडिया एक से नहीं रहते हैं कि समाधान पे किस तरह आए, तो सबके अलग अलग विभिन्न प्रकार के उनके अंदर में जो आती हैं कि बातें इस तरह से निष्कर्ष पे आ सकते हैं। तो जब इस मुद्दे पर बात होती है तो उसके बाद में फिर वो काम करना शुरू करते हैं। अब ये प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें आती हैं सर, जैसे कि हम तकनीक का सहारा लें, स्कूल में जो उपलब्ध हमने कराए हैं रोबोटिक्स का, सेंसर, कोडिंग वगैरह, इन सब का समावेश करके वो जो बनाते हैं मॉडल या जो भी। तो उस तरह से ये मैं कहना चाहूंगी सर, ये सब डू इट योरसेल्फ।
1: अच्छा।
2: आप अपने आप करो, किट्स उपलब्ध हैं
1: जी,
2: मार्गदर्शन जो है टीचर्स का और बाकी बाहर से भी हम संसाधन जुटाते हैं जो उनसे मिलता है
1: जी।
2: तो मैं कहना चाहूंगी सर, ये एक सतत उत्तर खोजने की प्रक्रिया है, समाधान खोजने की प्रक्रिया है। हम बाहर से भी कोशिश करते हैं कि जो हमारे स्कूल से निकली हुई छात्राएं हैं जो अटल टिंकरिंग लैब में कभी काम कर रही थीं
1: जी,
2: और उसके बाद आज वो इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हम उनको भी इनवाइट करते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं। तो इससे वजह से क्या होता है कि एक पीयर लर्निंग
1: बिल्कुल
2: हो जाती है।
1: एक बात और सुना है मैडम, जैसे जो अटल टिंकरिंग लैब है उसमें जो परंपरागत तरीके होते हैं उसके अलावा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है जैसे रोबोटिक्स है, सेंसर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोडिंग है, इसमें भी जो है बच्चों को काम करने का इसमें मौका मिलता है। तो ये जो है उसमें आप क्या पाती हैं, आपका अनुभव क्या कहता है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो अटल टिंकरिंग लैब के जरिए जो उनको नई टेक्नोलॉजी से जब वो रूबरू होते हैं तो उनको सीखने और समझने के तरीके में किस तरह से बदलाव आपने देखा है इसमें?
2: आता है सर
1: जी।
2: पहले क्या होता है, जब तक वो सैद्धांतिक चीजें पढ़ते हैं
1: जी,
2: तो वो पैसिव लर्नर रहते हैं
1: जी,
2: क्योंकि वो करके नहीं देख रहे हैं
1: जी।
2: जो बहुत सारी चीजें तो हैं किताबों में जो जान रहे हैं
1: जी,
2: लेकिन जैसे ही वो अटल टिंकरिंग लैब में आते हैं और काम करते हैं तो जो उन्होंने बाहर देखा
1: जी,
2: कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं आपको बताऊं एयरपोर्ट जा रहे हैं
1: जी,
2: जैसे ही अंदर जा रहे हैं हमारे पहुंचने से पहले दरवाजा खुल रहा है
1: जी,
2: वो देखे हैं, वो कई सारी चीजें ऐसी अमूमन जो देखते हैं अपने परिवेश में। लेकिन जब वहां आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक्टिव लर्नर बनते हैं। वो जो अभी तक जान रहे थे कि विज्ञान एक चमत्कार है, लेकिन अब जो वो जान रहे हैं कि वो खुद ही जब वो सीखते बनाते समय वो जिस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं कि वो सेंसर का इस्तेमाल करके, कोडिंग का इस्तेमाल करके कई जो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनको खुद हतप्रभ रह जाते हैं कि जो चमत्कार है वो इस तरह से हुआ संभव, विज्ञान का चमत्कार इस तरह से संभव हुआ
1: जी।
2: तो इसमें मैं बोलना चाहूंगी कि ये बहुत ही बदलाव आया है, क्योंकि वैज्ञानिक सोच, तार्किक सोच जो है वो अब बहुत डेवलप हुई है
1: जी।
2: और साथ में धैर्य, क्योंकि तुरंत आपको नतीजा या निष्कर्ष नहीं मिलेगा,
1: मिलता है।
2: तो ये पूरी जो ट्रायल एंड एरर से जो सीखने का जो प्रोसेस है
1: जी,
2: इसमें उनमें जो क्षमता विकसित होती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है।
1: बहुत सुंदर बात की आपने। श्रोताओं, हमारे साथ में स्टूडियो में हैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर भिलाई में जो अटल टिंकरिंग लैब है उसकी प्रभारी श्रीमती रितु हांडा जी। मैडम हांडा, हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे क्योंकि आप सीधे अटल टिंकरिंग लैब को देखती हैं, रोजाना वहाँ पर बच्चों के साथ में आपका संवाद होता है, तो आपने क्या अपने विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए किसी ऐसे नवाचार या प्रोजेक्ट का उदाहरण बता सकती हैं जिसमें उन्होंने अपने आसपास की जो वास्तविक समस्या है उसका तकनीकी समाधान खोजने का प्रयास किया हो?
3: अटल टिंकरिंग लैब में विद्यार्थी जो कार्य करते हैं उनके पास परिवेश में बहुत सारी समस्या आती है
1: जी।
3: अभी हाल ही में हमने देखा है कि जैसे टनल्स भर जाते थे और उनके ही पेरेंट्स, बच्चे जिस जगह से आते हैं उनके पेरेंट्स जो निगम में काम करते हैं, तो देखा गया कि उनके पेरेंट्स टनल में जाके साफ कर रहे थे और उनको जहरीली गैस, जहरीली जंतु से प्रभावित होकर बीमार पड़ गए
1: जी।
3: तो उन्होंने सोचा कि यही समस्या लेकर हम क्यों ना कुछ कार्य किया जाए। तो हमने इस पे डिस्कस करके एक प्रोजेक्ट तैयार किया, अंडरग्राउंड पाइप इंस्पेक्शन एंड रोबोट क्लीनर। उन्होंने बच्चों से ही डिस्कस करके हमने चाहा कि एक ऐसा रोबोट बनाया जाए जिसमें व्यक्ति ना जाए
1: जी।
3: और रोबोट को हम भेजें जहां हम कैमरा वर्ल्ड वेब कैमरा लगाएं और जिसकी पिक्चर्स हमको मिल जाए और उस पिक्चर्स के द्वारा हम देख सकें कि अंदर कैसा कंसोलिडेशन है और उसको हम ड्रिल कर सकें या स्क्रब करके निकाल सकें। और हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया जिसपे हमको कंपनी ने इन्वाइट किया था, वहां इन बच्चों को जाने का अवसर मिला कि इस प्रोडक्ट को पेटेंट किया जाए और उसके आगे चरण में राष्ट्रपति महोदया से एक बच्ची को एट होम इनविटेशन मिला। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी राष्ट्रीय स्तर पर।
1: बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मैडम ये भी बताइए मैडम हांडा कि जैसे जो अटल टिंकरिंग लैब है वहाँ पे जैसे आप हैं वहाँ नोडल अधिकारी हैं या प्रभारी इंचार्ज हैं, इनकी क्या भूमिका होती है? और ये एक नया चीज है, परंपरागत जो प्रयोगशाला होती हैं उससे अलग हटके है, तो क्या जो इसकी इंचार्ज होती हैं उनको भी कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है?
3: जी, समय समय पर हमें प्रशिक्षण दिया जाता है
1: जी।
3: टेक्निकली हमें भी नॉलेज की आवश्यकता होती है जो बच्चों तक हम पहुंचा सके
1: जी।
3: तो बच्चों के पास जो समस्याएं होती है अपने परिवेश में, आए दिन समस्याएं होती है, उसका समस्या का समाधान टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए बच्चे किस प्रकार कर सके, जिसमें हम सहयोग करते हैं। और नोडल टीचर्स के रूप में मैं जब हूँ तो उस जिले में तो हमारे संलग्न जितनी शालाएं हैं उन्हें भी हम इन्वाइट करते हैं हमारी प्रयोगशाला में आकर, अगर उनके पास कोई समस्या है और वहाँ पर समाधान ढूंढना चाहते हैं वहाँ पर हम सहयोग करते हैं और बच्चों को भी विजिट कराया जाता है अन्य शालाओं के विद्यार्थियों को।
1: जी, एक बात और है मैडम हार्डा, क्योंकि आप दोनों ही बहुत अनुभवी शिक्षिका हैं, बच्चे कई तरह के होते हैं, कुछ बच्चे बड़े मुखर होते हैं वो अपनी चीजों को कह देते हैं, कुछ बच्चे उतने मुखर नहीं होते हैं, थोड़ा सा अंतर्मुखी होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो कौशल होता है, तो बच्चों को कैसे चयन करती हैं आप कि भाई ये अटल टिंकरिंग लैब में काम करने के लिए लायक है, उसके लिए पात्र है, ये चयन कैसे होता है?
3: अगर हम कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, किसी समस्या का समाधान ढूंढने जा रहे हैं, उसमें एक काम नहीं होता है, किसी में डिजाइन थिंकिंग होता है, किसी में क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जिस बच्चे का जिस जगह रुचि होती है उस जगह हम उनको कार्य करने देते हैं और समय समय पर उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं और समय समय पर इनके बीच प्रतियोगिताएं रखाई जाती है। तो प्रतियोगिता में शामिल होने के बाद जब उनको कुछ हासिल होता है तो उनको लगता है कि नहीं हम आगे आए और कुछ करें।
1: आपने बताया था कि एक निजी कंपनी ने भी आपको बुलाया था आपका वो प्रोजेक्ट को देखकर, तो अटल टिंकरिंग लैब सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, उसके आगे भी जो है वो चीजें बच्चों को अवसर मिलते हैं, इसके बारे में बताइए कि स्कूल से आगे की कहानी क्या होती है?
3: स्कूल 12वीं तक का उनका पढ़ के समाप्त हो गया ऐसा नहीं होता, उनको एक शुरुआत हो चुकी होती, इनिशियल स्टेज में वो समझ चुके हैं कि टेक्नोलॉजी के द्वारा हम आगे कहाँ जा सकते हैं तो आगे उनको अपने प्रोफेशन के लिए भी हेल्प मिलती है और स्वयं से कुछ नया बना सके, अपना खुद स्टार्टअप चालू कर सके, इतने काबिल बन चुके होते हैं।
1: अच्छा, देश में जैसे कई स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स होंगे तो क्या इनके बीच में आपस में भी प्रतियोगिताएं वगैरह होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं?
3: समय समय पर ये इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं तो कुछ बच्चे अपने अनुभव भी साझा दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ करते हैं।
1: अच्छा।
3: एक इंटर शेयरिंग भी होती है उनकी आपस में, तो बाहर से भी बच्चे कुछ सीख पाते हैं और अपना ज्ञान भी दूसरों को दे पाते हैं।
1: तो इसमें नेशनल लेवल के भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं क्या? मतलब जैसे मान लीजिए भिलाई का आपके स्कूल का बच्चा है तो कोई नेशनल कॉम्पिटिशन है उसमें भी वो भाग लेता है?
3: जी सर, आइडियाज डाले जाते हैं।
1: अच्छा।
3: SIM में वो उस आइडिया के सिलेक्शन के बाद स्टेप बाय स्टेप जब जाते हैं तो नेशनल लेवल पे ये बच्चे आपस में मिलते हैं और अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और अपने अनुभव को साझा करके ज्ञान वर्धन करते हैं।
1: जी, अंत में इस कार्यक्रम के जो हमारी प्रिंसिपल हैं संगीता जी, जो विद्यार्थी हैं, जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी, ये किस तरह से जो अटल टिंकरिंग लैब है वो हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो भावी पीढ़ी है, उसमें किस तरह से नवाचार, वैज्ञानिक सोच और जो उद्यमिता की जो भावना है उसको विकसित करने में कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो रही है?
2: सर, अटल टिंकरिंग लैब केवल रोबोटिक्स या कोडिंग सीखने की जगह नहीं है
1: जी।
2: सबसे पहले तो ये प्रथम चरण में जो बात आती है वो बच्चों में जिज्ञासा और जिज्ञासा से उठे हुए प्रश्न
1: जी।
2: और प्रश्न से फिर आते हैं विचार जो दिमाग में, जब विचार आते हैं तब उनको प्रेरणा मिलती कि इसका हम समाधान क्या करें, और ये प्रयोग से जब समाधान तक पहुंचने का जो ये है, ये संस्कृति को सर विकसित करना बहुत आजकल का जो सबसे सशक्त माध्यम है वो अटल टिंकरिंग लैब है। तो अभिभावक जो है विद्यार्थियों के, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चा जैसे कभी किसी परिणाम पर तुरंत नहीं आता
1: जी,
2: तो उसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए असफल हो गया
1: जी,
2: क्योंकि कभी कभी जब असफल प्रोटोटाइप जो होते हैं वो भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण लर्निंग देते हैं कि अगला इसमें क्या सुधार किया जाए
1: जी।
2: उसमें उसकी इनोवेटिव आइडिया लगी है, वो कहीं उसके एक स्टार्टअप के लिए भी एक रास्ता दिखाता है, वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे सरकार की मंशा है कि भाई जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, वो नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले
2: बने। जी बिल्कुल,
1: तो उसमें अटल टिंकरिंग लैब भी काफी भूमिका निभा रही है।
2: बहुत महत्वपूर्ण
1: जी, बहुत अच्छी बात की आपने। मैडम संगीता और मैडम रितु हांडा, मैं दोनों का ही आभार व्यक्त करता हूँ, आपने वक्त निकाला, हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो पधारे, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और ये जमीनी जानकारी है हमारे श्रोताओं तक पहुँची कि कितने अच्छे प्रयास हो रहे हैं सरकार की ओर से। एक बार पुनः आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद सर।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा कार्यक्रम अब सम्पन्न होता है, अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे हैं सेवा संकल्प अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम, विषय था अटल इनोवेशन मिशन। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीता कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवाते हैं फिल्म फूल और अंगार का ये गीत, कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी की आवाजों में। रानी मल्लिक के लिखे गीतों को संगीत से संवारा है अनु मल्लिक ने।

0: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: हाइब्रिड बीज उपलब्ध कराए जावत है।
2: हाँ समित, संगे संग सरकार हा पीएम आशा योजना के तहत किसान संगवारी मन ले।

0: राम राम मनीषा।
1: राम राम समेत संगे संग किसान वानी सुनिया जम्मो संगवारी मन लघला हमर दुनो के
0: राम राम, राम। बेरा है किसान वाणी के, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: ओ भाई मनीषा, सब बने बने।
1: हाँ समित, सब बने बने। तय सुना, कैसे चलत है खेती किसानी के काम बूता हर?
0: खेती के काम बूता तो सही चलत है। ये बार बारिश के मौसम घलो ठीक ठाक हो गया हवे, लेकिन कई बार पैसा के कमी हो जाते जेकर ले काम रुक असन जाते।
1: अरे समित, पैसा के कमी तो नहीं होना चाहिए, काबर की आज प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम ले शून्य बैलेंस में बैंक में खाता खोले जा सकते। ये योजना के शुरुआत 28 अगस्त 2014 के करे गे रहीस।
0: हाँ मनीषा, और एकर मुख्य विशेषता और लाभ के बात करे जाए तो जैसे ते अभी बतात रहे कि ये शून्य बैलेंस में खाता खोले जा सकत है, मतलब न्यूनतम राशि के कोनो आवश्यकता नहीं होए और ना कोनो जुर्माना घलो नहीं लगे। संगे संग खाता धारक ला रुपए डेबिट कार्ड मिलते जेकर माध्यम ले एटीएम ले पैसा निकाले जा सकत है।
1: हाँ समित, संगे संग बीमा कवर भी मिलते जेकर माध्यम ले दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा के लाभ मिलते। एकर अलावा 6 महीना तक खाता के संतोषजनक संचालन करबे ना तो खाता में राशि नहीं होए में भी पैसा निकाले के सुविधा मिलते। और सबले बढ़िया बात, सरकारी योजना के पैसा सीधा खाता में भेजे जाते। आज देश में 59 करोड़ ले ज्यादा खाता खुल गए हावे, जेमा 33 करोड़ हमर बहनी दीदी मन के नाम हावे। हमर छत्तीसगढ़ में हमर आंगनबाड़ी दीदी समूह के दीदी मन ये खाता ले अपन रोजगार घलो चलावत हैं। और मजा के बात बताओ समित, एक खाता ले एक हफ्ता में 1,81,00,000 खाता खुली से, जेकर गिनीज बुक में घलोक नाम लिखा गया हावे।
0: वाह मनीषा, ते तो बड़ सुघड़ जानकारी दे हवस। और देख गोद बात तो करवो हमन, अभी बेरा है हलो किसानवाणी के, जे में आज आप मन बर लेकर आए हन शीत ऋतु में फूलों की खेती अपनाएं एवं आमदनी बढ़ाएं, ये विषय में आप मन के शंका के समाधान। विशेषज्ञ है डॉक्टर भारती साव, सहायक प्राध्यापक पुष्प विज्ञान एवं लैंडस्केपिंग महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग। और आपसन गोट बात करे हावे मनीषा चंद्र वंशी है, प्रस्तुत करता है शशि प्रकाश पांडे।
1: संगवारी हो, फूल के नाम सुनतेज मन में एक अलग किस्म की खुशी और ताजगी भर जाते। फूल के रंग, खुशबू और सुंदरता हमार मन ला अपन कोती खींच लेते। कोनो फूल पूजा पाठ के काम आते तो कोनो फूल ले हमन अपन घर द्वार ला सजाथन, और कोनो फूल खुशी के मौका में अपनापन और प्यार के संदेश दे। माने हमार रोज के जिंदगी में फूल के मांग है बढ़त जाते और एकर मांग समय के संग और ज्यादा बढ़ते जाते, काबर की एकर ले हमन हा रिकिम रिकिम के जिनिस घलो बना सकथन।

0: इही पाए के किसान संगवारी मन एकर खेती करके अच्छा आमदनी घलो कमा और शीत ऋतु ला फूल के खेती बर बहुत अनुकूल समय माने जाते। शीत ऋतु में फूलों की खेती अपनाए एवं अपनी आमदनी बढ़ाए ये विषय ला संबंधित संगवारी मन के समस्या के समाधान संग ए विषय में विस्तार ले जानकारी दे खातिर आज हमार स्टूडियो में आए हवे विशेषज्ञ डॉक्टर भारती साव, सहायक प्राध्यापक पुष्प विज्ञान एवं लैंडस्केपिंग महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग। सबले पहले डॉक्टर साहिबा मैम, आप मन के हमार कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम।
1: राम राम मैडम।
0: मैडम सबले पहले आप बताते हो ये शीत ऋतु में कौन कौन से फूल के खेती हमन कर सकथन और एकर तैयारी हमन कबले चालू कर सकथन?
1: मैडम शीत ऋतु जो होता है ये त्योहारों और शादियों का सीजन होता है, तो इस सीजन में अगर हम फूलों की खेती करते हैं तो हमारे जो किसान भाई हैं वो अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। तो इस सीजन के हिसाब से हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो क्लाइमेट है तो उसमें गेंदा, गुलदाउदी, चाइना एस्टर, ग्लैडियोलस, कैलेंडुला, साल्विया, पिटूनिया, इन जैसे सीजनल फूलों को हम लगा सकते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे पुष्प हैं जो कमर्शियली लोग नहीं लगाते लेकिन नर्सरी में लगाकर उसको वो सेल करते हैं, जिससे कि जो हमारे तो छोटे छोटे जो पौधे मिलते हैं नर्सरी में, तो वो वैसे पौधों की नर्सरी लगाकर भी किसान भाई बेच सकते हैं।
0: हेलो हेलो किसान वानी।
2: हेलो।
0: राम राम भैया, आप मन कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
2: राम राम दीदी, मैं लखनपुर समरभय से बोला था, दानी राम चंद्रवंशी दीदी।
0: जी भैया, आज के विषय ले संबंधित आप मन के का समस्या है?
2: ये शीतकालीन बर फूल के खेती करे बर लगाए हमारे दीदी, और गेंदा के फूल की कोई बीजा कहाँ से मिलही, एकरे बर बीज बर लगाओ के सोचा था दीदी बर।
0: हाँ जी, आप मन के समस्या के समाधान हमार विशेषज्ञ जी करते हैं।
1: जी भैया, आपका जो बीज का समस्या है तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं से भी बीज ले आते हैं या आप दुकान में जाते हैं, हमको गेंदा लगाना है, हमको बीज दे दीजिए, तो आप वो बीज ना लें। अब पहले आप जब बीज ले रहे हैं तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको किस पर्पस पे चाहिए। जैसे आपको जल्दी फूल लाना है तो जल्दी फूल लाना है तो आप जो है हाइब्रिड बीजों का उपयोग करिए। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक फसल लेना है तो हमारी जो देसी किस्में हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम गेंदा की बात करें तो पूसा बसंती गेंदा हो गया, हाँ, तो ये जो है ये हमारी देसी किस्में हैं, तो ये किस्म जो है ये लंबे समय तक टिकती है, तो आपको लंबे समय तक अगर फूल लेना है तो इसका उपयोग करेंगे। और जो हाइब्रिड है जैसे इनका येल्लो हो गया, इनका ऑरेंज हो गया, वनीला हो गया, ये जो बीज है ये आपका शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कम अवधि वाली फसल होती है लेकिन इसमें उत्पादन ज़्यादा होता है आपका देसी किस्मों की अपेक्षा। तो ये बीज आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये बीज जो भी जो सर्टिफाइड सीड केंद्र होते हैं या कृषि केंद्र हो गए वहाँ से आप अब बीज ले सकते हैं बीज, या तो फिर आप सीधे के सीधे आप रोपण के लिए वहाँ पौधे तैयार किए जाते हैं वो पौधे ले सकते हैं।
2: ये पूसा बासंती और चेन्नईनी गोंदा के दो ठन बीज लेना है दीदी, देसी किस्म के?
1: जी जी जी, तो आप अपने आसपास जो भी सरकारी नर्सरी होगी वहाँ पे आप पता कर सकते हैं। अगर उनके पास उनको नहीं भी पता होगा तो वो उनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ये बीज आपको कहाँ मिल सकता है या फिर ये पौधे आपको कहाँ मिल सकते हैं।
2: बहुत धन्यवाद दीदी।
1: जी, जी।
0: फोन करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राम राम।
2: राम राम। राम राम।
0: हेलो हेलो किसान वानी, कौन बोला था भैया, कहाँ ले बोला था?
3: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
3: मैं संजारी नवा गाँव से बोला था, विष्णु प्रसाद साहू। शीतकालीन पुष्प के बारे में, फूल के बारे में पूछना रही से, कौन कौन सी किस्म शीतकाल में लगाया जा सकत है?
0: अच्छा जी जी, आप मनला जानकारी हमार विशेषज्ञ जी।
1: जी नमस्कार भैया, आप मनला जानकारी चाहिए कि कौन कौन अपन ये शीतकालीन में फसल लगा सकत हो? तो अभी जो है सबसे पहली कोई भी फसल लगाए से पहले भैया आप मन पहली बाजार के मांग देखो कि बाजार में कौन फूल के कब मांग है आपके आसपास, मतलब जहां आप मतलब बेचना है वहां जा, मतलब थोड़े पता करो और थोड़े देखो कि भाई कौन फूल के मांग है। और मोर थोड़े से सुझाव है कि इकट्ठा बड़े रूप में चालू ना करके पहले आप छोटे रूप में चालू करो। तो हमार अगर छत्तीसगढ़ के जो वातावरण है वो हिसाब से अगर हमन देखबो तो हमन गेंदा होगी, गुलदाउदी, चाइना एस्टर हो गए, ग्लैडियोलस हो गए, कैलेंडुला, ये सब के हमन खेती आसानी से यहाँ कर सकत हन। एकर मांग है स्पेशली जहाँ मंदिर के आसपास होगे, हाँ, या तो अगर आप मन के संपर्क है तो आप मन कोऑपरेटिव मतलब

0: चार छह जी किसान मिलके आपस में थोड़े जो है सोसाइटी टाइप के बना के एक साथ खेती करके बाहर भी भेज सकत हो। तो ये जो फूल मन है जैसे गेंदा के अलग अलग वैरायटी थे, जैसे पूसा बसंती गेंदा हो गए, गुलदाउदी के भी दो टाइप के किस्म थे, एक ठी किस्म जो थे तेहर ओला लूज फ्लावर का थे, एक ठी किस्म थे तेला हमन जो है कट फ्लावर का थे। कट फ्लावर है बुके बनाए के काम आते, लूज फ्लावर है माला बनाए के काम आते। तो दोनों टाइप के गुलदाउदी हमन लगा सकत हन। चाइना एस्टर भी हो गए, चाइना एस्टर भी माला बनाए के काम आते, ओला भी हमन लगा सकत हन। ग्लैडियोलस हर जो है बुके बनाए के काम आते। तो ये सब फूल हमन छत्तीसगढ़ के वातावरण के हिसाब से आराम से लगा सकत हन।
1: धन्यवाद मैडम जानकारी के लिए।
2: धन्यवाद भैया फोन करे खातिर आप मन के। हेलो हेलो किसान वाणी।
3: हाँ दीदी राम राम, मैं भगत राम पटेल बोला था, सिंगारवाड़ी घुटको बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले।
2: हाँ जी भैया, आज के विषय से संबंधित आप मन के का समस्या है?
3: हाँ हम आज जानना चाहते रहे दीदी कि जिसे हमको पता है कि फूल के खेती में सही समय में कर तो कर जिन लागत थे और मेहनत जिन्हें आ जाते, लेकिन कभू कभू जिन हमारे कमाई है वो कोई कारण बस पिछड़ जाते, ऐसा स्थिति में हमला जिन खातू माटा की मात्रा और कौन कौन सी बीमारी ज्यादा परेशान कर सके थे, एक बारे में जानना चाहते रहे दीदी, जेखर से हम अपन अच्छा फूल की खेती कर सके।
2: जी भैया, आप मन के समस्या के समाधान हमारे विशेषज्ञ जी कर रहे।
0: जी भैया, जैसे आपने बताया कि हम लोग जो है खेती तो कर लेते हैं, लेकिन खेती करने के बाद में कई परेशानियां आती हैं जिससे कि हमें नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए सबसे पहले जब भी आप खेती करते हैं तो आपकी जो भूमि है, जो मृदा है, उसकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप भुरभुरी मृदा उपयोग करेंगे, अच्छे से उसको भुरभुरा बनाएंगे, और हमेशा जो भी खाद हम उपयोग करेंगे, गोबर खाद हो गया, वो अच्छे से सड़ा हुआ होना चाहिए। अगर सड़ा हुआ खाद आप उपयोग नहीं करोगे तो दीमक लगने का जो परेशानी है वो आ सकता है, दीमक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। अब इसके अलावा जो खाद की बात, आपने फर्टिलाइज़र की बात की कि हम कब और कैसे दें, तो संतुलित आहार, जैसे हम बोलते हैं कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, वैसे ही मृदा को भी संतुलित भोजन जो पोषक तत्व के रूप में हम देते हैं वो देना है। मृदा का जब आप परीक्षण कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। उस पोषक तत्व की कमी के बारे में जब हमको पता चलेगा, फिर क्या रहता है, जो भी हम फसल लगाते हैं उस फसल का एक रिकमेंडेड डोज होता है, जो आप अपने आसपास के कृषि केंद्रों में पूछ सकते हैं कि मैं ये फसल लगाना चाहता हूँ, इसमें कितना कितना नाइट्रोजन डालना है, कितना फास्फोरस, कितना पोटास, तो वो पूरा आपको कैलकुलेट करके दे देंगे कि इतना यूरिया डालो, इतना MOP डालो। हाँ, उस हिसाब से फिर जब आपको पता चल जाएगा कि इतना पहले से मिट्टी में है, तो हम जबरदस्ती का हम क्या करते हैं, हमको पता नहीं रहता, डालना है तो डालना है, हर 15 दिन में 20 दिन में हम डाल रहे हैं, तो इससे हमारा आर्थिक हानि भी होता है और मृदा की उर्वरा शक्ति भी नष्ट होती है। तो जब हमें पता रहेगा कि हमको कितना डालना है, तो उस हिसाब से हम उसमें बैलेंसली डालेंगे ताकि आपका जो है उसको बैलेंस डाइट मिले, जो है आपका बैलेंस बना रहे मृदा में, जो है फर्टिलिटी, जो उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहे। अब रही बात कीट व्याधियों की, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो फूलों में आता है वो आता है आपका एफिड आता है, थ्रिप्स आता है, सफ़ेद मक्खी आती है, मकड़ी आती है, हाँ फफूंद जनित रोग आते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, कम से कम 10 से 15 दिन में हर बार जा के बार बार खेत की निगरानी करनी है। मतलब आप जाके देखते रहेंगे कि नमी ज़्यादा तो नहीं है, नमी ज़्यादा रहने से क्या होता है, उसका जड़ जो है वो गलने लगता है या फफूंद वहाँ पे पैदा होने लगते हैं, जिससे कि फफूंद जनित रोग होता है, कीटों के आक्रमण से क्या पत्तियों में छेद होने लगता है। हाँ, आपका कई कीट ऐसे जो रस चूस लेते हैं, तो रस चूस लेने से उसमें जो कलियाँ लगती हैं वो काली हो जाती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं। अगर इस टाइप का आपको संकेत दिख रहा है किसी भी पौधे में, तो हमको तुरंत समझ जाना है कि अब इसका इलाज करना है। जो हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो यही चीज हमको यहाँ पे भी रखना है। अगर हम समय समय पे निगरानी करते रहेंगे और हमें थोड़ा सा भी लक्षण दिख रहा है तो हम तुरंत इलाज कर सकते हैं। हम जाके अपने आसपास के कृषि केंद्रों में या फिर जहाँ पे कृषि संबंधित दवाइयाँ मिलती वहाँ पे जाके वो सिम्टम को हम बताएंगे, तो उससे रिलेटेड आपको दवाइयाँ मिलेगी। तो आप 15-15 दिन या 20-20 दिन के इंटरवल में जैसा वो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आप पहले से स्प्रे करेंगे, तो आपको कीट और बीमारियों की परेशानी नहीं आएगी।
2: हेलो हेलो किसान वाणी, कौन बोलत हो, कहाँ ले बोलत हो?
4: राजेंद्र कुमार दामले गुठियात से दीदी, सिरमुंदा ले।
2: राम राम भैया
4: जी। दीदी जी नमस्ते, धन्यवाद दीदी जी। तो अब ये बस शीत ऋतु के आगमन हो थे दीदी जी, तो अपन बता देते हो कि शीत ऋतु में फूल के खेती करते हैं तो दो चार पैसा घला आ जाती, तो कैसे टाइप से करें और कैसे टाइप से अपन आमदनी बढ़ाने से, कैसे? बहुत अच्छा है दीदी जी, तो विषय के अनुसार बताते हो कि फूल के हम मन अउ का उपयोग कर सकथन, ओकर से कुछ अपन तो फूल चढ़ाए बा कहीं पर काम आते, लेकिन ओकर से कुछ और सामान बनते का तो और आमदनी बढ़ाते नहीं से बता दे रहते हो।
0: जैसे आपने पूछा कि फूलों को हम ठोस रूप में तो बेचते ही हैं, इसके अलावा हम उसमें से और कैसे अपना जो है ज्यादा से ज्यादा इनकम कमा सकते हैं? तो अब देखिए, जैसे आप बाजार में जाएंगे, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो आप देखे होंगे वरमाला कितनी महंगी आती है, का जो रहता है 3,000-4,000 तो उसका कम से कम उसका प्राइस है। हाँ, जैसे जैसे फूल अलग अलग प्रकार के फूल उसमें बढ़ते जाते हैं, जो थोड़े से हमारे यहाँ पे हफ्ते उस टाइप के फूल बढ़ते जाते हैं, उनकी मांग बढ़ती जाती है, मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ लाख का एक एक जयमाला मिलता है। तो हम जो है ठीक है, अगर हम उतना भी नहीं, हमारे बाजार मूल्य के हिसाब से, हमारी बाजार मांग के हिसाब से हम जो है माला तैयार कर सकते हैं। माला तैयार करने के बाद में बुके, आजकल हर प्रोग्राम में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, अलग अलग संस्थानों में कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है, बुके की मांग बहुत ज़्यादा है। तो आप जो है बुके बना के, जैसे हम गुलाब की बात करें, एक गुलाब आप बाजार में खरीदने जाओगे 10 रुपए का आता है, उस गुलाब को कुछ पत्तियों के साथ 6 गुलाब को अगर आप सजा के बेच दिए तो वही जो है 300 से 400 रुपए का बुके मिलता है। तो आपको 50 रुपए से 400 रुपए का फायदा हो गया। तो इस तरीके से आप बुके बना के बेच सकते हैं। दूसरा, आजकल आपने सुना होगा रेजिन, लोग जो है रेजिन एक प्रकार का गोंद होता है जो कि सूखने से वो पूरे तरीके से ड्राई हो जाता है, मतलब एकदम कांच के जैसा दिखता है। तो उसमें जो है फूलों को सुखाकर, अलग अलग तरीके से सुखाते हैं, अलग अलग बहुत सारी विधियां होती हैं, उन विधियों से सुखाकर उस फूलों का उपयोग करके सुंदर सुंदर ईयर रिंग बनाया जा रहा है, सुंदर सुंदर नेकलेस बनाए जा रहे हैं। और आजकल एक और बिजनेस है जो बहुत पॉपुलर चल रहा है, क्राफ्ट आइटम चलता है, जो लोग अपनी शादियों को यादगार बनाने के लिए जयमाला को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो उस जयमाला को सुखा कर वो जो है इस रेजिन में प्रिजर्व करके रखते हैं, तो ये इसका कॉस्ट ही इतना महंगा होता है, एक एक प्रिजर्वेशन का आपका 20,000-25,000 रुपए का कॉस्ट होता है, और उसमें आपको कुछ नहीं, बस रेजिन का कॉस्ट लगेगा, बाकी सब आपका जो जयमाला वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो ये इस टाइप के छोटे छोटे बिजनेस, छोटी छोटी चीज़ें जो है आप एक लघु उद्योग के रूप में शुरू कर सकते हो, आपको इसमें कोई खर्चा नहीं है, आप घर बैठे ऑर्डर ले सकते हो, बस आपको प्रचार प्रसार करने के लिए आजकल इतने सोशल मीडिया ऐप हो गए, उसमें आप अपना प्रचार प्रसार कर सकते हो, आप घर बैठे ऑर्डर ले सकते हो, उसको डिलीवर कर सकते हो। तो धीरे धीरे ये चीजें आपकी बड़ी व्यवसायिक रूप ले सकती हैं।
4: तो मैडम जी, एकर बार शासन का अनुदान गलत देती फूल की खेती करेगा?
0: जी हाँ, फूल की खेती के लिए अभी अनुदान है शासन के पास में। अब बाकी ये प्रिजर्वेशन वाला जो ये मैंने बताया आपको कि ये जो हम कर सकते हैं, तो इसमें महिलाओं को और जो यंग लोग होते हैं उनको अपना नया, जैसे वो लोग प्रोजेक्ट जो है बनाते हैं, तो अलग अलग संस्था होती है इसकी, तो उसमें ये प्रोजेक्ट लेके जाएंगे तो उनको 4 लाख-5 लाख इस टाइप का छोटी छोटी राशि का अनुदान भी मिलता है, जिससे कि वो अपना छोटा इंडस्ट्री डेवलप कर सके और बाद में भविष्य में और 4-5 लोगों के साथ मिलकर धीरे धीरे उसको बढ़ा सके।
4: तो एकर अपन अनुदान कृषि विभाग से संपर्क करना पड़ते हैं या उद्यानिकी विभाग से?
0: आप उद्यानिकी विभाग में जाएंगे तो वहाँ पे जो जो आपका स्कीम चल रहा है उसकी जानकारी आपको वो लोग दे देंगे, फिर वो आपको पता चलेगा कि उसका कैसे फॉर्म आता है, कब आता है। हर बार नहीं आता और हर जिले के लिए अलग अलग रहता है, जैसे इस बार दुर्ग जिला में कुछ है तो रायपुर जिला में दूसरा कुछ चल रहा है स्कीम, ऐसे अलग अलग जिला वाइज उनको टारगेट मिला रहता है कि भाई ये काम करवाना है, तो उस हिसाब से अगर आपके जिला में नहीं मिल रहा है तो आप पता कर सकते हो कि कहाँ मिल रहा है और किस संस्था के द्वारा मिल रहा है, तो आप उस संस्था में भी डायरेक्ट जा सकते हो, या आप अपने आसपास जो भी हॉर्टिकल्चर के जो यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आप वहाँ जाके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
4: जानकारी दी मैडम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में आकाश ने रायपुर को भी तहे दिल से हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद।
2: हेलो हेलो किसान वाणी।
5: राम राम दीदी।
2: राम राम, आप मन कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
5: मैं कमलकांत मरावी लोरमी ग्राम चचड़ी ले बोला था दीदी।
2: हाँ जी।
5: हाँ, मोला जानकारी लेना रही से कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से फूल के खेती हो सकत है और कहाँ अधिक लाभ आमदनी हो सकत है, खर बारे में जानकारी लेना रही से, और जगह कम है छत में फूल के खेती कर सकथन के नहीं, खर बारे में बताए रहते।
2: अच्छा, मतलब कम रकबा में भी आप मतलब ज्यादा उत्पादन वाले तरीका?
5: हाँ
2: जी जी, आप मन के समस्या के समाधान हमारे विशेषज्ञ जी।
0: जी भैया, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम छत्तीसगढ़ का जो हमारा वातावरण है उसके हिसाब से अगर हम जाएंगे तो हम यहाँ पे गेंदे की खेती, गुलदाउदी की खेती, चाइना एस्टर हो गया, ग्लैडियोलस हो गया, गुलाब हो गया, इन सब की खेती कर सकते हैं। लेकिन आपका जो मुख्य प्रश्न है कि आपके पास छोटी जमीन है और आप छत पे खेती करना चाहते हैं, तो आजकल छत की जो बागवानी है ये बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा चलन में आ गई है। स्पेशली जो सिटी एरिया है जहाँ पे लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो वो बालकनी में खेती करना चाहते हैं, जहाँ पे लोगों का खुद का जमीन आंगन नहीं है, खुद का बांसबाड़ी नहीं है तो वो भी खेती करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास छत है और आप छत की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप जब घर बनाएंगे स्टार्टिंग से ही अगर आपके दिमाग में है कि मेरे को छत में खेती करना है तो बढ़िया बीम वाला घर बनवाइए। बीम स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तो वो क्या रहेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा भार बर्दाश्त कर पाएगा। और दूसरा इसमें ख्याल रखने वाली बात यह है कि हमको वाटर प्रूफिंग कराना है। अगर आपका वाटर प्रूफिंग नहीं होगा तो आपके घर में सीपेज आएगा, सीपेज की परेशानी होगी, तो वाटर प्रूफिंग कराना। वाटर प्रूफिंग करने के बाद में इसमें जो है अलग अलग टाइप के लेयर्स आते हैं, मार्केट में अवेलेबल होता है, जैसे एक पॉलीथीन शीट टाइप की आती है जो आपके नमी को नीचे जाने नहीं देती और पानी को भी रोक के रखती है। हाँ, तो इस तरीके का जो पॉलीथीन शीट्स आता है तो वो हम अगर पूरे छत में कर रहे हैं तो मैंने बताया जो छत में हमको वो वाटरप्रूफ पॉलीथीन शीट बिछानी है। उसके बाद आपको किस टाइप के फूल को लगाना है, उसके जो जड़ की ग्रोथ कितनी होती है, उस हिसाब से हमको जो है मृदा का हाइट मेंटेन करना है। जैसे जिसकी जड़ थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है तो उसके लिए उस तरीके का हमको उतना मिट्टी डालना है, जिसकी जड़ उथली जड़ वाली होती है तो उसके लिए उस तरीके से मिट्टी डालना है। तो छत पे खेती करने के लिए आप या तो छोटे छत में ईंटों का छोटा छोटा ब्लॉक बना सकते हैं, या तो फिर आजकल बहुत सारे अलग अलग टाइप के पॉलीथीन के कंटेनर्स आते हैं, पॉली बैग्स आते हैं अलग अलग साइज़ के, उसमें मिट्टी भर के उसमें लगा सकते हैं। और आप जो है छत में आप सुंदरता पर्पस पे लगा रहे हैं या आप व्यावसायिक पर्पस पे लगा रहे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप सुंदरता पर्पस पे लगा रहे हैं तो आप लॉन भी लगा सकते हैं, उसमें आप छोटे छोटे बहुत सारे जो सीजनल फ्लावर्स आते हैं जैसे पिटूनिया हो गया, साल्विया हो गया, इन सब की हम खेती कर सकते हैं, उसमें आप गेंदा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप व्यावसायिक पर्पस पे लगा रहे हैं तो व्यावसायिक के लिए जो आप जो गेंदा लगाइए, चाइना एस्टर लगाइए, क्राइसेंथेमम लगाइए, सभी की खेती पॉसिबल है छत में, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। बस हमको जो है मृदा का ख्याल रखना है कि उसका जो जड़ जो है वो कितने अंदर तक जा रहा है, उस हिसाब से हमको जो है मृदा का डेंसिटी या फिर मृदा की ऊंचाई उतनी हमको रखनी है। बाकी उसका जो रख रखाव रहता है, जैसे हम जमीन में लगाते हैं सेम वैसे ही रख रखाव होता है, कोई स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती है।
6: जी मैडम जी,
2: फोन करे खातिर धन्यवाद भैया,
6: जानकारी बताया पर बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
2: मैडम आप ये बताते हो कि संगवारी मन अगर फूल के खेती करना चाहते तो का एकर प्रशिक्षण लेना आवश्यक है, और ए मन प्रशिक्षण
0: कैसे प्रशिक्षण लेना आवश्यक है नहीं आवश्यक है ये डिपेंड कर रहा है कि कौन इंसान खेती कर रहा है। जैसे जो पहले से खेती करते आ रहे हैं जो किसान है, अब उनको खेती की बारीकियां पता है, बस उनको ये ध्यान देना है कि हम जो फूल लगा रहे हैं हाँ उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें कब पानी देना है, कब खाद देना है, उसकी निराई गुड़ाई कब करना है, उसमें और क्या क्या ऐसी तकनीकी करनी है जिसकी वजह से फूलों के जो उत्पादन में वृद्धि हो सके, ये है। और दूसरा कोई नया व्यक्ति है, कोई शौकिया तौर पे खेती करना चाहता है या पहली बार खेती करना चाहता है जो पहले कभी नहीं किया है, जैसे आपको मैं आजकल बताना चाहूँगी कई मैंने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े हैं खेती से नहीं जुड़े हैं, वो लोग प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो प्रशिक्षण लेने के लिए जो आपके एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस होते हैं या हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपना बहुत अलग अलग प्रशिक्षण का अलग अलग वर्कशॉप 15 दिन की 21 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम चलती है, तो वहाँ पे ये लोग पता कर सकते हैं अपने आसपास में जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जाकर कि भाई हमको इस चीज़ की खेती करनी है तो हमको इसके बारे में ट्रेनिंग लेना है। तो अगर उनका वो वर्कशॉप वो ट्रेनिंग नहीं भी चल रहा है तो वो आपको एडिशनल गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको वो ट्रेनिंग कहाँ पे मिलेगी या आप किस तरीके से उस काम को कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी खेती को आगे बढ़ाएं और उससे उपज ले सकें। जो नए नए जो किसान हैं या फिर नए लोग हैं जो फूल की खेती करना चाहते हैं तो उनको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसे सबसे पहला, बिना बाजार की जानकारी के आप फूल की खेती ना करें। सबसे पहले आपको बाजार की जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमेशा बीज या पौधा जो भी उपयोग करें वो अच्छी गुणवत्ता वाला उपयोग करें और सर्टिफाइड संस्थान से ही बीज और रोपण सामग्री लें। तीसरा, खेत में जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो खेत में कभी भी पानी जमा होने ना दें, पानी की निकासी की उत्तम व्यवस्था हो ताकि आपका जो खेत है उसमें आपका पौधा सही से ग्रो कर सके। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि जो बैलेंस डाइट की हम बात कर रहे थे, हाँ, तो सबसे पहले जो है आवश्यकता के अनुसार ही आप उर्वरक और पानी दें। अगर आप अधिक पानी देंगे या कम पानी देंगे तो भी आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। उर्वरक भी वैसी है, हमको लगता है कि हम जितना ज़्यादा देंगे उतना उत्पादन होगा, ऐसा नहीं होता है। आपका उससे इकोनॉमिक लॉस ही है। पौधे को, आपको जितनी भूख लगती है आप उतना ही खाना खाते हैं, वैसे ही पौधे की जितनी नीड है वो उतना ही अवशोषित करेगा, इसीलिए बैलेंस्ड उर्वरक देना भी आवश्यक है। पांचवी बात जो मैं बताना चाहूँगी, कीट और रोग की समस्या, कोई भी फसल हो उसमें कीट और रोग की समस्या आती है तो इसको नज़रअंदाज ना करें। आप समय समय पर जो है निगरानी करते रहें, और आप पहले से थोड़ा सा भी आपको दिख रहा है सिम्टम तो आप पहले से प्रिकॉशन लेना चालू करें। और अंत में जो बोलना चाहूँगी, इसकी तुड़ाई, तुड़ाई का जो मैंने बताया था कि हर फूल का तुड़ाई का जो है एक अलग समय होता है। जैसे अगर हम बाजार के हिसाब से फूलों की किस्म के हिसाब से तुड़ाई होती है, अगर आपको दूर बाजार में लेके जाना है तो हम तो पूरी तरीके से ना खिला हो, थोड़ा हल्का खिला हो, ऐसे गेंदे का उपयोग कर गेंदे को तोड़ेंगे। और अगर आपको पास के मार्केट में लेके जाना है तो आप पूरी तरीके से खुला हुआ गेंदा तोड़ेंगे। तो इस तरीके से इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप जो है कम समय में कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते।
2: भारती साहू मैम, आप मन हमारे स्टूडियो में आए और संगवारी मन के शीत ऋतु में फूल की खेती अपनाए एवं अपनी आमदनी बढ़ाए विषय ले संबंधित सबो समस्या के आप मन समाधान देव और संग संग ए विषय ले संबंधित विस्तार ले जानकारी देव, तेकर खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम
0: राम राम।

अभी सुनेन क्रम हेलो किसान वाणी, जिमे आज आप मन भर लेकर आए रहे शीत ऋतु में फूलों की खेती अपनाएं एवं आमदनी बढ़ाएं, ये विषय मा आप मन के शंका के समाधान। विशेषज्ञ रही से डॉक्टर भारती साव, सहायक प्राध्यापक पुष्प विज्ञान एवं लैंडस्केपिंग महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग, और आपसन गोट बात कर रही से मनीषा चंद्रवंशी, प्रस्तुत करता रही शशि प्रकाश पांडे, तकनीकी सहयोगी से अंजू विजयन और प्रियंका डिक्सेना।

0: बेरा है कृषक प्रश्न मंच के। हमार आज के प्रश्न, गेंदा के एक ठन देशी किस्म कौन से होते? प्रश्न एक बार फिर सुन लो, गेंदा के एक ठन प्रमुख देशी किस्म कौन से होते?
1: अब बता देथन पाछू हफ्ता पूछे गे रही सवाल और ओका सही जवाब। पाछू हफ्ता के प्रश्न रही से धान के फसल मा कौन कौन से रोग होते और सही जवाब है ब्लास्ट, सीथ ब्लाइट, जीवाणु जनित उमठा रोग। और सही जवाब दे भैया संगवारी मन के नाम है
0: देवरी भाटापारा ले मुकेश कुमार रजक, युवा रजक, हाव्या रजक, तनु रजक, ग्राम नागर कोहरा ले झग्गर राम साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू, ग्राम बठेना ले बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, पार्थ कश्यप, राजेंद्र मनहरण वर्मा, बंटी वर्मा और मुरली वर्मा, गर्रापार बांधा बाजार ले गंगाराम साहू, सुलोचना साहू, मानवेंद्र साहू, राकेश साहू। सही जवाब देवैया जम्मू संगवारी मल्ला, गाढ़ा गाढ़ा बधाई।
1: ये रही आज के किसान मनी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: अब हुआ थे जाए के बेरा, तब बता देथन काली चौपाल मा आज की बात में हुई चिट्ठी मिलीस, साथ ही क्रम आज की सलाह में हुई धान फसल में कीट प्रबंधन, ये विषय में ईश्वरी साहू ले गोड बात और गीत संगीत तो होबे करी। त देवो विदा जम्मू संगवारी मल्ला समित गुप्ता
1: और मनीषा चंद्रवंशी के
0: राम राम।

0: किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का, ये रायपुर।
1: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए आज हम सुनवाते हैं गुलाम अली और आशा भोसले की आवाजों में गाए कुछ खूबसूरत गीत और गजलों को। तो लीजिए करते हैं शुरुआत आशा भोसले और आमिर गुलाम अली की आवाजों में इस गजल को। गजलकार अहमद अनीस और संगीत आमिर गुलाम अली का है।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: विंटरकेयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे इस गीत को। इस गीत के साथ ही गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीता कार्यक्रम। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाएगा।
2: FTA का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं, हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज। अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आप आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
4: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवारंटेड रेफरेंसेस।
5: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
4: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी।
6: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
0: फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जलसंधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
7: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
8: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
7: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये मिल रहे हैं।
9: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें डीबीटी के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6,000 रुपये मिलता है।
7: इस साल अगस्त तक डीबीटी के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53,00,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। डीबीटी ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाब देही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक के दौरान खतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खतर में भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान खतर की भारत में $10 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
11: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 रुपये प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटका, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर

लीजिए सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की फिल्म का नाम दाग।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
4: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
3: दिन में 12 से 2 के बीच
5: अगर तुम मिल जाओ।
3: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
6: अब सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले को फिल्म है मेरे सनम। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने

0: एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को फिल्म है लीडर। शकील बदायूनी की लिखी इस गीत की धुन बनाई है नौशाद ने।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: अब सुनिए रविंद्र जैन के गीत संगीत निर्देशन में हेमलता और शैलेंद्र सिंह का गाया गीत, फिल्म का नाम अखियों के झरोखों से।

0: ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में। जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हमें, काले हैं तो क्या?

0: जा मारिय बाता तंदान दिल तोड़िय घाता तंदान हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं।
1: अभी आपने मोहम्मद रफी और महमूद को गुमनाम फिल्म में सुना। शैलेंद्र के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: तो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का,
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर।
1: आए आए सुल्तान इब्न सुल्तान इब्न सुल्तान, यानी के भाईजान, मालिक अक्ल ला महदूद, यानी के बादशाह महमूद तशरीफ ला रहे। हाय हाय हाय हाय हाय,
2: वहां भाग रही तू मैं,
3: काले से डर गए क्या?
4: हमें काले हैं।

0: ये 16 साल तंदान है तेरे ख्याल चंदान, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: दोस्तों, महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईडी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है, जिसका इल्जाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। यह फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने। उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते।
2: हम भाई भाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए, रुपया।
1: दोस्तों, इसी रुपए की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
3: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो, अपने देश से निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी, मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया, लेकिन ऐसे कैसे बने हम,
4: बोल दूं बापू?
3: बोल दे बेटा।

लड़की के कारण मी पागल झाला, प्रेम का फेंका हमने जो भाला, लड़की ने मेरा पॉकेट संभाला, रुपया पैसा लूट के मेरा उसने निकाला मेरा दिवाला। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है, रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो मकान है, रुपया है तो दुकान है, और आखिर में अगर रुपया है तो दुनिया है, रुपये के ही नाम का जहूरा है, बाकी सब घास कूड़ा है।

भैया के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर, तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। तो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी, और जिसके नायक होते थे महमूद।

0: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं।
1: वनकम जी।
2: ओ पहुंचिए ना।
1: अयो एक मिनट टाइम ना दीजिए, खिड़की बंद कर।
2: क्या है?
1: खिड़की बंद करना जी।
2: क्यों?
1: ये वो बड़ा बड़ा आपको कॉल कर देखता है ना।
2: देखने दो, सुनने दो, जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है।
1: आइयो आइयो पहला बोला ना ऐसा बात। डाय बोला तुम आना गाना गाना आना।
3: तुम नहीं गाना, तुम जाना हम गाना।
1: ये हम जाना तुम गाना, बाप का राज है या बोला, या हम तेरा गोला बनाना गोला, या ताली नहीं रहा गाना गाना।
3: चल
1: चल तुम बदाना बदाना।
0: दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे। फिल्म पड़ोसन का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था। संगीतकार थे इसके राहुल देवबर्मन। पहले ये गाना सुन लेते हैं, इसके बाद हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे।
4: यह कच्चा

0: एक पे कैसे रहते जब रिकॉर्डिंग में मौजूद हो मन्ना डे, किशोर कुमार और महमूद। तो भाई किस्सा ये है कि इस गाने की शक्ल ऐसी नहीं थी। पहले जो गीत लिखा गया था, जो संगीत रचना की गई थी, रिकॉर्डिंग के वक्त बदल दी गई थी। दरअसल उन दिनों रिकॉर्डिंग के दौरान सारे साजिंदे गायक मौजूद हुआ करते थे। महमूद साहब जो इस फिल्म के निर्माता थे और राहुल देव बर्मन साहब जो कि संगीतकार थे। महमूद साहब ने आरडी बर्मन को पूरी आज़ादी दे रखी थी। उस पर किशोर कुमार साहब गजब के फनकार, खुद गायक, गीतकार और संगीतकार, उन्हें भी खूब मजा आने लगा और गीत की शक्ल बदलते बदलते ऐसी हो गई। दोस्तों, संगीतकार राहुल देव बर्मन ने महमूद साहब के साथ फिल्म भूत बंगला में अभिनय भी किया है। जी हाँ, सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना। संगीत है राहुल देव बर्मन साहब का।
1: गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात। आओ ट्विस्ट करे का फुटा मौसम,

0: है यही।
1: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
2: हमारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सतिया, देखो बिटिया।
1: क्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
0: नहीं साहब, में बड़े से बड़ी गाली दे ले पर हमको चोर मत कहो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।
3: नहीं रे बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम खाया था ना तू, मतलब मेरा बेटा नहीं।
2: दोस्तों हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम, महमूद साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

0: अच्छा
1: हर्रा सुहाना होगा,
0: अच्छा
1: हर्रा।
2: 29 सितंबर सन 1932 में मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है, और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

स्वर्ण पदक पे निशाना साधा, नया एशियाई रिकॉर्ड बना डाला। खेलों की दुनिया सपनों को सच्चाई में बदलने वाली ऐसी कितनी ही कहानियों से भरी हुई है। 20वें एशियाई खेलों के किताब में भी भारतीय नए पन्ने जोड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एशियन गेम्स आईची नगोया पर आज के हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हम हैं उपस्थित। नमस्कार, मैं हूँ अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस।

0: नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप में इतिहास रचा, स्वर्ण पदक और नया एशियाई रिकॉर्ड। महिला टीम के साथ देश के नाम किया आज का दूसरा पदक, रजत पदक। एथलेटिक्स के अंतिम दिन आया स्वर्ण पदक और साथ में 4 कांस्य पदक भी। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल और परवीन हुडा ने शाम से फाइनल्स में एंट्री की तो नरेंद्र बेरवाल को मिला कांस्य पदक। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची और आर्चरी में भी 3 तीरंदाज रिकर्व स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल्स में। शूटिंग और एथलेटिक्स दोनों में ही शानदार प्रदर्शन आए आज, लेकिन एथलेटिक्स से पहले बात शूटिंग की। नीरू ने नया इतिहास रच दिया आज। शॉटगन की ये शेरनी खेलों के इतिहास में पहला महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली शूटर बनी। निशाने इतने सटीक कि नया एशियाई रिकॉर्ड। और यही नहीं, उन्हीं के दम पर बहुत कड़ी स्पर्धा में टीम रजत पदक भी भारत के खाते में गया। एक बार फिर तालियां बजाने के लिए सुनिए पूरा विवरण मुदिता से।
1: शूटिंग में भारत ने एक स्वर्ण और एक रजत के साथ यादगार प्रदर्शन किया। ट्रैप शूटिंग टीम इवेंट में भारतीय महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही। चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं कुवैत ने 325 के साथ कांस्य पदक जीता। और फिर आया गोल्ड मेडल जो नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में हासिल किया। 26 साल की भारतीय शूटर ने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही। उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चीन की सुन युनोंग से वो 2 शॉट आगे रही। उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इसके पहले 2025 में नीरू ने वुमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में वुमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। आइए सुनते हैं उनके कोच मनशेर सिंह ने नीरू ढांडा के बारे में क्या कहा।
2: She joined the academy and then COVID hit. She went back home and she got COVID and we lost her in the hospital. We couldn't find her for 10 days and something happened to her. Found her lying in a bed somewhere with the most distressful condition. Pulled her out of there, got her support in Chandigarh. Then psychologists had to get involved because she was so traumatized. So we didn't manage all that support, got her back into the academy. Today she's an Asian champion because of her life-changing experiences. Become the most strongest shooter in a final in the present group of shooters.
0: एथलेटिक्स के अंतिम दिन हुए सभी फाइनल्स में भारतीय उपस्थिति थी, जो दिखाती है भारतीय एथलीट्स के बढ़ते हुए स्तर को। लेकिन हाँ, अगर पदकों के हिसाब से आंकें तो जरूर पोडियम फिनिश में हम कहीं न कहीं थोड़े ढीले दिखे हैं। पिछले एडिशन में 6 स्वर्ण पदक दिलाने वाले इस खेल में इस बार अंतिम दिन तक पहले स्वर्ण पदक की बाट जोही जा रही थी और आज ये उम्मीद पूरी हुई। अंतिम से ठीक पहले की स्पर्धा में लड़कियों ने पूरी की 4x400 मीटर रिले में। पहले ही एक पदक जीत चुकी विद्या रामराज ने अंतिम लैप में क्या जबरदस्त एंकर दौड़ लगाई। पूरी ताकत के साथ शानदार फर्राटा और भारतीय राष्ट्रगान की धुन फिजा में गूंज उठी। स्वर्ण पदक 3:01.61 के साथ। आज पूरे समय बारिश की फुहारों के बीच हुई स्पर्धाओं में भारत ने 4 कांस्य पदक और जीते। 4x400 मीटर पुरुषों में डिफेंडिंग चैंपियन था भारत, आज कांस्य पदक आया। लेकिन याद रहेगी तीसरे नंबर पर जय की दौड़ जिसने भारत को लड़ाई की स्थिति में ला दिया और उसके बाद विशाल थिन्नारसू की अंतिम दौड़ बस देखने ही वाली थी। भारत को तीसरे स्थान पर ले आए वो। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जापान की टीम ने पाया। किसान परिवार में जन्मे, फौज में भर्ती होने का सपना सच करने के लिए अलीगढ़ की सड़कों पर दौड़ की तैयारी करते करते फौज में आने के बाद उनका टैलेंट पहचाना गया और आज वो गुलवीर सिंह पिछले 1-2 सालों में सबसे उम्दा प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीट हैं। अपनी पेट 5000 मीटर स्पर्धा में वो 13:32.75 के साथ तीसरे स्थान पर आए और कांस्य पदक के साथ इन खेलों में अपना तीसरा पदक पाया। 40 साल बाद इन खेलों में 3 या ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने वो। ऊंची कूद में पूजा ने अपने 5वें प्रयास में 1.84 मीटर ऊंचाई पार की जो उन्हें दिला गई कांस्य पदक।

0: स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान की बार्नखोव ने 1.90 मीटर के साथ जीता। देव कुमार मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट में 7वां स्थान पाया, लेकिन उनकी तारीफ इसलिए कीजिए कि अपना बेस्ट झोंक दिया और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कुलदीप 10वें स्थान पर रहे। तो महिला हैमर थ्रो में तानिया चौधरी ने भी अपना बेस्ट दिया, 65.35 मीटर दूर तारगोला फेंका, लेकिन 4था स्थान ही पाया। महिला 800 मीटर में पूजा 7वें तो पुरुष 800 मीटर में मोहम्मद अफसल अंतिम स्थान पर रहे। एथलेटिक्स में भारत का अभियान 1 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 14 कांस्य पदक। मुक्केबाजों ने रिंग में भारतीय दबदबा आज भी बनाए रखा। पदक तो पहले से ही पक्के थे। आज सेमीफाइनल में 3 मुक्केबाज रिंग में उतरे, 2 के पंच उन्हें ले गए फाइनल्स में, यानी अब दांव स्वर्ण पदक पर रहेगा। वो दृश्य फिर से खींचने की कोशिश प्रेरणा शर्मा द्वारा।
1: इट वॉज एन इनक्रेडिबल डे फॉर इंडिया इन द बॉक्सिंग रिंग एज वेल। टू रिकैप द एक्शन फ्रॉम द मॉर्निंग सेशन, द इंडियन बॉक्सिंग कंटिंजेंट पुट ऑन एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेज, लॉकिंग इन 3 मेजर मेडल आउटकम्स। इन द वुमेन्स 65 kg सेमीफाइनल, परवीन हुडा डिलीवर्ड अ डोमिनेंट डिस्प्ले, डिफीटिंग चाइनाज ली शु 5-0 टू स्टॉर्म इन टू द फाइनल। दैट फर्स्ट हाफ विन गारंटीड हर एटलीस्ट अ सिल्वर मेडल, पुटिंग इंडिया विद इन टचिंग डिस्टेंस ऑफ अनदर गोल्ड। ओवर इन द मेन्स 80 kg सेमीफाइनल, अंकुश पंघाल पुट ऑन अ मास्टर क्लास, पुलिंग ऑफ अ ब्रिलियंट कमबैक टू आउटपंच उज़्बेकिस्तान्स फासलुद्दीन। हिज विक्ट्री सिक्योर्ड हिज प्लेस इन द फाइनल एंड अश्योर्ड टीम इंडिया ऑफ अनदर कंफर्म्ड सिल्वर मेडल एट मिनिमम। एंड इन द मेन्स प्लस 90 kg सेमीफाइनल, हेवीवेट स्टार नरेंद्र बरवाल स्टूड टो टू टो इन अ फियर्स बैटल अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियन इबेक ओरलबे। डिस्पाइट अ करेजियस एफर्ट, बरवाल वॉज एज्ड आउट, साइनिंग ऑफ विद अ हार्ड अर्न ब्रॉन्ज मेडल फॉर द नेशन, हिज सेकंड कंसेक्यूटिव एशियन गेम्स ब्रॉन्ज। 2 spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring. Parveen Hooda delivered a dominant display, defeating China's Li Shu 5-0 to storm into the final. That first half win guaranteed her at least a silver medal, putting India within touching distance of another gold. Over in the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal put on a master class, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazluddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90 kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ibek Oralbe. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation, his second consecutive Asian Games bronze. 2 spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring.
0: आज रिकर्व की एकल स्पर्धाएं थीं। धीरज देव बोमरा से तो उम्मीदें स्वाभाविक थीं, लेकिन नीरज ने भी शानदार तीर चलाए और कुमकुम ने कमाल कर दिया, यानी 3 धनुर्धर चिड़िया की आंख, यानी स्वर्ण पदक की राह में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। और माइक की कमान मुदिता के पास आप तक ये विवरण पहुंचाने के लिए।
2: तीरंदाजी में धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज चौहान ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे कोरिया के किम जे देओ को 6-4 से पराजित किया। वहीं टॉप सीड और मौजूदा एशियन चैंपियन धीरज बोमदेवरा ने ताइपे के चेंग शियांग हुई पर 6-2 से जबरदस्त जीत दर्ज की। अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज़्बेकिस्तान के अमीर खून सादिकोव से और नीरज चौहान का भूटान के लैम दोर्जी से होगा। वहीं कुमकुम अनिल मोहोद महिलाओं की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में कुमकुम का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग च्याय यंग से होगा। यंग ने भारत की ही दूसरी तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।
0: स्क्वाश में महिला टीम पूरे रॉ में दिख रही है। नए स्टार्स पैदा कर रहा है ये गेम्स। 18 बरस की अनहत सिंह तो स्क्वाश की नई पोस्टर गर्ल बन गई हैं। महिलाओं का जलवा आज भी जारी रहा। खुलासे के साथ मुदिता।
2: भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तन्वी खन्ना ने ईरान की नरगिस सुल्तानी के खिलाफ मैच जीता, जो खेल के बीच में ही रिटायर हो गईं। अनाहत सिंह ने फरिश्ते इख्तदारी को सीधे गेमों में 11-5, 11-4, 11-7 से शिकस्त दी। वहीं जोशना चिनप्पा ने भी अपना मैच ईरान के खिलाफ 11-1, 11-3, 11-9 से जीत

0: कर 3-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया। पुलसी ने टॉप करने के बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम अब क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से मुकाबला करेगी।
1: हाल ही में हुए डेविस कप मुकाबले में सुमित नागल दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी से हार गए थे और आज भी विपक्षी कोरिया से ही था, लेकिन सुमित के रैकेट के इरादे कुछ और थे। दूसरे राउंड के मुकाबलों में और भी भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर उतरे। टेनिस पर आज की कहानी अभिनव कुमार झा से।
2: एशियन गेम्स में टेनिस खिलाड़ियों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहा। पुरुष एकल के दूसरे दौर में डीके सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावान त्रिसमोहन तारा को कड़े मुकाबले में 7-5, 7-6 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं सुमित नागल ने बारिश के कारण दो दिन तक चले मुकाबले में दक्षिण कोरिया के सियोंग चान होंग को 6-4, 6-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। उनका अगला मुकाबला उज्बेकिस्तान के सरगेई फोमिन से होगा। आज भारतीय खिलाड़ियों के डबल्स मुकाबले भी कार्यक्रम में थे। पुरुष डबल्स के दूसरे राउंड में यूकी भामरी और डीके सुरेश की जोड़ी का सामना कजाकिस्तान की जोड़ी से हुआ, जहां भारतीय जोड़ी ने 6-1, 7-5 से मैच अपने नाम किया, जबकि अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना नेपाल के अभिषेक बस्तौला और प्रदीप खड़का से होना था, जहां पूरे मुकाबले में एक तरफा तरीके से 6-2, 6-1 के साथ भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की। अब बात करें मिश्रित डबल्स की, तो मिश्रित डबल्स के पहले राउंड में अंकिता रैना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना हांगकांग के यूडीस चोंग और कैरन थॉम्पसन से हुआ, जिसमें 4-6 और 4-6 के सीधे सेटों से भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार मिक्स डबल्स की इस जोड़ी का सफर एशियन गेम्स में यहीं समाप्त हुआ। हालांकि यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले के रूप में मिक्स डबल्स में भारतीय चुनौती अभी कायम है।
1: वॉलीबॉल में पूल सी में आज एक सुपर रोमांचक मैच हुआ। भारत कुवैत से पहले दोनों से ठार बैठा, लेकिन इसके बाद वो जुझारूपन और संघर्ष दिखाया कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। भारत अपने पूल में टॉप पर और माइक पर प्रेरणा शर्मा।
3: इंडिया हैव प्रोड्यूस्ड अ सेंसेशनल कमबैक टू डिफीट कतर 3-2 इन देयर फाइनल पूल सी एनकाउंटर। इंडिया हैड ऑलरेडी बीटन वियतनाम एंड हांगकांग चाइना 3-0 इन देयर ओपनिंग मैचेस, बट कतर प्रोवाइडेड अ मच टफर चैलेंज। दे एज द ओपनिंग सेट 28-26 आफ्टर इंडिया मिस्ड 2 set points एंड देन टुक द सेकंड 27-25 डिस्पाइट इंडिया बिल्डिंग अ 4-point लीड मिडवे थ्रू द सेट। 2 sets डाउन इंडिया शोड ट्रेमेंडस कंपोजर टू टर्न द मैच अराउंड। दे केप्ट देयर होप्स अलाइव बाय taking the third set 25-23 before dominating the fourth to win 25-20 and level the contest. That sent the match into a deciding fifth set, which turned into another dramatic battle. India held their nerve in their extended tie break to win 24-22 and complete a stunning reverse sweep. With 3 wins from 3 matches, India finished unbeaten at the top of Pool C and advanced to the quarterfinals in style.
1: केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा। केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
2: केनो स्लैलम में भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाया है। पुरुष कयाक सिंगल हीट्स में हितेश केवट ने 118.22 सेकंड के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया, वहीं प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने 127.70 सेकंड के साथ 10वां स्थान प्राप्त कर सेमीफाइनल राउंड के लिए अपनी जगह पक्की की। बात करें महिला कयाक सिंगल हीट में तो शिखा चौहान ने भी 344.87 सेकंड के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने हिस्सा लिया था, जहां पल्लवी जगताप ने 7वां स्थान प्राप्त करके तो वहीं रीना सेन ने 9वां स्थान प्राप्त करके सेमीफाइनल के लिए अपना नाम दर्ज कराया।
1: बहाव वाले पानी से अब चलते हैं अपेक्षाकृत शांत समंदर की ओर। मौसम और बारिश ने सेलिंग में आज खासा व्यवधान डाला। सर्फिंग में एक ही भारतीय स्पर्धा में बचा था। आज क्वार्टर फाइनल पुरुष शॉर्टबोर्ड में लहरों से उनकी गुफ्तगु कैसी रही जानते हैं अभिनव से।
3: Looking back at the earlier action from Pacific Long Beach in Tahara, surfing made its official Asian Games debut, a huge milestone for the sport. In the men's shortboard quarterfinals, Heat 4, India's Kishore Kumar Anbarasu went head-to-head against Toby Espejon of the Philippines. Kishore put up a spirited effort on the waves, finishing with a score of 5.37 to Espejon's 8.53, which unfortunately ended India's historic run just shy out of the medal rounds. Even though the campaign came to a close, course, Kishore's quarter-final appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
1: आज से साइकिलिंग ट्रैक की स्पर्धाएं आरंभ हो गईं। भारतीय दल में कुल 14 सदस्य हैं। कई स्पर्धाओं में भारतीय साइकिल सवार हवा से बातें करने की कोशिश करते दिखे। विवरण के साथ एक बार फिर अभिनव।
2: ट्रैक साइकिलिंग में भारत के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहा। महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्का और त्रिशा पॉल की भारतीय टीम छठे स्थान पर रही, जिसकी बदौलत उन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन फर्स्ट राउंड में चाइनीज ताइपे की टीम से हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही सूरत हाल पुरुष टीम स्प्रिंट का भी रहा, जहां रोजित सिंह यांगलेन, डेविड बेकहम, एल्का टोचोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोन जाम की टीम को चाइना से हार के एशियन गेम्स से बाहर होना पड़ा। आपको बता दें श्रोताओं की इसी चाइनीज टीम ने इस इवेंट में यानी पुरुष टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। हालांकि इस इवेंट में भी क्वालिफिकेशन राउंड में भारतीय टीम ने सातवें स्थान पर रहकर फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। वहीं बात करें महिला टीम परशूट में तो हर्षिता झाकर, पूजा बबन डानोले, मीनाक्षी और स्वास्ति सिंह की भारतीय टीम को फर्स्ट राउंड में ज्यादा समय लेने के कारण बाहर कर दिया गया। किंतु दिन की शुरुआत इन्होंने भी क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाई करके की थी, जहां इन्होंने पांचवां स्थान हासिल किया था।
1: कुराश में कल एक पदक आया था और आज अंतिम भारतीय एंट्री भी स्पर्धा में थी। हुआ क्या, बता रही हैं मुदिता।
0: कुराश में पुरुषों के 66 किलोग्राम भार वर्ग में विपिन कुमार का अभियान राउंड ऑफ 16 में खत्म हो गया। वे साउथ कोरिया के यून ह्यूनसो से 0-3 से हार गए और इस नतीजे के साथ गेम्स में उनका इंडिविजुअल कैंपेन खत्म हो गया। इसके पहले कुराश में पिंकी वल्हारा ने महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था।
1: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के बारे में जानते हैं आप, आज की स्पर्धा की जानकारी अभिनव से।
2: स्पोर्ट क्लाइंबिंग की स्पर्धाओं में भारत की नजरें खास तौर पर महिला स्पीड क्लाइंबिंग पर रहीं। भारत की 19 वर्षीय जोगापूर्ति ने अपने एशियाई खेल पदार्पण में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफिकेशन राउंड में 7.28 सेकंड के साथ 9वां स्थान हासिल करके महिला स्पीड क्लाइंबिंग के क्वार्टर फाइनल में तो जगह बनाई ही, साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी दोबारा से अपने नाम किया। स्पीड क्लाइंबिंग में खिलाड़ी 15 मीटर की एक समान दीवार पर सबसे तेज समय में ऊपर पहुंचने की कोशिश करते, इसलिए शुरुआत, गति और संतुलन बेहद महत्वपूर्ण होता है। महिला स्पीड का क्वालिफिकेशन नागोया के पोर्ट में आयोजित किया गया। भारत के नजरिए से जोगा का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना स्पोर्ट क्लाइंबिंग में देश की बढ़ती मौजूदगी का अहम संकेत है।
3: India has jumped from the 12th position to the 10th position with the courtesy of 2 gold medals today. India's total medal tally now stands at 52 medals, broken down into 6 gold, 21 silver and 25 bronze. China leads the table with 143 gold, 62 silver and 49 bronze, followed by Japan in second with 45 gold, 71 silver and 67 bronze medals, and the Republic of Korea in third with 24 gold, 27 silver and 44 bronze medals.
1: कल कुश्ती आरंभ होगी, जिसमें पदकों की खासी उम्मीद है। निशा और सुनील कुमार मैट पर होंगे। महिला हॉकी सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से भिड़ंत होगी। बॉक्सिंग में प्रिया और लवलीना सेमीफाइनल जीतने के प्रयास करेंगी। शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश होंगे और मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा भी होगी। आर्चरी में कंपाउंड के मुकाबलों में भारतीय पदकों की ओर बढ़ने के प्रयास करेंगे। स्क्वैश में महिला टीम सिंगापुर से भिड़ेगी क्वार्टर फाइनल में। जूडो भी कल शुरू होगा और गोल्फ भी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही मैदान पर होंगे। इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स, सेलिंग, कैनो स्लालोम और साइकिलिंग में भी भारतीय खिलाड़ी दिखेंगे।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
5: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे डेली हाइलाइट्स कैप्सूल एशियन गेम्स 2026 का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 10:20 हुए, आइए सुनते हैं विविध संगीत कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में आइए पहले हम आपको सुनवाते हैं तलत अजीज की आवाज़ में ज़फ़र कालिम के लिखे इस गज़ल को।

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्टकार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
4: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अभी आप सुने थे विविध संगीत कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों कार्यक्रम यादें। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बिन फिरे हम तेरे का ये शीर्षक गीत किशोर कुमार की आवाज में। इन्हीं वर्ग के लिखे बोल हैं, संगीत उषा खन्ना का है।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म कठपुतली का ये गीत। वर्मा मल्लिक के लिखे बोलों को संगीत से संवारा था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म जबरदस्त से। किशोर कुमार की आवाज़ में गाया ये गीत मजरू सुल्तानपुरी के लिखे और आर डी बर्मन के संगीत से सजा। पहले सुनते हैं संदेश, फिर सुनेंगे फिल्म जबरदस्त का ये गीत।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस के एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है, और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था, जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए पूरे देश में। इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
0: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

और आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म यादों की बारात का ये गीत। मजरू के लिखे बोल संगीत आर डी बर्मन का है।

0: अभी आप सुने थे पुराने फिल्मी गीतों कार्यक्रम यादें FM 100.7 MHz पर। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि की 11 बजे को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: 100.1 MHz पर फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए है समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: India rejects the unwarranted references.
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: And no external party has any locus standi on this issue.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
3: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में 65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में पुरस्कार पाने वाले 20 कलाकारों को सम्मानित किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन ललित कला अकादमी ने किया। इस मौके पर श्री शेखावत ने रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित सेवा ही संस्कृति पहल इसका अच्छा उदाहरण है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में श्रम संवाद नाम से जिला स्तर पर क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक निजी कानून फर्म के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं और उद्योग से जुड़े लोगों को नए श्रम कानूनों के प्रमुख प्रावधानों और उनके पालन से जुड़ी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करना था। नागालैंड में कोहिमा पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की 7,740 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने आज जारी एक बयान में बताया कि यह खेप कल दोपहर जुब्बा थाना क्षेत्र में नियमित जांच के दौरान एक ट्रांसपोर्ट वाहन से पकड़ी गई। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Renuka. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amid challenges arising from evolving technology, unpredictability, and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. The minister underlined that the ongoing Operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multidimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference, Rabi Campaign 2026, in New Delhi today, Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Tur, Urad and Masoor at minimum support price.
5: It is our collective responsibility to ensure that farmers get a fair price for their produce. We need to connect farmers with the market through both systems, with MSP and without MSP. It has been decided that the government will purchase 100% of Tur, Masoor and Urad. However, whether it is a Kharif or a Ravi crop, the procurement arrangement should be made properly in advance so that farmers receive payment within 48 hours.
4: The minister said India will also leverage the new market opportunities emerging from international free trade agreements and help farmers secure better returns for their produce and enable India to emerge as a major food basket for the world. The Election Commission today issued notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. This includes 10 seats in Uttar Pradesh and one seat in Uttarakhand. BJP leaders and union ministers Hardeep Singh Puri, B.L. Verma, Samajwadi Party leader Ram Gopal Yadav, Ramji of BSP and six others are completing their terms on 25th of November. The commission has also issued notification for bipoll in one seat of Rajya Sabha in West Bengal. Finance Minister Nirmala Sitharaman today met her Qatari counterpart Ali bin Ahmed Al Kuwari on the sidelines of the AIIB annual meeting in Doha. Both leaders discussed expanding India's UPI payment system across Qatar and strengthening financial cooperation between the two countries. The talks also focused on the implementation of Qatar's $10 billion investment commitment in India, greater engagement with the National Investment and Infrastructure Fund, and finalization of the bilateral investment treaty. India has rejected the unwarranted references made by Turkish President Tayyip Erdogan on Jammu and Kashmir during his UNGA address. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said this is a matter pertaining to India's territorial integrity and sovereignty and no external party has any locus standi on the issue. On the IBSA statement, Mr. Jaiswal noted that a meeting at the level of foreign ministers was held between India, Brazil and South Africa on the sidelines of the UN General Assembly in New York. On the comments made by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar on cross-border terrorism, Mr. Jaiswal highlighted External Affairs Minister's remarks on cross-border terrorism, terming it a cause of major concern and that countries need to come together to fight the global menace. In the Asian Games 2026, India today delivered a strong performance, adding 8 medals, including 2 gold, 1 silver and 5 bronze medals in relay, shooting, athletics and boxing. India won women's 4x400m relay gold, clocking 3 minutes 29.69 seconds at Nagoya in Japan. India also bagged a bronze in men's 4x400m relay and another bronze in mixed 4x100m relay. Earlier, Neeru Dhanda made history by becoming the first Indian shooter to win gold in the women's trap individual event in Japan. And that is the end of this news bulletin.
6: Frequency modulation 107.7 MHz पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। कल प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।